मित्रों, ये था भक्ति संगीत। आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया है 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। बने रहिए हमारे साथ अगले कार्यक्रमों के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे पुराना मानव निर्मित डॉक गोदी ग्रीस या रोम में नहीं है, ये भारत के लोथल में है। 5000 साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता ने इंजीनियरिंग का एक चमत्कार कर दिखाया था। उन्होंने एक विशाल नौसैनिक डॉक बनाया जो 710 फीट लंबा था और इसे विशेष रूप से गुजरात तट के जटिल ज्वार भाटे को संभालने के लिए डिजाइन किया गया था। ये केवल छोटी नदी नावों के लिए नहीं था, खुदाई में पत्थर के लंगर मिले हैं जो ये साबित करते हैं कि हड़प्पा के लोग ईसा से 3000 साल पहले ही गहरे समुद्र में चलने वाले जहाजों का संचालन कर रहे थे। जब दुनिया का अधिकांश हिस्सा मुश्किल से तटों के किनारे ही रहता था, तब भारतीय नाविक पहले से ही खुले समुद्र के उस्ताद थे।

वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। काशी प्रसाद जायसवाल की पहचान एक सुप्रसिद्ध इतिहासकार, पुरातत्व के अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के विद्वान और एक साहित्यकार के रूप में है। उनका मानना था कि भाषाई एकता सभी प्रकार की एकता की जननी है। उन्होंने भारत की गंगा जमुनी संस्कृति को विश्व पटल पर नई ऊंचाइयां प्रदान की। उनके क्रांतिकारी विचार अत्यंत प्रखर थे और व्यक्तित्व देशभक्ति की भावनाओं से रंगा हुआ था। यही कारण है कि अंग्रेज उन्हें क्लेवरेस्ट इंडियन और डेंजरेस्ट रिवॉल्यूशनरी कहते थे। काशीप्रसाद जायसवाल का जन्म 27 नवंबर सन 1881 को उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में हुआ था। उनके पिता बाबू महादेव प्रसाद ने अपना व्यापार स्थापित करने के लिए अपने बेटे काशी प्रसाद को उसकी माँ के साथ ससुराल में छोड़ दिया था। ननिहाल बहुत गरीब था। दूसरे बच्चों को देखकर जब काशी प्रसाद मिठाई मांगते तो सत्तू में गुड़ मिलाकर उसकी छोटी छोटी गोलियां बनाकर माँ लड्डू के नाम से दिया करती। मैट्रिक पास करने के बाद काशी प्रसाद जी ने पढ़ाई छोड़ दी। इस बीच पिता का व्यापार जम गया, लाखों की आमदनी होने लगी। एक दिन चर्चा के दौरान उनकी बहस सुनकर किसी ने ताना मारा, बड़े बैरिस्टर बने हुए हैं। बस ये बात उनके मन को लग गई, तय कर लिया कि अब तो बैरिस्टर बनना ही है। पिता ने उनकी ये इच्छा पूरी की और काशी प्रसाद जी ने लंदन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया। इस तरह उनकी शिक्षा मिर्जापुर, फिर बनारस और फिर इंग्लैंड में हुई। वो चाहते तो बैरिस्टरी पास करके लौट आते, लेकिन उनके भीतर प्रबल ज्ञान पिपासा थी, इसलिए इंग्लैंड में अध्ययन के दौरान उन्होंने 3 डिग्रियां प्राप्त की। उन्होंने लॉ किया, इतिहास में एमए किया, साथ ही चीनी भाषा की भी 1 डिग्री हासिल की। वो पहले भारतीय थे जिसे इसके लिए स्कॉलरशिप मिली। इंग्लैंड में उनका संपर्क इंडिया हाउस के अनेक क्रांतिकारियों से हुआ। वहां से वो हिंदी पत्रों में अपने लेख भेजा करते। अंग्रेज उनके विचारों पर नजर रखने लगे। वीर सावरकर और लाला हरदयाल से क्रांतिकारी गतिविधियों पर उनकी विस्तार से चर्चा होती रही। अपनी इन गतिविधियों के कारण उन पर पुलिस की कड़ी नजर रहने लगी। यही कारण है कि सन 1910 में जब वो भारत लौटे तो गिरफ्तारी की आशंका से जल, थल और रेल मार्ग से यात्रा करते हुए भारत पहुंचे। भारत वापसी के बाद पहले वो कलकत्ता में रहे और फिर बिहार प्रांत बनने के बाद सन 1914 से वो पटना में रहने लगे। उन्होंने पटना उच्च न्यायालय में आजीवन वकालत की। देश के प्रतिष्ठित लोग उनके मुवक्किल थे। प्रिवी काउंसिल में बहस करने वो इंग्लैंड भी जाया करते। इंग्लैंड में शिक्षा के दौरान ही काशी प्रसाद जायसवाल विश्व के बदलते राजनैतिक परिदृश्य को भांप गए थे और उन्हें विश्वास हो चला था कि अब पुरानी व्यवस्थाएं काम नहीं करेंगी, पुरानी दुनिया अब नहीं रहेगी। वो देख रहे थे कि युगों से पीड़ित शोषित जनता अब अंगड़ाई लेकर जाग रही है, मुखर हो रही है। इस बात को अपने लेखों में उन्होंने मजबूती से रेखांकित भी किया और इसका समर्थन भी किया।

काशी प्रसाद जायसवाल कई भाषाओं के जानकार थे। संस्कृत, हिंदी और बांग्ला जैसी भारतीय भाषाओं के साथ साथ वो अंग्रेजी, चीनी, फ्रेंच और जर्मन भाषाओं के भी ज्ञाता थे। उनका मानना था कि अलग अलग भाषा ज्ञान से हम पूरे विश्व के बारे में बेहतर तरीके से पढ़ और समझ सकते हैं। उनकी लिखी किताबें एक धरोहर की तरह हैं। उन्होंने दर्जन भर शोध पुस्तकें लिखीं, जिनमें हिंदू पॉलिटी, मनु एंड याज्ञवल्क्य, हिस्ट्री ऑफ इंडिया आदि अत्यंत चर्चित रहीं। काशी प्रसाद जायसवाल ने हिंदी भाषा और साहित्य तथा प्राचीन भारत के इतिहास और संस्कृति पर लगभग 200 लेख लिखे। ये लेख समय समय पर प्रदीप, सरस्वती, नागरी प्रचारणी पत्रिका, द मॉडर्न रिव्यू आदि में प्रकाशित हुए और लोगों द्वारा सराहे गए। बिहार के तत्कालीन प्रशासक एडवर्ड गेट ने बिहार रिसर्च सोसाइटी से जब बिहार रिसर्च जर्नल का प्रकाशन आरंभ किया तो काशी प्रसाद जायसवाल उसके प्रथम संपादक हुए। उन्होंने पाटलिपुत्र का भी संपादन किया। काशी प्रसाद जी ने अपने जीवन काल में कई महत्वपूर्ण व्याख्यान दिए। उनके व्याख्यानों की श्रृंखला में टैगोर लेक्चर सीरीज कलकत्ता, ओरिएंटल कॉन्फ्रेंस पटना और बड़ौदा, अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन इंदौर के व्याख्यान अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी लंदन में व्याख्यान देने के लिए वो आमंत्रित किए गए थे, जो उस समय की अत्यंत महत्वपूर्ण घटना थी। 20वीं सदी में जिन भारतीय विद्वानों ने विमर्श की दिशा को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उनमें काशी प्रसाद जायसवाल अग्रणी हैं। वो नागरी प्रचारणी सभा के उपमंत्री भी रहे। पटना म्यूजियम की स्थापना में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। बिहार एंड उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी और इतिहास परिषद जैसी कई संस्थाओं की स्थापना से लेकर संचालन तक उन्होंने अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इतिहास और पुरातत्व उनका मुख्य विषय था। प्राचीन भारत और उसकी व्यवस्थाओं को लेकर किया गया उनका शोध कार्य अतुलनीय है।

काशी प्रसाद जायसवाल का कथन था कि भाषा की एकता सभी एकता की जननी है। उनका स्पष्ट मानना था कि अंग्रेजों की उन्नति ऐसी कदापि नहीं हो सकती थी यदि उन सभी की भाषा एक न होती। भाषा को लेकर अपने विचार उन्होंने बहुत स्पष्ट तरीके से हमेशा रखे। जिस समय उन्होंने लेखन आरंभ किया था वो समय हिंदी नवजागरण का काल माना जाता है। ये वो समय था जब भारतेंदु हरिश्चंद्र और पंडित बालकृष्ण भट्ट के नेतृत्व में हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि को आधिकारिक मान्यता दिलाने का आंदोलन चल रहा था। जायसवाल जी बोलचाल की आम भाषा के पक्ष में थे। उन्होंने भाषा के भी दो भेद किए थे, पहली साधु भाषा और दूसरी प्रचलित भाषा। उनका कहना था कि उपन्यास, जीवन चरित्र और दर्शन विषयक साहित्य की भाषा साधु होनी चाहिए तथा समाचार पत्र आदि के लिए प्रचलित भाषा उपयुक्त होगी। उस समय राष्ट्रीय एकता का प्रश्न भी अत्यंत महत्वपूर्ण था। काशी प्रसाद जायसवाल का मानना था कि राष्ट्रीय एकता भाषाई एकता के बिना नहीं हो सकती। उनका मत था कि भारत में भिन्न भिन्न भाषाएं हैं, पर राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से हिंदी अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हिंदी ही सबको एक सूत्र में बांध सकती है। इस विषय पर सरस्वती में भाषा का महत्व शीर्षक से उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेख लिखा। इस लेख में उन्होंने कहा कि भाषा देवकृत नहीं बल्कि मानवकृत है, और भाषा का संबंध रक्त के संबंध से भी प्रबल होता है। वो सदैव सांप्रदायिक सद्भाव के पक्षधर थे। उनका कहना था कि जाति धर्म के विभेद के साथ न तो भारत एक राष्ट्र हो सकता है और न ही राष्ट्रीय एकता कायम हो सकती है। अपने विचारों से देश दुनिया को नई रोशनी और नई राह दिखाने वाले इस महान व्यक्तित्व ने 4 अगस्त 1937 को अंतिम सांस ली। सुप्रसिद्ध कवि रामधारी सिंह दिनकर ने उनके विषय में लिखा था कि सूर्य, चंद्र, वरुण, कुबेर और बृहस्पति भी डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल की बराबरी नहीं कर सकते। सुप्रसिद्ध उपन्यासकार अमृतलाल नागर ने कहा कि यदि मुझे 3-4 घंटे की बादशाहत मिल जाए तो मैं गांव-गांव के मंदिरों में डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल की मूर्तियां स्थापित करने का आदेश प्रसारित करूंगा। सच है कि समय सदा उनके द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्यों का पुनर्पाठ करता रहेगा। नमन ऐसी महान विभूति को।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की।

0: ये रेडियो आजाद है 90 दिन
1: रेडियो आजाद।
0: ये रेडियो आजाद है 90.8 मेगाहर्ट्ज देश का चैनल देश के लिए। अभी आपने सुना कार्यक्रम वतन का राग।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: भयानक महीना जब शराब का बिल मुनाफे से ज्यादा हो गया। क्या आप जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी की एक अकेली फैक्ट्री ने एक बार शराब का इतना भयानक बिल बना दिया था कि वह उसके पूरे साल के निर्यात मूल्यों से भी अधिक हो गया। कंपनी के अभिलेखागार में अत्यधिक फिजूल खर्ची के इस दौर को द मॉन्स्टर्स मंथ यानी भयानक महीने के रूप में दर्ज किया गया है। इस राजकोषीय और शारीरिक अय्याशी का दृश्य सुमात्रा के अलग थलग पश्चिमी तट पर स्थित बैनकुलन, जिसे यार्क फोर्ट या फोर्ट मालबोरो के नाम से भी जाना जाता था। 18वीं सदी की शुरुआत में बैनकुलन अपनी जहरीली जलवायु और नगण्य व्यापार के लिए बदनाम था, जहां केवल अपमानित, दिवालिया या वास्तव में हताश लोगों को ही भेजा जाता था। इस मलेरिया वाले क्षेत्र से जीवित बचने वालों में जोसेफ कॉलेट भी शामिल थे, जो एक दिवालिया थे लेकिन अपने कार्यकाल के बाद अंततः मद्रास की काउंसिल के प्रेसिडेंट बने। हालांकि हर कोई कॉलेट की तरह इस उष्णकटिबंधीय कष्ट को सहन नहीं कर पाया। जुलाई 1716 में कॉलेट के कार्यकाल के अंतिम महीने में केवल 19 अनुबंधित कर्मचारियों अर्थात वह व्यापारी जिन्हें कंपनी के खर्च पर भोजन करने का अधिकार था, कि एक छोटे से समूह ने सुमात्रा की कथित उदासी और तकलीफों को मिटाने के लिए भारी मात्रा में शराब का सहारा लिया। क्या आप जानते कि उन्होंने वास्तव में क्या पिया था? लंदन के डरे हुए निदेशकों के अनुसार, जिन्होंने बाद में खातों की बारीकी से जांच की, उनके अनुसार इन 19 पुरुषों ने 75 दर्जन महंगी वाइन बोतलें, जिनमें ज्यादातर महंगी क्लैरेट थी, बियर की 24 दर्जन बोतलें जिनमें खासकर बर्टन एलिस और पेल बियर, 164 गैलन गोवा ताड़ी, लगभग विशाल बैरल बटाविया अराक के साथ ही साथ मदिरा और शिराज वाइन की अतिरिक्त मात्रा शामिल थी। जब लिडेन हॉल स्ट्रीट के ऑडिटर्स ने आंकड़ों की गणना की तो वे दंग रह गए। केवल उस एक महीने में पी गई शराब की लागत पूरी फैक्ट्री द्वारा साल भर में निर्यात की गई काली मिर्च के कुल मूल्य से भी अधिक थी। निदेशकों ने एक तीखा पत्र भेजा, यह आश्चर्य जताते हुए कि इनमें से कोई भी कर्मचारी अब तक जीवित कैसे है। उन्होंने लिखा, हमें आश्चर्य है कि आप में से कोई भी 6 महीने भी जीवित रहता है और आप लोगों के बीच और अधिक झगड़े और द्वंद नहीं होते, यदि शराब का आधा हिस्सा भी आपने कटक लिया हो। उन्होंने सख्ती से आदेश दिया कि भविष्य में कर्मचारी अपनी मौज मस्ती का भुगतान स्वयं करें और कंपनी अब उनके स्वाद के लिए सब्सिडी नहीं देगी। लेकिन यहां एक अंतिम और विडंबनापूर्ण मोड़ है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उन कर्मचारियों को यह फटकार कभी मिली ही नहीं। जब तक पत्र सुमात्रा के तट पर पहुंचा, फोर्ट मालबोरो जलकर खाक हो चुका था। कर्मचारियों द्वारा वर्षों के उकसावे वाले व्यवहार और उत्पीड़न के कारण एक विशाल स्थानीय विद्रोह भड़क उठा था, जिसने जीवित बचे लोगों को अपनी जान बचाने के लिए समुद्र की लहरों के पार भागने पर मजबूर कर दिया। मॉन्स्टर्स मंथ इस बात की याद दिलाता है कि भले ही कंपनी व्यापारियों की एक संस्था थी, लेकिन इसके दुरुस्त ठिकाने अक्सर अय्याशी के विक्षुब्ध अड्डे थे, जहां पुरुष अपने निर्वासन की सड़ांध भरी वास्तविकता से बचने के लिए शाब्दिक रूप से कंपनी के मुनाफे को पी जाते थे।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8 FM, देश का चैनल देश के लिए। मैं हूँ वर्षा सिंह।
1: और मैं हूँ दीपक नेमा। लीजिए प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम प्रकृति की पुकार।

0: अरे वाह वाह, क्या बात है, आज तो आप बड़ी खुश नजर आ रही हो और इतना खूबसूरत गाना भी गा रही हो।
1: हाँ, आपने ठीक कहा, आज मैं बहुत खुश हूँ। जानते हैं क्यों?
0: बताइए, आप ही बताइए क्यों।
1: दरअसल आज मैं सुबह काफी लंबी सैर करके आई हूँ और बाहर सुबह इतनी सुहानी लगी कि मन खुश हो गया। हरे भरे पेड़, कलकल बहता पानी और ठंडी ठंडी बयार, मन को इतना अच्छा लगा कि वहाँ से वापस आने का मन ही नहीं कर रहा था।
0: बात तो सही कही आपने, प्रकृति की गोद है ही इतनी खूबसूरत कि वहाँ से उन नजारों से नजर ही नहीं हटती है।
1: मैंने तो सोच लिया है, जब भी फुर्सत मिलेगी तो बाहर इन नजारों के बीच जरूर जाऊंगी।
0: वर्षा, आप जानती हैं
1: जी
0: कि प्रकृति ने हमारे लिए चारों ओर ऐसी चीजें और ऐसा वातावरण दिया है कि हमारे मन को तो भाता ही है, साथ ही हमें ये स्वस्थ भी रखता है। यही तो है परी और आवरण, यानी पर्यावरण, हमारी धरती का।
1: जी हाँ, पर्यावरण प्रकृति का सबसे बड़ा और कीमती उपहार है जो हमें मिला है, और हमारा कर्तव्य है कि हम सब इसे संभाल कर और बना कर रखें।
0: बात तो सही कही आपने, ये एक ऐसा प्राकृतिक तंत्र है जहाँ हम जीवित रहते हैं और जीवित रहने के लिए एक दूसरे पर निर्भर भी रहते हैं।
1: हाँ, पर्यावरण से मतलब उस परिवेश से है जिसमें हमारी पृथ्वी विद्यमान है। पशु पक्षी, सूर्य का प्रकाश, जल, पेड़ पौधे, हवा और हम मनुष्य तथा सभी जीव जंतु सब मिलकर पर्यावरण का निर्माण करते हैं।
0: हाँ, इसके संतुलन को बनाए रखने में भी सभी की समान भागीदारी है। थोड़ी भी गड़बड़ी पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुँचाएगी।
1: हाँ, हर जीवित प्राणी अपनी विशेषताओं के साथ विकसित होता है। जैसे जलीय प्राणी पानी में सांस लेते देखे जा सकते हैं, और हवा में रहने वाले तो हवा में रहते ही हैं।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, अगर इन्हें अपने वातावरण से यदि हम अलग करें तो इनका जीवित रहना मुश्किल हो जाएगा। वैसे ही पर्यावरण हर एक जीव के आसपास की दुनिया है जो उन्हें जीवित रखती है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, पर्यावरण पौधों, जानवरों, पशु पक्षियों, जीव जंतु और मनुष्यों जैसे जीवित और वायु, जल और भूमि जैसे निर्जीव तत्वों से बना है।
0: प्रकृति ने अपनी कार्य प्रणाली को इस तरह से डिजाइन किया है कि हम सब एक दूसरे पर निर्भर हैं।
1: इनमें हम मनुष्य उन सभी प्राणियों में सबसे अधिक शक्तिशाली है जो पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर है और उनका उपयोग करते हैं।
0: हाँ जी, अब जैसे हवा की बात करें तो ये न केवल मनुष्यों के लिए बल्कि पेड़ पौधों के जीवित रहने के लिए भी जरूरी है। हवा के बिना पृथ्वी पर जीवन असंभव है।
1: बिल्कुल सही कहा दीपक, जीवन देने के लिए ऑक्सीजन जरूरी है और नाइट्रोजन जैसी कई गैसें वायुमंडल में पाई जाती है।
0: और इस पर्यावरण में जलमंडल भी नदियों, महासागरों, समुद्रों आदि जैसे कई जल निकायों से बना है।
1: इसी तरह स्थल मंडल चट्टान और मिट्टी से बना है और जीव मंडल सभी जीवित प्राणियों का घर है।
0: वर्षा, हम ईश्वर प्रस्थ दुनिया में रहते हैं, इसमें से कुछ तत्व प्राकृतिक और कुछ हम मानवों द्वारा निर्मित है। हमारे आसपास की चीजें ही मिलकर पर्यावरण का निर्माण करती हैं।
1: लेकिन पर्यावरण के बिगड़ने के लिए हम मनुष्य ही जिम्मेदार हैं। पर्यावरण का विनाश एक बड़ा मुद्दा है जिसका समाधान हम मनुष्यों को ही करना चाहिए।
0: जलवायु, स्वच्छता, प्रदूषण और पेड़ पौधे, ये सभी चीजें हमारे दैनिक जीवन से सीधा संबंध रखते हैं। हम मनुष्य और पर्यावरण एक दूसरे पर निर्भर होते हैं।
1: बिल्कुल सही बात है। अब जैसे जलवायु प्रदूषण या वृक्षों का कम होना हमारे शरीर और हमारे स्वास्थ्य दोनों पर बुरा असर डालते हैं।
0: अब देखिए ना वर्षा जी, हमारी अच्छी बुरी आदतें जैसे पेड़ पौधों को सहेजना, जलवायु प्रदूषण रोकना, स्वच्छता रखना, ये सब पर्यावरण को प्रभावित करता है।
1: बिल्कुल सही कहा, हमारी गलत आदतें जैसे पानी दूषित करना या जबरन पानी को बहाना, वृक्षों की जरूरत से ज्यादा कटाई करना, ये सारी बातें पर्यावरण को बुरी तरह से प्रभावित करती हैं।
0: हाँ वर्षा जी, अब तो वो समय आ गया है कि हम अपनी इन बुरी और गलत आदतों के कारण पर्यावरण को प्रभावित करने का नतीजा प्राकृतिक आपदाओं का सामना कर भुगत रहे हैं।
1: हमारे पर्यावरण में जैविक सूक्ष्म जीवाणु से लेकर कीड़े मकोड़े, जीव जंतु, पेड़ पौधों के अलावा उनसे जुड़ी सारी जैव क्रियाएं और प्रक्रियाएं शामिल हैं।
0: सामान्य शब्दों में अगर इसको समझें तो ये हमारे जीवन को प्रभावित करने वाले सभी जैविक और अजैविक तत्वों, तथ्यों और प्रक्रियाओं तथा घटनाओं से मिलकर बनी इकाई है।
1: पर्यावरण तो हमारे चारों ओर रहता है और हमारे जीवन की हर एक घटना इस पर निर्भर होती है। यानी किसी भी जीव जंतु के बीच ऐसा संबंध होता है जो पर्यावरण आश्रित होता है।
0: हाँ, पर अब मनुष्यों के हस्तक्षेप के कारण हम कह सकते हैं कि इसे दो भागों में बांटा जा सकता है, एक प्राकृतिक या नैसर्गिक पर्यावरण और दूसरा मानव निर्मित पर्यावरण।
1: आपका कहना बिल्कुल सही है दीपक। बढ़ती जनसंख्या और बड़ी बड़ी इमारतों के कारण पर्यावरण की प्रकृति अब नष्ट होती जा रही है। हर जगह घने जंगलों को काटकर समाप्त किया जा रहा है।
0: हाँ, जबकि हमारे कवियों और लेखकों ने इन्हीं प्राकृतिक मनोहारी रूपों को अपने शब्दों में बांधा है जिसे हम पढ़ते हैं, परंतु जो खूबसूरती देखकर उन्होंने लिखा है वो अब देखने को नहीं मिलती है।
1: आपका इशारा किस ओर है दीपक, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। शायद सतपुड़ा के घने जंगल।
0: शायद नहीं, आपने बिल्कुल सही समझा है। कवि भवानी प्रसाद मिश्र की कविता में इन प्राचीन जंगलों का कितना अच्छा वर्णन मिलता है। कितने घने होंगे ये जंगल जब उन्होंने इन्हें देखकर इस कविता की रचना की होगी।
1: हाँ, कविता की एक पंक्ति में उस रूप का ऐसा सुंदर विवरण है और ऐसा सुंदर चित्रण है कि जब उसे पढ़े तो हमें दिखाई भी देने लगता है।
0: लेकिन वर्षा जी, बड़े अफसोस की बात है, आज वृक्षों की कटाई और बड़ी इमारतों को बनाने और नए नए उद्योगों को शुरू करने के कारण प्राकृतिक पर्यावरण बुरी तरह से नष्ट हो रहा है।
1: बिल्कुल सही कहा, घने वृक्षों को काटकर नष्ट करना, पर्यावरण और प्रकृति से खिलवाड़ कर हम मनुष्यों ने अपनी ही आने वाली पीढ़ियों के लिए संकट खड़ा कर लिया है।
0: कभी कभी लगता है वर्षा जी, प्रकृति से हमने बस लिया ही है, हमने कुछ भी नहीं दिया। अनगिनत वाहनों का धुआं, कारखानों से निकलता धुआं, दूषित पानी और मशीनों की आवाजें, ये सबके कारण वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण बढ़ता जा रहा है।
1: बिल्कुल सही कहा दीपक, इसी कारण हमें नित नई और ऐसी बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है जिसका इलाज हमारे चिकित्सा जगत की समझ से बाहर है।
0: और इस कड़ी में हम वैश्विक स्तर पर फैली बीमारी कोविड-19 की भयावहता को देख चुके हैं, जिसके कारण हमारे देश ही नहीं बल्कि विश्व के हर देश से लाखों लोगों की जानें गईं।
1: इस तरह की त्रासदी से बचने के लिए जरूरी है कि हम अपनी जीवन शैली को बदलें, उसमें परिवर्तन लाने के लिए दृढ़ संकल्पित हों। इस बात की आवश्यकता अब हमारे लिए पहले से अधिक महत्वपूर्ण हो गई है कि हम अब इस ओर पहल का कदम नहीं बढ़ाएं बल्कि दौड़ पड़ें।
0: बिल्कुल ठीक कहा वर्षा जी, क्योंकि यदि हम अपना जीवन बचाना चाहते हैं और मानव जाति और अन्य प्राणियों की रक्षा करना चाहते हैं तो पर्यावरण की सुरक्षा को सुनिश्चित करना ही होगा।
1: हम सभी ने सदा से पर्यावरण के सभी संसाधनों का भरपूर इस्तेमाल किया है। तकनीकी आपदा के कारण भी हम दिन प्रतिदिन प्राकृतिक तौर तरीकों को छोड़ नहीं रहे बल्कि उसकी महत्ता को नजरअंदाज कर रहे हैं।
0: हाँ, जबकि पृथ्वी पर रह रहे हर प्राणी की जिम्मेदारी बनती है कि वे प्रकृति द्वारा दी गई उन अनमोल वस्तुओं के महत्व को समझे और इसे संरक्षित रखे, क्योंकि हमारे आसपास अपने जीवन को बचाने के लिए इसका कोई सानी नहीं है।
1: तभी तो हमारे प्राचीन ऋषि मुनि भी पर्यावरण को बनाए रखने के प्रति गंभीर थे और इसी वजह से उन्होंने प्रकृति को माता के रूप में माना और ये भी जाना कि स्वच्छ पर्यावरण स्वस्थ जीवन के लिए जरूरी है।
0: ये बड़ी सुंदर बात कही आपने। प्राचीन ऋषि मुनियों ने सफाई को महत्व दिया और ये माना कि स्वच्छता स्वस्थ जीवन का आधार है और प्रदूषण जीवन के लिए खतरा।
1: जी हाँ, उन्होंने पर्यावरण को बनाए रखने के लिए पेड़ों की आवश्यकता के अनुरूप ही उपयोग की बात पर बल दिया और पानी का सीमित उपयोग किया उन्होंने सदा अपने शिष्यों को भी पर्यावरण के महत्व और संरक्षण की शिक्षा दी।
0: जी हाँ, अपनी शिक्षा में उन्होंने प्रकृति के साथ रहने और उसके नियमों और सिद्धांतों को अपनाया। हमारे ऋषि मुनियों ने प्रकृति को देवी देवता के रूप में देखा, उसकी पूजा की और कहा कि इसी में हमारा सुख, शांति और समृद्धि है।
1: जी हाँ, उनकी कही गई बातें और उनकी दी गई शिक्षा आज भी प्रासंगिक है। हमें अपने उन पूर्वजों की शिक्षा को अपनाकर पर्यावरण को बचाना ही है।
0: बिल्कुल सही बात कही वर्षा। इसके लिए हमें आत्मनियंत्रण की भी जरूरत है। हमारी महत्वाकांक्षाएं इतनी अधिक बढ़ती जा रही हैं कि हम भूलते जा रहे हैं कि इन्हें पूरा करने के कारण हमारी प्रकृति, हमारी पृथ्वी कितना कुछ सह रही है।
1: अब देखा जाए तो हमारी दिनचर्या में ही कितना अंतर आ गया है। ज्यादातर घरों में देर से सोना और प्रातः काल की बेला गुजरने के बाद उठना और फिर अलसाते हुए अपने कामों को करने का प्रयास करना,
0: जबकि प्रातः काल और सूर्यास्त से पहले का समय प्रकृति के सबसे ज्यादा शांतिपूर्ण समय में से होता है। इस समय सारा वातावरण साफ, शांत और ताजा होता है।
1: सुबह पक्षियों के चहचहाने की आवाजें मन को मोह लेती हैं और कहते हैं ना, प्रातः काल सूर्योदय के समय वातावरण में बड़ी सकारात्मक ऊर्जा होती है जो हमारे मन को और शरीर को तरोताजा कर देती है।
0: और हमारे शरीर को मिलने वाली ये ताजगी हमें पूरे दिन स्फूर्ति से भर देती है, ऊर्जावान बनाए रखती है। तभी तो कहते हैं कि सुबह की सैर हमारे लिए स्वास्थ्यवर्धक होती है।
1: बिगड़ता पर्यावरण वर्तमान समय में विश्व की एक ज्वलंत समस्या है। आवश्यकता है कि हम सब मिलकर और व्यक्तिगत रूप से भी इसको बचाने में जुटें और सभी को प्रेरित करें।
0: प्राकृतिक संसाधनों का सीमित उपयोग करें, प्रकृति के महत्व को समझें। ये सभी जीवों का आश्रय स्थल है, इसलिए मानव जीवन के लिए ये समझना बड़ा आवश्यक है कि हमारा पर्यावरण, जहां हम सब साथ रहते हैं और इस पर केवल हम मनुष्यों का ही नहीं बल्कि हर जीव, जंतु और वनस्पति का अधिकार है, इसे सुरक्षित और साफ सुथरा बनाए रखें।
1: ये प्रकृति का अनमोल उपहार कई चीजों से मिलकर बना है, जैसे वायुमंडल या हवा, जलमंडल या पानी, स्थलमंडल या चट्टाने और मृदा यानी मिट्टी, जैव मंडल या जीव जंतु और सौर ऊर्जा।
0: इसको ऐसे समझ सकते हैं, पर्यावरण को तीन भागों में बांटा गया है, भौतिक, जैविक और सामाजिक पर्यावरण। इन सभी पर हम अपने अगले कार्यक्रमों में विस्तार से चर्चा करेंगे।
1: तो दो पंक्तियों के साथ हम आज के इस कार्यक्रम को विराम देंगे। आइए प्रण करें।
0: धरती डगमग डोलती आते नित भूकंप,
1: करो प्रकृति दोहन नहीं मिट जाए हड़कंप।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम प्रकृति की पुकार। अब वक्त है इजाजत लेने का।
1: इस कार्यक्रम की परिकल्पना की थी अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, लेखन प्रमिला दिवाकर मुंशी। मैं था आपके साथ दीपक निमा।
0: और मैं थी आपके साथ वर्षा सिंह। तो सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 FM, देश का चैनल देश के लिए।
1: नमस्कार।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: जेम्स रबी की हत्या, एक मौत जिसने साम्राज्य को युद्ध के मुहाने पर खड़ा कर दिया। क्या आप जानते हैं कि 1887 में एक सुदूर जंगल में एक अकेले ब्रिटिश नागरिक की हत्या ने ईस्ट इंडिया कंपनी और बर्मी साम्राज्य के बीच लगभग युद्ध छेड़ दिया था। वो व्यक्ति था जेम्स रबी, और नाफ नदी के मुहाने पर हुई उसकी मौत केवल एक साधारण अपराध नहीं थी, ये उस मानवीय आपदा का रक्त रंजित चरमोत्कर्ष था जिसे अंग्रेज हताशा में अनदेखा करने की कोशिश कर रहे थे। कहानी 1785 में शुरू होती है, जब बर्मा ने अराकान पर आक्रमण किया, जिसके कारण हजारों शरणार्थी भागकर कंपनी के चटगांव जिले में आ गए। ये मगह शरणार्थी अंग्रेजों के लिए कृषि श्रम का एक संभावित जरिया थे, लेकिन वे एक राजनयिक दुस्वप्न भी थे। बर्मी जनरल वानकेचा उच्च पदस्थ अराकानी विद्रोहियों को पकड़ने के लिए दृढ़ संकल्पित था, और उसे कंपनी की सीमाओं की कोई परवाह नहीं थी। क्या आप जानते हैं कि अंग्रेजों ने शरणार्थियों की इस पहली लहर को कैसे संभाला? उन्होंने उन्हें जुआओ डी बैरोस नामक एक पुर्तगाली जमींदार की देखरेख में रख दिया और उसे एक मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल किया। लेकिन जब बर्मी सेना ने वास्तव में सीमा पार की, तो कंपनी की स्थानीय सेना, जो संसाधनों की कमी से जूझ रही थी और अपनी हार से डरी हुई थी, पीछे हट गई। ये महसूस करते हुए कि ब्रिटिश सुरक्षा एक खोखला वादा है, शरणार्थी पहाड़ियों में भाग गए और जीवित रहने के लिए मुक्त लूटपाट और डकैती का रास्ता चुन लिया। इसी अराजकता के बीच जेम्स रबी को लूट लिया गया और उसकी हत्या कर दी गई। रबी की मौत तक स्थानीय कलेक्टर छिपाने की संस्कृति का पालन कर रहा था। वो कलकत्ता में अपने वरिष्ठों के सामने अक्षम न दिखने के लिए बर्मी छापों की रिपोर्ट को हल्का करके पेश करता था। लेकिन एक ब्रिटिश नागरिक की हत्या ने सब कुछ बदल दिया। ये एक ऐसी खबर थी जिसे अधिकारी अब दबा नहीं सकते थे, जिसने फोर्ट विलियम्स की केंद्र सरकार को आखिरकार ये स्वीकार करने के लिए मजबूर कर दिया कि उनकी दक्षिणी सीमा एक कानून विहीन शून्य बन गई है। इस संकट का परिणाम वास्तव में विचित्र था। बर्मी गवर्नर वाजा, जिसे पेगू राजा के नाम से जाना जाता है, उसने रबी की हत्या को एक प्रोपेगेंडा हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। उसने ब्रिटिश कलेक्टर को एक ताना मारते हुए पत्र लिखा, जिसमें दावा किया गया कि वो 4000 मस्कटधारियों के साथ चटगांव पर आक्रमण कर रहा है, ताकि कानून व्यवस्था लागू की जा सके और उन लुटेरों को पकड़ा जा सके जिन्होंने अंग्रेज को मारा था। क्या आप इस संकट की दुखद विडंबना जानते हैं? कलेक्टर शियरमैन बर्ड ने अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए शरणार्थियों को लुटेरा घोषित कर दिया और कहा कि वे कभी भी देश की कोई आवश्यक सेवा नहीं करेंगे। वो पूरी तरह से इस तथ्य को भूल गए कि सुरक्षा प्रदान करने में उनकी अपनी विफलता ने ही उन्हें अपराध के लिए मजबूर किया था। जेम्स रबी की मौत इस बात की याद दिलाती है कि विचारों के साम्राज्य में ईआईसी अक्सर अपने झंडे के नीचे रहने वाले लोगों की सुरक्षा से अधिक सत्ता की छवि की परवाह करती थी।

0: ख्वाजा अहमद का मिशन 1665, जब मुगल दूत डच राजधानी पहुंचा। 3 मार्च 1665 को एक प्रभावशाली व्यक्तित्व ने डच ईस्ट इंडिया कंपनी के समुद्री साम्राज्य के तांत्रिक केंद्र बटाविया कैसल के डक पर कदम रखा। उसका नाम ख्वाजा अहमद था और वो कोई व्यापारी नहीं था, बल्कि वो बंगाल के शक्तिशाली सूबेदार गवर्नर और मुगल शासक औरंगजेब के मामा शाइस्ता खान का कूटनीतिक दूत था। जहां इतिहास एशियाई दरबारों में यात्रा करने वाले यूरोपीय राजदूतों के वृत्तांतों से भरा है, वहीं अहमद का मिशन इसके विपरीत था। ये एक मुगल दूत द्वारा यूरोपीय कंपनी राज्य की राजधानी की यात्रा का एक दुर्लभ उदाहरण था। ये मिशन प्रांतीय कूटनीति का एक सटीक उदाहरण था, जहां स्थानीय मुगल गवर्नर राजाओं की स्वायत्तता और वजन के साथ काम करते थे। ख्वाजा अहमद एक उच्च तनाव के क्षण में पहुंचा था। शाइस्ता खान चटगांव बंदरगाह को जीतने और अरकान खत्म करने के लिए एक बड़े सैन्य अभियान की तैयारी कर रहा था। डच एक अनिश्चित स्थिति में थे। वे बंगाल में अपने व्यापार से भारी लाभ कमा रहे थे, लेकिन साथ ही वे शाइस्ता खान के दुश्मनों के क्षेत्रों में भी व्यापार कर रहे थे। अहमद ने डच सरकार के सामने एक पत्र और उपहार प्रस्तुत किए, जिसमें एक कड़ा अल्टीमेटम छिपा हुआ था। संदेश बिल्कुल स्पष्ट था, वीओसी को तुरंत अपनी अरकान फैक्ट्री बंद करनी होगी। चटगांव अभियान में जहाजों और तोपों के साथ मुगल सेना का समर्थन करना होगा। यदि डच इनकार करते तो शाइस्ता खान ने उन्हें न केवल बंगाल से निकालने की धमकी दी, बल्कि पूरे मुगल साम्राज्य में उनके संचालन को रोकने की चेतावनी दी। बटाविया में डच प्रशासक एक रणनीतिक दुविधा में फंस गए। हालांकि उन्होंने शुरुआत में व्यवहारिक कारणों की कमी का बहाना बनाकर देरी करने की कोशिश की, लेकिन वो समझ गए थे कि वो दिल्ली में मुगल शासक से अपील करके शाइस्ता खान को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। कंपनी के अधिकारियों का मानना था कि सूबेदार केंद्रीय दरबार से बहुत दूर रहता है और वो दिल्ली के किसी भी हस्तक्षेप से बहुत पहले ही प्रांतों में डचों को परिणाम भुगतने पर मजबूर कर सकता है। ख्वाजा अहमद की मिशन बंगाल के लिए एक बड़ी सफलता थी। पूर्ण व्यावसायिक विनाश के खतरे का सामना करते हुए वीओसी ने अंततः अरकान में अपना लॉज यानी व्यापारिक केंद्र बंद कर दिया। ये दुर्लभ मिशन दिखाता है कि शक्तिशाली दिखने वाले यूरोपीय कंपनियों को मौजूदा एशियाई सत्ता संरचनाओं के साथ आर्थिक और सैन्य रूप से तालमेल बैठाने के लिए मजबूर होना पड़ता था। बटाविया में ख्वाजा अहमद के आगमन ने साबित कर दिया था कि 17वीं शताब्दी में ओरिएंट की रानी यानी बटाविया को अभी भी भारतीय उपमहाद्वीप के मालिकों को जवाब देना पड़ता था।
1: नमस्कार आदाब, मैं हूं पिनाज मसानी और आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद।
2: दिल में रख लो कि निगाहों में बसा लो मुझको, दिल में रख लो कि निगाहों में बसा लो मुझको।

0: नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। मैं हूं आपकी रेडियो सखी सुनीता सिंह, लेकर उपस्थित हूं हमारी सनातन यौगिक परंपरा पर प्रकाश डालता कार्यक्रम योग संवाद। श्रोताओं, वो कोई सौभाग्य क्षण ही होता है जब जीवन से जुड़े प्रश्न मन को इतना आंदोलित कर देते हैं कि संसार का समस्त वैभव, सामर्थ्य और आकर्षण मन को संतोष नहीं दे पाता है। लहरों की तरह प्रश्न जीवन तट से टकराते रहते हैं और मनुष्य के भीतर समुद्र जैसा शोर गूंजता रहता है। लेकिन विशेष बात यह है कि यही वो समय होता है जब ज्ञान का द्वार खुलता है और उस द्वार तक पहुंचाने के लिए नियति स्वयं गुरु का मार्ग प्रशस्त करती है। योग वासिष्ठ का आरंभ भी एक ऐसे ही अद्भुत क्षण से होता है। अयोध्या के राजकुमार श्री राम तीर्थ यात्रा से लौटकर गहन वैराग्य में डूबे हुए हैं। उनके अंतर्मन की पीड़ा को महर्षि विश्वामित्र पहचान लेते हैं। वो जानते हैं कि ये विषाद नहीं है, सत्य की खोज है। ये मौन नहीं है, आत्मबोध की पुकार है। इसलिए वो कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ से आग्रह करते हैं कि वो युवराज श्री राम के संशयों का निवारण करें और उन्हें आत्मज्ञान का अमृत प्रदान करें। यहीं से आरंभ होती है गुरु और शिष्य के बीच की वो दिव्य संवाद धारा जिसने युगों युगों से अनगिनत साधकों के जीवन को आलोकित किया है। आइए योग संवाद में आज की चर्चा आरंभ करें, योग वासिष्ठ के पन्ने पलटें और उस बिंदु पर पहुंचें जहां महर्षि विश्वामित्र श्री राम को उपदेश देने हेतु महर्षि वशिष्ठ से अनुरोध कर रहे हैं। हमेशा की तरह इस बातचीत के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं योग, अध्यात्म और जीवन विज्ञान विशेषज्ञ डॉक्टर शशिकांत मणि त्रिपाठी। नमस्कार शशिकांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में।
1: नमस्कार।
0: भगवान श्री राम तीर्थ यात्रा करके लौटे हैं, संसार की नश्वरता और सुख दुख को देखा है, जीवन मृत्यु को देखा है, मोह को भी बहुत निकट से देखा है
1: जी।
0: और उनके भीतर वैराग्य का उदय हुआ है और महर्षि विश्वामित्र ये बहुत अच्छी तरह से जान रहे हैं कि ये जो श्री राम की उदासी है ये कोई साधारण उदासी नहीं है, बल्कि ये आत्मज्ञान की एक पुकार है। तो इस बात को विश्वामित्र जी किस तरह से देख रहे हैं, क्या आत्मज्ञान के लिए पात्रता भी आवश्यक है?
1: बिल्कुल, आपने जब ये बात कही तो मुमुक्ष व्यवहार प्रकरण में विश्वामित्र जी ने राम जी को सुखदेव जी का वृतांत सुनाया। उसमें वो कहते हैं कि सुखदेव जी ने अपने विवेक से उस ज्ञान को प्राप्त कर लिया था जिस ज्ञान को प्राप्त कर लेने के बाद किसी और ज्ञान की आवश्यकता शेष नहीं रह जाती है। बावजूद इसके सुखदेव जी को शांति नहीं मिली और संसार को देख करके उन्होंने अपने पिता से प्रश्न किया। पिता ने भी वही उत्तर दिया जो उन्होंने अपने विवेक से जाना था
0: जी।
1: उसके बाद भी शांति नहीं मिली, क्योंकि इसके पीछे कारण यह है कि उनके अंदर जो पिता होने का जो भाव था कि ये मेरे पिता हैं, तो वो ज्ञान ग्राह्य नहीं हो पाया।
0: अच्छा।
1: कई बार आप देखिएगा कि ज्ञान की स्थिति ऐसी होती है कि जो हम अपने अनुभव से प्राप्त करते हैं उन अनुभवों को हम स्वीकारने की बजाय हम दूसरों के द्वारा बताए गए ज्ञान पर ज्यादा भरोसा करते हैं। हाँ, अपने जीवन के अनुभव पर हम बहुत नहीं ठहरते। तो ऐसे में जब ये जाते हैं जनक जी के पास, तो जनक जी सबसे पहले इनकी परीक्षा लेते हैं और परीक्षा में वो देखते हैं कि पहले उनकी अवहेलना करते हैं कि ठीक है उनको द्वार पर खड़े रहने दो
0: जी।
1: फिर उनको अंदर बुलाते हैं आंगन में जहां पर अब राज्य वैभव सारा मिलता है, एक तरफ त्याग है दूसरी तरफ भोग है, और इन दोनों में उनके चित्त की स्थिरता बनी हुई है। और जब ये चित्त की दोनों स्थितियों में स्थिरता बनी है तब उनको वो अंतःपुर में बुलाते हैं जहां पर उनसे वो संवाद कर रहे हैं जनक जी कि अब बताइए क्या है। तो वो जनक जी से भी वही प्रश्न करते हैं जिस प्रश्न को उन्होंने अपने पिताजी से किया। तो जनक जी कहते हैं कि हे ब्राह्मण, आपको जो जानने योग्य है वो जान लिया है आपने, आप पूर्ण काम हो चुके हैं। अब आप इस संसार में जितने भी दृश्य पदार्थ हैं उन दृश्य पदार्थों के प्रति आपका कोई आकर्षण नहीं है, यही इस बात का प्रमाण है कि आपने ज्ञेय को जान लिया, जो जानने योग्य है वो जान लिया। ऐसी ही स्थिति राम जी की वो कह रहे हैं विश्वामित्र जी। राम जी को कहते हैं कि हे मुनीश्वरों, राम जी ने ज्ञातव्य वस्तु को पूर्णतः जान लिया है। जितने भी वहां मुनीश्वर मौजूद हैं उनसे विश्वामित्र जी राम जी के बारे में कह रहे हैं कि जान लिया है, क्योंकि इन शुद्ध बुद्धि वाले राम को भोग अच्छे नहीं लगते। अब एक बात देखिए कि अगर भोग का सत्य व्यक्ति को पता चल जाए तो आप देखिए जिस तरह से संसार में लोग भोगों के पीछे बेहोश होकर के कह सकते हैं भाग रहे हैं, तो वो जानेंगे कि ये भोग जैसे हविष की भांति है, जैसे आप यज्ञ में हविष डालते हैं तो अग्नि प्रज्वलित होती है, ऐसे ही संसार के जो भोग हैं ये और प्रज्वलित होते हैं न कि शांत होते हैं। तो ऐसे में किसी व्यक्ति का पूर्ण सत्य को जान लेने का आधार ही यही है कि संसार के भोगों के प्रति वो आकर्षित है कि नहीं है, या संसारेतर जैसे किसी भी प्रकार की कामना अगर आपके मन में शेष है तो इसका मतलब यह है कि आपने कामनाओं के बढ़ने के सत्य को नहीं जाना कि कामनाएं कभी शांत नहीं होती बल्कि और प्रज्वलित होती हैं वो यज्ञ के अग्नि की भांति जब उसमें हविष पड़ता है। तो कहते हैं कि राम ने जान लिया और राम की शुद्ध बुद्धि है, वे इन्हें रोग के समान प्रतीत होते हैं। भोग रोग के समान जब प्रतीत होने लगे तो इसका मतलब यह है कि भोगों का वो सत्य आपके सामने उद्घाटित हो चुका है, जिस सत्य को नहीं जानने के कारण लोग भोगों के पीछे अपने जीवन को तबाह कर देते हैं। जैसे आपने देखा होगा हम लोग कहते हैं कि समा और परवाने की बात, कि वो आकर के दिए पर जल जाता है, तमाम जले हुए लोगों को देखता है फिर भी वो जान नहीं पाता, तो ऐसे ही इंसान भोगों में जी लिप्त रह करके भी उसी को शांत करने के लिए उसी का सहारा ले रहा है कि फिर से वो सोचता है कि मैं और कोई हविष डाल करके उस अग्नि को शांत कर दूंगा, जबकि भोगों की अग्नि भोगों से कभी शांत नहीं होती।
0: तो ये जानना आवश्यक है कि जो भोग है वो एक तरह का रोग है।
1: हाँ, भोग रोग है, लेकिन ये बात वही जान सकते हैं जिनकी बुद्धि राम की तरह शुद्ध हो गई है। अशुद्ध बुद्धि से इसका ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि भोग बुद्धि को अशुद्ध करते हैं। भोगों के प्रभाव से अशुद्ध हुई बुद्धि में ये ज्ञान उपजेगा ही नहीं कि भोग रोग है।
0: जी जी बिल्कुल,
1: वो तो भोग योग बन जाएगा उनके लिए।
0: जी, जी। अच्छा, भगवान श्री राम ने भव बंधन को देखा है, जो संसार में जिस तरह से वो लिप्त हैं ये देखा है, तो इसी बात से वो उद्वेलित भी हैं।
1: जी,
0: तो संसार का जो बंधन है कैसे क्षीण होता है?
1: भोगों के चिंतन से अज्ञान जनित बंधन दृढ़ होता है। अब देखिए, मैंने हम लोग बात की कि अज्ञान जनित बंधन, बंधन हमेशा अज्ञान जनित है, बंधन कभी ज्ञान के साथ नहीं टिकता। ठीक वैसे ही जैसे हजारों साल का अंधेरा प्रकाश के सामने खड़ा नहीं हो सकता कि आप वो कहे कि नहीं तो हजारों साल से मेरा साम्राज्य है, अभी अभी आप आए हैं, कैसे हम चले जाएं। तो ऐसे ही ज्ञान के होते ही बंधन क्षीण हो जाता है, यानी बंधन हमेशा अज्ञान से ही जन्म लेगा, इसीलिए अज्ञान जनित कहलाता है। और अज्ञान जनित बंधन अगर किसी भी व्यक्ति के जीवन में है तो उसकी भोग में आकांक्षा बनी रहेगी, कामना बनी रहेगी, वो अनासक्त नहीं हो सकता। हाँ। वो हमेशा उसकी आसक्ति बनी रहेगी, और भोग वासना के शांत हो जाने पर संसार बंधन क्षीण हो जाता है। ये राम जी ने देखा है, और राम जी ने संसार में जो जितने भी लोग लगे उनको जो कर्म करते हुए भी दुख से मुक्त नहीं दिखाई दिए, उनके मूल में यही कारण था कि वो कर्म किसी भोग की आकांक्षा में कर रहे थे। इसीलिए भगवान कृष्ण ने गीता में कहा मां फलेषु कदाचना, क्योंकि जब फल की कामना से तुम कर्म करोगे तो वो कर्म ही तुम्हारे बंधन का कारण बनेगा, और जब फल के भोग की वासना क्षीण होगी तो वो स्वयमेव आपके कर्म का परिणाम, वो फल बनेगा ही बनेगा, बिना चाहे ही आपको मिलेगा। इसलिए आपने सुना होगा वो एक लोकोक्ति है ये कि बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। तो कहते हैं ना कि अगर आपके अंदर से मांग खत्म हो जाए तो वो समस्त जिसकी चाह आपको है वो अपने आप पूरी हो जाती है, लेकिन मांग के रहते ही उसमें बंधन खड़ा होगा, बैरियर खड़ा होगा।
0: अच्छा, इस बंधन की बात हो रही है तो मेरे मन में ये सवाल आता है कि बंधन और मोक्ष का कोई संबंध है आपस में, क्या आशय है?
1: शंकराचार्य जी थे, आदिगुरु शंकराचार्य जी, जब वो निर्वाण शतकम लिखते हैं तो उसमें कहते हैं वो कि न बंधन न मुक्ति, यानी बंधन नहीं तो मुक्ति नहीं, बंधन और मोक्ष ये दोनों एक दूसरे के अनुपूरक हैं। जिस व्यक्ति ने बंधन को अपने जीवन में अनुभव किया वही मोक्ष का अनुगामी होगा। बंधन जब महसूस होगा, यानी जब भोग बंधन स्वरूप दिखाई देने लगे, तो निश्चित ही आप ये मान लें कि उन भोगों से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो रहा है।
0: जी, जी।
1: लेकिन जब तक भोग योग बना रहेगा, जब तक भोगों को पाने की कामना बनी रहेगी, तब तक व्यक्ति कभी भी बंधन से मुक्त नहीं होगा। विश्वामित्र जी कहते हैं कि श्री राम विद्वान लोग भोग वासना के क्षय को ही मोक्ष कहते हैं। विश्वामित्र जी राम जी से कहते हैं कि जो ज्ञानी पुरुष हैं, जो तत्वज्ञ हैं, तत्वदर्शी हैं, वो भोग वासना का क्षय होना ही मोक्ष कहते हैं। मोक्ष कुछ और नहीं है, भोग वासना का क्षय मोक्ष है। कहते हैं मोह का क्षय होना मोक्ष है।
0: जबकि आम सांसारिक जो मनुष्य है वो क्या सोचता है कि जन्म मृत्यु का जो चक्र है उससे मुक्ति ही मोक्ष है।
1: अब जन्म मृत्यु भी तो भोग का परिणाम है, भोग के लिए मिला हुआ है। आप देखिए जो जाति आयु और भोग जो योग में शब्द आता है, जाति मतलब होता है जन्म, कि व्यक्ति का जन्म किसी अतृप्त भोग के कामना की वजह से यहाँ जन्म होता है और पूरे जीवन जब तक उसकी आयु पूर्ण नहीं होती है वो उन भोगों में संलग्न होता है। ये तब तक व्यक्ति रहता है इस संसार में जब तक उसके प्रारब्ध क्षीण नहीं हो जाते। जब सुखदेव जी को जनक जी ने ज्ञान दिया तो जनक जी फिर उसके बाद सुमेरु पर्वत पर चले गए और वहां जब तक प्रारब्ध क्षीण नहीं हुआ तब तक वो शरीर में बने रहे, नहीं तो वो निर्विकल्प समाधि में स्थित रहे। अब देखिए यहाँ पर एक इशारा ये भी है कि जब भी शरीर मिलेगा वो प्रारब्धावशात मिलेगा और प्रारब्ध के क्षीण हुए बिना आप शरीर से मुक्त नहीं हो सकते और शरीर से मुक्त नहीं होंगे तो भोग से भी मुक्त नहीं होंगे, क्योंकि शरीर पर आप भले अंतर जगत को अपने शांत कर लें और भोग की वासना का क्षय कर दें यानी मोक्ष की प्राप्ति कर लें, लेकिन शरीर के रहते शरीर के भोगों का तो भोग शरीर को भोगना ही है ना। भूख प्यास नींद ये सब उसको आएगी तो ये स्वाभाविक है,
0: शरीर के साथ जुड़ी वो एक स्वाभाविक सी बात
1: जी। तो वो कहते हैं कि विषय भोग वासनाओं के क्षय को ही विद्वान लोग मोक्ष कहते हैं और विषयों में होने वाली सुदृढ़ वासना को ही बंधन कहते हैं। देखिए कितना सुंदर परिभाषा है कि विषयों में जो आकर्षण है, जो आसक्ति है, ये क्या है, ये बंधन है और विषयों की वासना का क्षय होना मोक्ष है।
0: मोक्ष है। अच्छा, तत्वज्ञ की इसमें चर्चा होती है
1: जी,
0: तो मैं जानना चाहती हूँ कि जो तत्वज्ञ है वो कौन है, कैसा होता है, क्या लक्षण होते हैं उसके।
1: बिल्कुल, तत्वज्ञ के बारे में जब विश्वामित्र जी राम जी को बताते हैं तो वो कहते हैं कि जिसकी दृष्टि राग द्वेषादि दोषों से रहित है वही तत्वज्ञ है, उसी ने जानने योग्य वस्तु को जाना है और वही विद्वान है। उस महात्मा पुरुष को भोग हठात अच्छे नहीं लगते, जैसे मरुभूमि में लता नहीं उगती, उसी प्रकार जब तक जानने योग्य तत्व का कुछ भी ज्ञान नहीं होता तब तक मनुष्य के हृदय में विषयों की ओर से वैराग्य नहीं होता है। अब एक चीज देखिए कि जब तक जानने योग्य आपको संसार में शेष चीजें रहेंगी तब तक आपके जीवन में वैराग्य नहीं होगा, यानी भोग की वासना का क्षय नहीं होगा। जब जानने योग्य को आप जान लेंगे, अब जानने योग्य क्या है, जानने योग्य यही है कि संसार के विषयों में वासना का होना बंधन है और वासना का क्षीण हो जाना मोक्ष है। जब आप ये बात जान लेते हैं तो फिर आप जानने योग्य को आपने जान लिया, फिर संसार के विषय आपके आसपास आएंगे। जैसे जनक जी संसार के विषय में ही हैं, लेकिन वो उससे वैसे निर्लिप्त हैं जैसे कीचड़ से कमल। अध्यात्म में कमल और कीचड़ का उदाहरण बड़ा सामान्य रूप से दिया जाता है कि कीचड़ में कमलवत रहिए। इसका अर्थ ये हुआ कि इन दोनों का संबंध है लेकिन दोनों एक दूसरे से मुक्त हैं,
0: इसीलिए जनक विदेह है।
1: जनक विदेह कहलाते हैं कि देह में रह करके भी देह के किसी वासनाओं का उन पर प्रभाव नहीं है, वासनाएं क्षीण हो गई हैं, इसलिए वो विदेह हैं और विदेह होकर के ही आप मोक्ष को अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि देह में तो आपको वासनाएं खींचेंगी, वो बंधन का कारण बन सकती हैं।
0: अच्छा, अब अगला प्रश्न मेरे मन में ये है कि श्री राम जी ने संसार को देखा है और जिस तरह से देखा है उससे चित्त उनका विचलित हो गया है, वैराग्य उसमें उत्पन्न हुआ है, इस चित्त को कैसे विश्राम मिलेगा, कैसे मिलता है विश्राम।
1: देखिए, चित्त को विश्राम तभी मिलेगा जब आप सदचिंतन करेंगे और सदचिंतन क्या है, ये विश्वामित्र जी कह रहे हैं, हे मुनिवर आप लोग यह निश्चित रूप से समझ लें कि रघुकुल शिरोमणि श्री राम को गेय तत्व का ज्ञान हो गया है, क्योंकि गेय का मतलब जो जानने योग्य है, क्योंकि इन्हें ये भोगों की रमणीयता अब आनंदित नहीं कर रही है। ये सबसे बड़ा प्रमाण है कि संसार के विषयों में जो व्यक्ति रमण करता है इसका मतलब ये है कि उसको अभी इस सत्य का पता नहीं है कि संसार में कभी भी सुख नहीं बल्कि अंततः उसका परिणाम दुख कहलाता है। और भोग, आपको योग में तो ये कहा भी गया है, परिणाम दुख माने ऐसा सुख जिसका परिणाम दुख में परिणित हो जाए। तो संसार का कोई ऐसा सुख नहीं है जो परिणामी रूप से दुखी करे आपको, है ना। तो उसको जो ज्ञानी व्यक्ति है वो जानता है कि इसको कहता है वो परिणाम दुख है, कि प्रकृति के किसी भी विषय के सानिध्य के साथ परिणाम में अंततः दुख ही प्राप्त करेंगे आप। तो राम जी को कहते हैं कि राम जी ये मान लीजिए आपकी ये अब संसार के रमणीय भोगों में इन्हें आनंद नहीं आ रहा है, इसलिए राम जी तत्व को बुद्धि द्वारा जानते हैं
0: जी।
1: यानी जो बुद्धि तत्व को जाने, जैसे आप देखिए भौतिक जगत में भी जो वैज्ञानिक हैं, जो फिजिसिस्ट हैं, वो क्या करते हैं, उन कार्य कारण के संबंधों को उद्घाटित करते हैं। ऐसे ही आत्मिक जगत में जब अध्यात्म का चिंतन या अध्यात्म विद्या का तत्वज्ञ पुरुष चिंतन करते हैं तो उस तत्व की तरफ जानना चाहते हैं कि आखिर वो मूल तत्व क्या है जिसके द्वारा ये जो चित्त की जो प्रवाहमान अवस्था है ये स्थिरता को प्राप्त हो, आखिर क्यों चित्त विषय वासनाओं की तरफ भाग रहा है। तो उसको उन्होंने कहा कि ये अज्ञानता के नाते भाग रहा है क्योंकि हम आज तक विषयों के पीछे भागे लेकिन विषयों से कभी शांति नहीं मिली। तो आने वाले समय में जिन विषयों की आकांक्षा पाल करके हम बैठे हैं और सोचते हैं कि हम उससे शांत हो जाएंगे, तो एक तो महज ये मुगालत है, एक दिवा स्वप्न की तरह है। क्योंकि अगर ये होता तो आज तक तो हमें शांति का कितनी बार अनुभव हुआ होता।
0: तो बड़ी गंभीर बात है कि सुख शांति आनंद की कामना हर मनुष्य को है। हाँ। उसी प्रयास में वो जीवन बिता रहा है, प्रयास कर रहा है
1: जी।
0: लेकिन ये मिलना नहीं है।
1: नहीं, मिलना जैसे होश पूर्वक, जैसे कहते हैं इसको महात्मा बुद्ध कहते थे या उनको मानने वाले लोग कहते हैं कि माइंडफुल होकर के अगर आप पूरी एकाग्रता और पूरी तन्मयता के साथ अगर देखें तो जो भी आपके चित्त में जो वेग आया है, अगर थोड़ा सा आप स्पेस लें, पॉज लें, अल्प विराम लें तो आपको लगेगा कि वो एक लहर की तरह आया है और फिर धीरे धीरे अपने आप शांत हो जाएगा। किसी भी भाव को आप देखिए जो अपना उद्वेग पैदा करता है चित्त में, चाहे क्रोध हो, चाहे वो प्रेम, प्रेम तो भाव यद्यपि बहुत ऊंची भाव है, मैं उसे नहीं मानता कि इस श्रेणी में आता है, लेकिन वो भाव थोड़ी देर बाद शांत हो जाता है, जैसे लहरें अपने आप शांत होती हैं। लेकिन अगर उस भाव के बहाव में आप आ गए तो फिर आप जीवन भर अशांत रहेंगे या उसी के आदति हो जाएंगे, जिसको ये न्यूरोसाइंस के लोग कहते हैं, वो एक लूप में व्यक्ति फंस जाता है और लगातार उसी को रिपीट करता है। तो हम लोग सांसारी लोग सामान्यतः उसी लूप को रिपीट कर रहे हैं, लेकिन जो तत्वज्ञ है वो वहां पॉज लेता है, जैसे ही वो प्रतिक्रिया नहीं करता कि जैसे कोई भाव बना और तुरंत उस प्रवाह में उसने प्रतिक्रिया की, क्योंकि आप प्रवाह में प्रतिक्रिया करते हैं और जैसे ही आप शांत होते हैं उस समय आप क्रिया करने में दक्ष होते हैं। तो उसके लिए तत्वज्ञ होना जरूरी है, तत्व से जानना जरूरी है। और तत्व ये है कि जैसे ही आप थोड़ा सा शांत होंगे, जगह देंगे, तो भाव अपने आप डायल्यूट होने लगेगा, शांत होने लगेगा और फिर आप सही निर्णय ले पाएंगे।
0: अच्छा, तो भगवान श्री राम जो हैं, सब कुछ उन्होंने देखा है
1: जी,
0: तीर्थ यात्रा के दौरान वो विचलित हुए हैं, तो देखने के बाद वो स्वयं समझ नहीं पाए, चित्त बहुत उनका विचलित है, बहुत परेशान है वो, तो ये उनका चित्त किस तरह से शांत होगा,
1: राम जी का चित्त कैसे शांत होगा? अगर आप ये कह रहे हैं तो ये कहते हैं कि वो गुरु के वचन से शांत होगा। यहाँ पर एक बड़ी बात आपने कहा कि गुरु के वचन, अब यहाँ पर हम श्रोताओं से ये कहना चाहेंगे कि जिस तरीके से हम लोगों की गुरु की मान्यता है, ऐसे वचन की बात यहाँ नहीं हुई है। यहाँ पर जैसे मैं फिर सुखदेव जी के वृतांत पर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि सुखदेव जी को जो ज्ञान अपने स्वयं के विवेक से मिला था और उसके बाद भी उनके मन में प्रश्न बने, यानी विवेक से ज्ञान होने के बाद भी प्रश्न का निर्मूलन नहीं हुआ। हाँ। उसके बाद जब उस प्रश्न का उत्तर वही ज्ञान दिया गया जिस ज्ञान को उन्होंने अपने विवेक से पाया था, तो भी नहीं हुआ, क्योंकि वो कहते हैं कि तुम्हें जानता ही हूं जो बता रहे हैं आप। फिर उनको जनक के पास भेजा गया, यानी यहाँ जनक की जो भूमिका है वो गुरु की भूमिका है। तो जनक के पास जाकर के उनका चित्त शांत होता है, लेकिन खुद के द्वारा एक्सप्लोर किया हुआ ज्ञान उनके चित्त को शांत नहीं करता, पिता के द्वारा दिया ज्ञान उनके चित्त को शांत नहीं करता, शास्त्रों में भी वही बात लिखी हुई है, उन शास्त्रों के ज्ञान से भी उनका चित्त शांत नहीं होता। तो इसका मतलब यह हुआ कि यहां गुरु का वचन एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है कि गुरु वो होता है जो जिस ज्ञान को आपको देने वाला है या जिस ज्ञान को आप उससे प्राप्त करने वाले हैं, वो उसके प्रत्येक कोशिकाओं से वो ज्ञान प्रवाहित हो रहा है, उसके प्रत्येक क्रियाओं में वो ज्ञान बह रहा है।
0: यही मैं पूछने जा रही थी। हाँ। कि क्या कारण है कि वही जवाब आपकी बुद्धि ने आपको दी है, विवेक ने दिया है, वही जवाब आपको पिता ने दे दिया, लेकिन शास्त्रों से भी वही उत्तर आपको मिला है, लेकिन गुरु के वचन से या गुरु के सानिध्य से वो बात, उसका समाधान हो जाता है, चित्त शांत हो जाता है।
1: जी जी।
0: तो उसका कारण यही है,
1: उसका कारण यही कि वो जो सद्गुरु है वो सद जीता है, वो ऐसा नहीं है कि सद की बातें करता है,
0: जी, जी, जी।
1: वो सद को जीता है, सद चिंतन करता है, सद वचन बोलता है और सद को जीता है। इसी को कबीर साहब ने एक दोहे में शायद कहा है कि कथनी करे सुपूत हमारा, करनी करे सुनाती, रहनी रहे सदगुरु हमारा, हम रहनी के साथी। तो कथनी करनी और रहनी, ये तीन स्थिति बनी कि आपने शास्त्रों से सद वचन पढ़ा और उसे कह दिया, एक बात ये हो गई, और आपने शास्त्रों से सद्वचन सुना, उसका श्रवण किया, मनन किया, एक दूसरी बात हो गई, एक स्थिति और अच्छी हुई कि मनन कर रहे हैं आप और उसका निधिध्यासन कर रहे हैं, यानी वो आपके रहन में आ गया, आपके रहने में आ गया। तो जब रहने में आ गया तो फिर बच्चा या कोई भी व्यक्ति उससे सीखता है। सीखने की एक प्रक्रिया है जो आज मनोविज्ञान में जो सोशलाइजेशन की थ्योरी है कि आदमी सामाजिक संज्ञान कैसे लेता है, तो जॉन बेंडुरा नाम का एक मनोवैज्ञानिक है, वो कहता है कि जो आदमी इमिटेशन से सीखता है, अनुकरण से सीखता है, वो देखता है लोगों को, अपने माता पिता को, अपने आसपास को। तो जो गुरु होता है, गुरु को देखने मात्र से ज्ञान होता है, गुरु का दर्शन ही उसका वचन है, गुरु शब्द नहीं बोलता, गुरु का जीवन बोलता है, गुरु का एक्शन बोलता है। और हम लोग कहते हैं कि योर एक्शन लाउडर देन वर्ड, कि आपका कार्य आपके शब्दों से तेज बोलता है, उसकी ध्वनि बहुत आसानी से सुनने में आती है, लेकिन आदमी उसे क्रिया में नहीं, सिर्फ बातों में, वचन में रखता है। तो मन, वचन और फिर जब वो कर्म में आता है तब वो ज्ञान आपके जीवन का हिस्सा बन जाता है और आप उस ज्ञान से प्रकाशित दिखते हैं, फिर अन्य लोगों के प्रकाश की वजह भी बन जाते हैं।
0: जी, तो मतलब गुरु का जो जीवन है, उसका जो आचरण है, वही एक मुखर या बुलंद स्वर में एक संदेश देता है और एक ज्ञान दे देता है।
1: विश्वामित्र जी कहते हैं कि महात्मा श्री रामचंद्र जी के चित्त को के विश्राम के लिए ये पूज्यपाद वशिष्ठ जी ही यहाँ युक्ति का प्रतिपादन करेंगे। देखिए कितनी बड़ी बात है, जब वो जान रहे हैं, उन्होंने सुखदेव की कथा भी सुनाई, लेकिन कह रहे हैं कि नहीं, इनके जो गुरु वशिष्ठ हैं, ये वशिष्ठ ही वो युक्ति प्रतिपादित करेंगे जिससे राम के चित्त को विश्राम मिलेगा। अच्छा, एक बात और भी है कि गुरु जितना मूल्यवान है, उससे अधिक जो है महत्वपूर्ण है शिष्य की श्रद्धा। क्योंकि जो वशिष्ठ के प्रति राम की श्रद्धा है, क्योंकि वशिष्ठ उनके कुल गुरु हैं, उनके परदादा के गुरु रहे हैं, तो ऐसे में जो आस्था, जो श्रद्धा राम के अंदर वशिष्ठ के प्रति है, वो शायद विश्वामित्र के प्रति ना हो।
0: अच्छा, यही सवाल मैं करने जा रही थी कि जो भगवान श्री राम के चित्त की अवस्था है, विश्वामित्र उसको समझ रहे हैं
1: जी,
0: और वो ज्ञान भी उनके पास है, विश्वामित्र के पास भी है, लेकिन फिर वो वशिष्ठ जी से क्यों कहते हैं कि वो उपदेश करें?
1: वो कहते हैं कि क्योंकि ये इनके समस्त रघुवंशियों के ही नहीं, समूचे इक्ष्वाकु वंशियों के गुरु हैं, सदा से ये शिक्षक और नियंता हैं और कुल गुरु हैं। माने विश्वामित्र को, जैसे उस समय के ब्रह्मर्षि हैं वो, यानी उस समय के सबसे प्रतिष्ठित ऋषि हैं, यहाँ तक कि विश्वामित्र जी को भी उन्होंने राजर्षि से ब्रह्मर्षि का दर्जा वशिष्ठ जी ने ही दिया है।
0: अच्छा,
1: वो उतने पात्र व्यक्ति हैं।
0: जी, जी।
1: तो इसलिए कहा कि ये इनके जब मुख से ये बात आएगी तो ये राम के लिए युक्त पूर्वक होगी। तो वशिष्ठ जी से उन्होंने अनुरोध किया कि अब जो है राम को आप वो योग, जिस योग के प्राप्त होने के बाद बुद्धि से वैषम्य मिट जाता है, जिसको भगवान कृष्ण समत्वम योग उच्चते कहते हैं, बुद्धि समत्व में स्थित हो जाती है, ऐसी स्थिति में राम अब आ चुके हैं और आप इनको उपदेश करें ताकि वहां ये ठहर सकें, जैसे सुखदेव जी जाकर के जनक जी के यहाँ ठहर गए, ऐसे ही वो वशिष्ठ जी से आग्रह करते हैं कि अब आप इनको उपदेश करें जिससे इनका भी चित्त सुखदेव जी की तरह ठहर जाए। और फिर जो ये तमाम चीजों में लगे हैं, जो तमाम इनके मन में प्रश्न उठ रहे हैं, इन अज्ञान जनित भ्रमों की तरफ दिमाग लगाने से शांत हो जाएं, क्योंकि इनको जो जानना है वो जान चुके हैं। अब जिसको भी जानने की ये बात करेंगे वो उचित नहीं है, क्योंकि वो भ्रम होगा या वो भटकाव होगा।
0: जी, जी, जी।
1: क्योंकि अंततः फिर वही जानेंगे जो आप जानते हैं। तो सत्य एक बार प्रकट हो जाने के बाद बार बार उसको खोजने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उस सत्य के साथ स्थित होने की, इसी को स्थित प्रज्ञ कहा गया, कि उस सत्य की स्थिति में आप उस वो प्रज्ञा को बनाए रखें।
0: तो दो महत्वपूर्ण बातें समझ में आती हैं कि एक तो वो गुरु जो ज्ञान देगा
1: जी,
0: उसका आचरण है ना, उसकी पहुंच
1: जी,
0: और दूसरी बात वो शिष्य और उसकी श्रद्धा,
1: बिल्कुल
0: ना, इससे ही ये बात बन रही है।
1: इसको और मैं कहूँ तो गुरु और शिष्य, देखें ये हमेशा भगवान ने एक गीता में बात कही है कि मैं समासों में द्वंद्व समास हूँ। जैसे किसी भी गुरु का प्राकट्य तब तक गुरु की उपाधि उसे नहीं मिलेगी जब तक उसका योग्य शिष्य ना हो। तो देखें तो शिष्य गुरु बनाता है या गुरु शिष्य बनाता है, ये दोनों एक दूसरे के अनुपूरक हैं। ठीक वैसे ही जैसे संसार के रिश्ते दो होते हैं, माता पिता, पिता पुत्र वगैरह वगैरह, जो भी जितने रिश्ते हैं उनके पीछे दोनों लगे हुए हैं। तो ऐसे में जो शिष्य की पात्रता है, तो राम जैसा पात्र शिष्य के लिए वशिष्ठ जी ने उस कुल का पौरोहित्य कर्म स्वीकार कर रखा था। ये कितनी बड़ी बात है, आप सोचिए कि जबकि वो चाहते थे कि मैं इससे मुक्त हूं, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, राम आएंगे तो इसलिए राम के लिए उनके गुरु के होने का सौभाग्य आपको मिलेगा। तो सोचिए वो गुरु का भी सौभाग्य है ऐसे योग्य शिष्य को पाना। कई बार क्या होता है कि गुरु को हम जानते भी हैं उसके शिष्य की वजह से, तो ऐसा भी देखा गया है। वो ऐसा माने तो उसमें जो आपने कहा कि गुरु शिष्य का संबंध अनुपूरक संबंध है, ये अलग अलग नहीं है, इतना आसान भी नहीं है। कहते हैं कि जिस दिन आप पात्र होते हैं गुरु स्वयं आपको धारण करता है, जैसे धर्म धारण करता है ऐसे ही गुरु भी धारण करता है। वशिष्ठ जी सदा से प्रभु हैं, कुल गुरु हैं, इसलिए वशिष्ठ जी के वचन से राम जी को जो शांति मिलेगी उसके लिए विश्वामित्र जी कहते हैं। और विश्वामित्र जी कहते हैं वशिष्ठ जी से कि महात्मन आप इनको वही ज्ञान दीजिए जिससे हमारे आपके बीच जो बैर भाव था उसमें शांति मिली थी।
0: बैर भाव था।
1: आप संक्षेप में जल्दी से। हाँ, मैं ये कहता हूँ कि जैसे एक चूंकि विश्वामित्र राजर्षि थे तो राजर्षि से ब्रह्मर्षि तक की यात्रा उनको करनी थी, और उस यात्रा में जो तमगा था कह सकते हैं या जो उपाधि थी वो वशिष्ठ जी के द्वारा दी जानी थी। और चूंकि राजर्षि थे तो राजा जो है अपने पुरुषार्थ से चीजों को अर्जित करना चाहता है, तो वो ब्रह्म ऋषि होना भी अपने पुरुषार्थ से प्राप्त करना चाहते थे, और पुरुषार्थ में कहीं ना कहीं अहंकार मिटता नहीं है, तो वो अहंकार के साथ खड़े रहे। और कहा तो ये तक जाता है पुराणों में कि विश्वामित्र जी ने क्रोध में आकर के वशिष्ठ जी के 100 पुत्रों की हत्या कर दी। ये मुझे राजर्षि से ब्रह्मर्षि होने में बाधा है, क्योंकि ये ब्राह्मण अपने अहंकार में डूबा हुआ है और मुझे ब्रह्मर्षि की उपाधि नहीं दे रहा है। तो एक दिन क्या होता है कि वो विश्वामित्र जी वशिष्ठ को ही मारने उनके आश्रम में आ जाते हैं, छुपे हुए हैं। तब तक वो ब्रह्म मुहूर्त में जब विश्वामित्र वशिष्ठ जी जागते हैं तो ऐसे में हवाओं का जो स्पर्श है उनकी पत्नी को बड़ा अलग लगता है। कहती हैं वो कि आज क्या है कि आज कुछ ये हवाएं या जो यहाँ का सौंदर्य है बड़ा बदला सा लगता है। तो वो कहते हैं वशिष्ठ जी ये सब विश्वामित्र के तप का प्रभाव है। अच्छा। तो जब विश्वामित्र की प्रशंसा उन्होंने की विश्वामित्र की अनुपस्थिति में तो विश्वामित्र को रोना आ गया। कहते हैं कि मैं इनसे इतना द्वेष करता हूं और जबकि ये तो मेरे प्रशंसक हैं।
0: जी, जी, जी।
1: तो वो आते हैं और आकर के उनके चरणों में गिर पड़ते हैं और क्षमा मांगते हैं कि ये मुझसे क्या हो गया। तो जब गिरते हैं और अहंकार शून्य होते हैं तो फिर वहां पर वशिष्ठ जी उनको उठाते हैं, कहते हैं उठो ब्रह्मर्षि उठो। तो ब्रह्मर्षि का मतलब होता है कि जहां पर उसी परम तत्व को सब में देखना।
0: जी, जी, जी।
1: तो ऐसे में फिर कोई दूसरा अहंकार के खड़ा होने की वजह ही नहीं बनेगा ना। जैसे आप जब सर्वव्यापी ईश्वर को आप जान गए और उसी सर्वव्यापी ईश्वर में ये पूरे जगत की क्रिया को होते हुए आप देख रहे हैं, तो फिर ऐसे में किस क्रिया के बदले आप अपने मैं को खड़ा कर पाएंगे। तो आदमी अहंकार शून्य हो जाएगा। अहंकार शून्य होना यानी निर्वैर भाव, यही बैर अहंकार से खड़ा होता है। तो कहते हैं कि हमारे बैर की शांति यानी जब मैं अहंकार शून्य हुआ तो हमारा बैर शांत हो गया। तो ऐसे में राम जी के अंदर जो अभी ये बात आ रही है कि संसार कैसे बना, संसार में क्या है, तो इन्होंने जो जानने योग्य है वो जान लिया है। अब इनको उस परम तत्व के साथ आप उपदेश करें ताकि ये वहीं प्रकाशित हो सके। तत्वज्ञ तो हैं ही ये, तत्व दर्शन इन्हें हो चुका है और उपदेश के लिए वो उनसे प्रार्थना करते हैं।
0: तो शशिकांत जी आज बहुत ही सुंदर चर्चा रही योग संवाद कार्यक्रम में, आज आप हमारे बीच उपस्थित हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक आभार।
1: नमस्कार।
0: तो श्रोताओं योग संवाद कार्यक्रम में हमने चर्चा की श्री राम को उपदेश हेतु विश्वामित्र जी का जो अनुरोध था इस विषय पर। उम्मीद है आज का ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। चलते चलते आपको हम बता दें कि इस कार्यक्रम में विशेषज्ञ के तौर पर हमारे बीच उपस्थित होते हैं योग अध्यात्म और जीवन विज्ञान विशेषज्ञ डॉक्टर शशिकांत मणि त्रिपाठी, मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा का, परिकल्पना अदिति गौड़ की, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी का, समन्वय सहयोग सतीश बाथम का, और आपसे बातचीत कर रही थी मैं सुनीता सिंह। अब इस कार्यक्रम से अनुमति दें। नमस्कार, आप सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: नमस्कार, मैं हूं अभिजीत दा, अभिजीत भट्टाचार्य, और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर। देश को आजादी दिलाने वाले हमारे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को मेरा शत शत नमन है, जिन्होंने भारत माता को अंग्रेजों के चंगुल से आजाद कराया। सुनते रहिए 90.8 MHz पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
2: नमस्कार, 90.8 MHz पर ये रेडियो आजाद हिंद है। अब वक्त विशेष कार्यक्रम का। आज के इस खास कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं शहीद भगत सिंह नाटक के संपादित अंश।

0: जिसका मंचन हुआ 23 मार्च यानी शहीद दिवस के मौके पर। इस नाटक का निर्देशन किया सुंदरलाल मालवीय ने। यह प्रस्तुति रही माच शैली में। इस कार्यक्रम का पहला भाग है।
1: तो देवियों और सज्जनों, शहीद भगत सिंह के बलिदान को हम लोक स्वर में कहने जा रहे हैं। पंजाब की मिट्टी के लाल को मालवा की मिट्टी की ओर से एक भावांजलि है ये। आप जानते ही हैं कि माच मालवा की लोक संस्कृति का परिचायक है, जिसका इतिहास लगभग 300 साल पुराना है। हम आपको बता दें कि माच में गायन और अभिनय साथ साथ होता है, कथानक के संवाद गायन के साथ आगे बढ़ते हैं। परंपरागत रूप से माच में स्त्री पात्र को भी पुरुष ही निभाया करते थे, लेकिन अब मुख्य स्त्री पात्र को स्त्रियां भी निभाती हैं। हारमोनियम, ढोल, नगाड़ा, सारंगी और बांसुरी के साथ कई लयकारियों और अलग अलग तालों में माच का खेल आकार लेता है। देवी और सज्जनों, माच का एक रोचक पूर्व रंग होता है, जिसमें जर्जर की स्थापना, जय जयकार, पात्रों की सलामी यानी परिचय और लोक देवता भैरवनाथ की वंदना का क्रम होता है, और फिर माच की गजल गाई जाती है। इसके बाद बेढप आता है, परिचय देता है, भिष्टी को बुलाता है, छिड़काव करवाता है, फिर भर्रासन को जाजम बिछाने के लिए बुलाता है, यूं ठाट बाट जमाता है और कहानी आगे बढ़ती है। तो इस तरह माच मालवा की एक समृद्ध लोक नाट्य परंपरा है, जिसके साक्षी आप बनेंगे मालवा की माटी की सुगंध के साथ। तो लीजिए, प्रस्तुत है माच शैली में नाटक शहीद भगत सिंह।

भिष्ट जी के बोलो

0: साहब बोलो क्यों आवाज नहीं गया था?
1: अरे सो है क्या, यहाँ पे अमर शहीद सरदार भगत सिंह जी की सवारी आने वाली है।
0: भगत सिंह जी की सवारी आ रही
1: है? तुम्हारा भाग खुली क्या भाग?
0: अरे वाह,
1: तुम्हारा कई काम मिले मालूम? अरे यहाँ पे तरी में छिटकाव करना है।
0: ऐसो
1: करो।

जल्दी भूली गया। तो जा सकली बच्चा घर में से कर लो। अरे बाहर आ।

0: सबकी बुलाई लाई। बताओ कई काम पड़ी जो हम सबकी बुलाई।
1: इसमें भाभी साहब क्या यहाँ सरदार भगत सिंह जी की सवारी आने वाली?
0: अरे वाह।
1: हाँ मैं आपके यहाँ पे जाजम बिछा।
0: लो अभी बिछाई ना।
1: हाँ बिछाओ बिछाओ।

ಅನ್ನೋ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ.

वाह, मैं सरसठ माता को पूजन करूँ, हाँ मैं आत्मा से परमात्मा तक की बात करूँ,

0: निर्गुण को प्रकाश फैले है सात रंग को, वैसो प्रकाश आपके की जाजम में है, वो आपको काम हुई हो, अबे आप जय सको।
1: अरे हमारा काम हुई।

0: सगलो गांव हो गया। अब तो बस एक इंतजार है कि सरदार भगत सिंह जी की सवारी आई जाए। वाह वाह वाह बस। अरे अरे लो भगत सिंह जी की सवारी आई आएगी तो बोलो इनकलाब
1: जिंदाबाद।

0: जिंदाबाद जिंदाबाद बेटा इनकलाब जिंदाबाद। कई बात है, तू भी क्रांतिकारी हुई क्यों?
1: अरे क्या, अरे क्रांतिकारी हुई जो इतनी मारी हैसियत का,
0: अरे
1: मैं तो बस आपका साथे रह रही के नारो लगानो सीखी जाऊँ, योज बहुत है।
0: हमारा साथे अच्छा अच्छा लोग नारो लगानो सीखी जाए।
1: अब आप आइया हो तो मैं यूँ कहूँ कि ये माँ देखवा वाला भला भला मनक है, तो इनको थोड़ा अपना परिचय दे दो।
0: अरे तो बेटा ये सब हमारे पहचाने नहीं कहीं।
1: अरे आपके तो देश को बच्चों बच्चों जाने हैं, पर कही है कि सभा में आए तो एक कायदो है।
0: सही बात। हाँ।
1: तो आप थोड़ा सा परिचय दे दोगे तो अच्छा रहेगा।
0: ठीक है, तो सुनो हमारी बात।

0: दीवाना हूँ, न आपको नाम भगत सिंह है।
1: फिर
0: अब मारे यो बताओ कि आपका माता पिता कौन है, न आपको जन्म कहाँ हो।
1: यो भी सुनो,
0: सुना

0: 1907 में वो ना आपके पिताजी का नाम किशन सिंह जी
1: हाँ।
0: ना माताजी का नाम विद्यापति
1: एकदम सही
0: हाँ। अब हमारे आप यो बताओ कि आपका गुरु जी कौन है?
1: पहला हमारा भाई बहन का बारे में।
0: अरे हाँ हाँ पूरे परिवार को तो मालूम पड़ना चाहिए। तो आप हमें ये बताओ कि आपका भाई बहन कितना है ना आपका काका जी कहीं करें
1: यो भी सुनो।

0: कि आपके दो भाई नेक बेर जो आपको कहो जो क्रांतिकारी
1: क्रांतिकारी
0: अब तो बताइए तो मारे कि आपको गुरुजी कौन है
1: उनको भी नाम सुनो
0: ना।

आज के इस खास कार्यक्रम में आप सुन रहे थे नाटक शहीद भगत सिंह के संपादित अंश। ये इस कार्यक्रम का पहला भाग था। अगले कार्यक्रम तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: आपने ट्यून किया 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। वक्त हो चला है रेडियो रिपोर्ट का।

रेडियो रिपोर्ट में हम आपको लिए चल रहे हैं रविंद्र भवन में, जहां रविवार की शाम याद किया गया मशहूर पार्श्व गायक, अभिनेता और हर फनमौला कलाकार किशोर कुमार को।

आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया FM 90.8 MHz, रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। अब वक्त है कार्यक्रम परिक्रमा का, ये सुनते हैं परिक्रमा। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर सोमवार को रविंद्र भवन में यमन अकादमी ऑफ फाइन आर्ट्स के नृत्य लता नृत्य महोत्सव में भरतनाट्यम के माध्यम से गुरु शिष्य परंपरा की सशक्त झलक देखने को मिली। डॉक्टर लता सिंह मुंशी, उनकी शिष्याओं और उनकी भी शिष्याओं और नई पीढ़ी की नन्ही नृत्यांगनाओं ने एक ही मंच पर प्रस्तुति देकर इस परंपरा को जीवंत किया। 4 से 28 वर्ष की 62 प्रतिभागियों ने नृत्य कर हर मुद्रा, भाव और ताल के जरिए अपनी साधना गुरुओं के चरणों में समर्पित की। खास बात रही कि मंच पर गुरु से मिली नृत्य साधना की विरासत भारत नाट्यम की समृद्ध परंपरा को साकार किया। 4 पीढ़ियों ने एक साथ। कार्यक्रम की शुरुआत नृत्य मल्हार से हुई। भरतनाट्यम की इस प्रस्तुति में बारिश और सावन के भाव नृत्य के जरिए संस्कार साकार किए गए। भाव भंगिमाओं और लयबद्ध मुद्राओं ने प्रस्तुति को आकर्षक बनाया। इसके बाद पुष्पांजलि में नृत्यांगनाओं ने मंच, देवता और गुरु को नमन कर अपनी कला अर्पित की। अलारिप्पू में शुद्ध नृत्य की शुरुआत तालबद्ध पदचाप और सधी मुद्राओं के साथ हुई। पंचतत्व में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश को नृत्य की भाषा में अभिव्यक्त किया गया। 5 तत्वों की प्रस्तुति ने प्रकृति और जीवन के गहरे संबंध को भी दर्शाया। वर्णम में नृत्य और अभिनय का सुंदर मेल देखने को मिला। कार्यक्रम का समापन मंगलम से हुआ, जिसमें डॉक्टर लता मुंशी ने भी नृत्य प्रस्तुत किया।

ये श्याम मस्तानी। म्यूजिकल इवनिंग में म्यूजिक कंपोजर और सिंगर अनु मलिक किशोर कुमार के गानों के साथ अपने गानों की प्रस्तुति देंगे। प्रोग्राम में इंडियन आइडल फेम अनिल श्रीवास्तव भी गीतों की प्रस्तुति देंगे। ये कार्यक्रम रविंद्र भवन में आज शाम 6:30 बजे से शुरू होगा। कार्यक्रम में एंट्री फ्री है। और खबर आपके ही रेडियो यानी FM 90.8 MHz को लेकर। मध्य प्रदेश शासन के संस्कृति विभाग अंतर्गत स्वराज संस्थान संचालनालय द्वारा रेडियो कार्यक्रम योग संवाद का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आम जनमानस को योग प्राणायाम और स्वस्थ जीवन शैली के प्रति जागरूक करना है। रेडियो कार्यक्रम योग संवाद का प्रसारण रेडियो आजाद हिंद 90.8 MHz पर किया जाएगा। इस सुबह 9 बजे और शाम 7 बजे सुना जा सकेगा। कार्यक्रम के दौरान योग विशेषज्ञ द्वारा दैनिक जीवन में योग के महत्व, तनाव प्रबंधन और मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य सुधारने के तरीके साझा किए जाएंगे।

महान गायक किशोर कुमार की जयंती पर माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय MCU में ये शाम मस्तानी इंटर कॉलेज म्यूजिकल कॉम्पिटिशन आयोजित हुआ। संस्कृति विभाग और विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में गणेश शंकर विद्यार्थी सभागार में हुए कार्यक्रम में भोपाल स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज BSS की बैंड ने किशोर कुमार के सदाबहार गीतों की शानदार प्रस्तुतियाँ दी। रूप तेरा मस्ताना, पल पल दिल के पास और खई के पान बनारस वाला सहित कई गीतों पर श्रोता झूम उठे। कुलगुरु ने कलाकारों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। मशहूर पार्श्व गायिका कविता कृष्णमूर्ति स्वतंत्रता दिवस पर भोपाल में अपनी सुरीली आवाज का जादू बिखेरेंगी। संस्कृति विभाग के स्वराज संस्थान संचालनालय की ओर से आयोजित आजादी का महापर्व के तहत 15 अगस्त को शाम 6:30 पर रविन्द्र भवन परिसर स्थित हंसध्वनि सभागार में वे अपने साथी कलाकारों के साथ देशभक्ति और लोकप्रिय फिल्मी गीतों की प्रस्तुति देंगी। वहीं स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर फिल्म कर्मा का अमर देशभक्ति गीत दिल दिया है जहां भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए कार्यक्रम का विशेष आकर्षण रहेगा। हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी। जी, हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी। आओ मिलकर आज विचारों से ये समस्याएं सभी और कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, जैसी कालजयी पंक्तियों के वाचन के साथ राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की 140वीं जयंती मनाई गई। इस अवसर पर दुष्यंत कुमार पांडुलिपि संग्रहालय में वर्तमान समय में राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त के साहित्य की प्रासंगिकता विषय पर विमर्श आयोजित हुआ।

वहीं कलांधी का वर्कशॉप का सोमवार को समापन हो गया। यहाँ कथक की बारीकियों की सीख दी गई। इसमें 50 से अधिक स्टूडेंट ने हिस्सा लिया था। इसकी शुरुआत 1 अगस्त से हुई थी। यहाँ स्टूडेंट ने जाना नृत्य के साथ चेहरे के एक्सप्रेशन किस तरह प्रभावशाली बनाते हैं। कलांधिका नृत्य नाट्य संस्था समिति ने के इस आयोजन में कला प्रेमियों ने अभिनय की गहराइयों को भी समझा। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन भोपाल के संयुक्त तत्वावधान में 6 से 9 अगस्त तक बिछौना प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। एनआईडी परिसर में आयोजित इस 4 दिवसीय प्रदर्शनी में भारत के विभिन्न अंचलों की पारंपरिक हस्तनिर्मित कालीन दरी, गलीचे और चटाइयों को प्रदर्शित किया जाएगा। इसका उद्देश्य देश की समृद्ध बुनाई परंपरा, लोक व जनजाति शिल्प कौशल का संरक्षण करना है। यहाँ कला प्रेमियों को भारतीय शिल्पकारों की उत्कृष्ट कारीगरी व निर्माण प्रक्रिया को करीब से समझने का मौका मिलेगा। तो ये थी आज की परिक्रमा। सुनते रहिए FM 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8,
1: देश का चैनल देश के लिए। हम हैं
0: रूहानी सिस्टर्स। हम सलाम करते हैं उन देश के जवानों को जो सरहदों पर दिन रात तैनात होकर हमारी और हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, और हम उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को नमन करना चाहते हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व न्योछावर कर हमें ये आज़ादी दिलाई।
1: रेडियो आज़ाद हिंद देश का पहला और एकमात्र ऐसा रेडियो चैनल है जो वीर जवानों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की अमर गाथाओं को समर्पित है।
0: तो सुनते रहिए रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। हम हैं रूहानी सिस्टर्स। नमस्कार।

0: याद करो कुर्बानी।
1: ,90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर इस वक्त आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। मैं हूं आपकी दोस्त सुनीता सिंह, लेकर उपस्थित हूं कार्यक्रम याद करो कुर्बानी। श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में हम यादें साझा करेंगे रामकृष्ण खत्री जी की। लखनऊ जेल की एक बैरक में काकोरी ट्रेन डकैती के आरोप में गिरफ्तार क्रांतिकारियों को बंद कर दिया गया था। एक दिन तय हुआ कि क्रांतिकारी लोग जेल की बैरक में अपनी अदालत अलग से स्थापित करें, उनकी सुनवाई हो और उस मुकदमे का फैसला सुनाया जाए। 2-3 दिनों तक उन्होंने न्याय का नाटक बड़ी ही सफलतापूर्वक खेला। बाकायदा अभियुक्त लोग कटघरे में खड़े होते थे, सरकारी वकील उन पर आरोप लगाता और सफाई का वकील उन तर्कों को काटता था। न्यायाधीश के स्थान पर बैठाया जाता था रामकृष्ण खत्री को। जिस दिन क्रांतिकारी अदालत ने अपना निर्णय सुनाया, उस दिन सभी के दिलों में ये जानने की उत्सुकता थी कि न्यायाधीश महोदय किसको क्या दंड सुनाते हैं। जज के रूप में रामकृष्ण खत्री ने अपना आसन ग्रहण किया। उन्होंने कागजों को उल्टा पलटा और फिर अपना निर्णय सुनाना प्रारंभ किया। श्रोताओं, हमने चर्चा की कि लखनऊ जेल की एक बैरक में काकोरी ट्रेन डकैती के आरोप में गिरफ्तार क्रांतिकारियों ने अदालत का एक नाटक खेला और अलग अलग क्रांतिकारियों को सजा सुनाने की बात सोची, और जज के रूप में रामकृष्ण खत्री ने अपना आसन ग्रहण किया और निर्णय सुनाना प्रारंभ किया। पहले उन्होंने उन लोगों के नाम पढ़े जिन्हें कम सजाएं दी गई थीं, यानी उन्होंने कुछ को 5 वर्ष, कुछ को 10 वर्ष और कुछ को आजन्म कारावास की सजाएं सुनाई। जब उन्होंने अभियुक्त ठाकुर रोशन सिंह को 5 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई, तो रोशन सिंह अपनी सजा सुनकर चीख पड़े। उन्होंने कहा कि इतनी कम सजा मेरा अपमान है, इतनी कम सजा मेरी ठकुरास के लिए कलंक है। जज महोदय ने धरती पर अपना मुक्का पटकते हुए कहा, ऑर्डर ऑर्डर। ये ऑर्डर ऑर्डर सुनकर और न्यायाधीश महोदय को धरती पर मुक्का पटकते हुए देखकर ठाकुर साहब ताव खा गए। वे भी अपना मुक्का तानकर न्यायाधीश की ओर लपके। न्यायाधीश महोदय ने सोचा कि ठाकुर का क्या ठिकाना, कहीं सचमुच न मार बैठे। वे अपने कागज पत्तर उठाकर भाग खड़े हुए। अन्य लोगों ने ठाकुर साहब को रोका और फिर उन्हें शांत किया। हालांकि ये न्याय का नाटक मात्र था, पर उन्हें सचमुच ही इस पर दुख हुआ था और क्रोध आ गया था। क्रोध शांत होने पर अगले ही क्षण उन्होंने रामकृष्ण खत्री जी के गले में हाथ डाल दिया और जो बातें कही वो हम आपको बताएंगे इस देशभक्ति रचना के बाद। इंतजार कीजिए बस कुछ पलों का।

श्रोताओं, 70 साल आजादी याद करो कुर्बानी, इस कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं रामकृष्ण खत्री जी की। जैसा कि हमने आपको बताया कि लखनऊ जेल की एक बैरक में काकोरी ट्रेन डकैती के आरोप में गिरफ्तार क्रांतिकारियों ने न्याय का मुकदमा किया और अलग अलग क्रांतिकारियों को छोटी बड़ी अपने अंदाजे से सजा सुनाई। और जब ठाकुर रोशन सिंह को सजा सुनाई गई तो वो नाराज हो गए कि उनकी सजा इतनी कम क्यों है। लेकिन जब शांत हुए तो अगले ही क्षण उन्होंने रामकृष्ण खत्री के गले में हाथ डाला और कहने लगे, तेरा क्या अनुमान है? क्या सचमुच मुझे 5 वर्ष के कारावास की सजा होगी? इतनी कम? हाँ ठाकुर साहब, नहीं, मेरा तो यही अनुमान है। और तेरे इस अनुमान का कारण क्या है? मेरे इस अनुमान का कारण ये है कि एक तो आप ट्रेन लूटने वालों में सम्मिलित नहीं थे और फिर आपके विरुद्ध कोई बहुत गंभीर आरोप भी तो नहीं है। इस पर ठाकुर साहब ने कहा, पर यार सचमुच ही अगर ऐसा हुआ तो बहुत बुरा होगा। मुझसे कम उम्र के लड़कों की लंबी सजाएं हों, उम्र कैद हो, फांसियां लगें और मुझे 5 साल की सजा, ये सचमुच मेरा अपमान होगा। ठाकुर साहब, सजाएं उम्र के आधार पर नहीं, जुर्म के आधार पर दी जाती हैं। रामकृष्ण खत्री जी ने उन्हें समझाने का प्रयास किया। चलो खैर, देखा जाएगा, पर तू आज मेरे हाथ आया नहीं, ये अच्छा ही हुआ। हाँ सचमुच अच्छा ही हुआ, मुझे तो आप बहुत ही गुस्से में नजर आ रहे थे और अगर सचमुच मैं पकड़ जाता तो कुछ तो मुश्किल में पड़ता। और दोनों हंस पड़े। ऐसे दीवाने थे वो क्रांतिकारी जो कम सजा की बात सोच कर भी दुखी हो जाते थे। दोस्तों, हमारी चर्चा आगे भी जारी रहेगी, लेकिन उसके पहले एक छोटा सा अंतराल, आइए सुनते हैं ये देशगान।

इस कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं रामकृष्ण खत्री जी की। हमने बात की कि न्यायालय का एक नाटक खेला गया और वहाँ क्रांतिकारियों ने एक दूसरे को सजा सुनाई, एक अंदाजा लगाया। क्रांतिकारियों के बीच इस तरह के मनोविनोद अक्सर हुआ करते थे। रामकृष्ण खत्री भी काकोरी केस के एक अभियुक्त थे। यदि भी वे भी काकोरी ट्रेन डकैती में सम्मिलित नहीं थे, पर वे अपने दल के साथ अन्य अभियानों में सम्मिलित हो चुके थे। वे क्रांतिकारी दल में किस प्रकार सम्मिलित हुए, ये कहानी भी बहुत रोचक है। रामकृष्ण खत्री महाराष्ट्र के चांदा जिले के अंतर्गत चिखली गांव के रहने वाले थे। अपने विद्यार्थी काल में वे उग्र विचारों के थे और डॉक्टर मुंजे और बाल गंगाधर तिलक से बहुत प्रभावित थे। परिस्थितियों के कारण उन्होंने अपनी युवावस्था में ही संन्यास ले लिया और उदासी साधु संप्रदाय के सचिव बन गए। अब वे स्वामी गोविंद प्रकाश के नाम से साधना कर रहे थे। संयोग ऐसा हुआ कि एक बार स्वामी गोविंद प्रकाश की भेंट चंद्रशेखर आजाद से हो गई। चंद्रशेखर आजाद भी उन दिनों एक साधु के वेश में रह रहे थे। एक आश्रम का महंत मरने वाला था। मरने के पहले वो किसी ब्राह्मण वंश के बालक को गोद ले लेना चाहता था, ताकि उसके बाद आश्रम और उसकी संपत्ति का वो उत्तराधिकारी बन सके। क्रांतिकारियों ने सोचा कि किसी क्रांतिकारी को उस साधु का शिष्य बना दिया जाए, जिससे साधु की मृत्यु के उपरांत उसकी जायदाद क्रांतिकारियों के हाथ लग जाए और क्रांति की गतिविधियां चलाने में सुविधा हो। सबने निश्चय करके चंद्रशेखर आजाद को उसका शिष्य बना दिया। आजाद ने सोचा कि गुरुजी तो मरने ही वाले हैं, इसलिए उनकी अच्छी सेवा कर ली जाए। आजाद की सेवा से वो साधु स्वस्थ होने लगा। आगे क्या हुआ, ये हम आपको बताएंगे इस देशभक्ति गीत के बाद।

श्रोताओं, स्वामी गोविंद प्रकाश से आजाद का पूर्व परिचय था। दोनों एक दिन साधु वेश में मिले। उन्होंने एक दूसरे को अपने अनुभव सुनाए। आजाद ने बताया कि हमारे महंत जी तो मरने के बजाय अब और तगड़े हो गए हैं। जिस लालच में मैं उनका शिष्य बना था, वो उद्देश्य तो अब दूर होता जा रहा है, इसलिए मैं उसे छोड़कर भागने वाला हूँ। स्वामी गोविंद प्रकाश ने बताया कि अपनी स्थिति से संतुष्ट तो मैं भी नहीं हूँ, क्योंकि मैंने बहुत गहराई से उतरकर देख लिया है कि केवल कुछ पहुंचे हुए साधुओं को छोड़कर शेष स्वार्थी और चरित्रहीन ही हैं, तथा उनसे मेरी निभती नहीं है। आजाद ने गोविंद प्रकाश जी को फुसलाया, कहां इस उम्र में सन्यासी बनने चले हो? सारी जिंदगी ऐसे लोगों के बीच कैसे निकालोगे? अच्छा है कि इन लोगों द्वारा पतित किए जाने के पहले क्रांतिकारी दल में आ जाओ और बंदिनी भारत माता की कुछ सेवा कर लो। बात स्वामी गोविंद प्रकाश की समझ में आ गई। वे आजाद के कहने से क्रांतिकारी दल में सम्मिलित होने के लिए राजी हो गए। आजाद तो पहले से ही क्रांतिकारी थे। दोनों ने अपने अपने रंगे हुए कपड़े उतार फेंके और सुमरनी के स्थान पर रिवॉल्वर अपना लिया। अब वे स्वामी गोविंद प्रकाश नहीं, क्रांतिकारी दल के रामकृष्ण खत्री थे। श्रोताओं, याद करो कुर्बानी इस कार्यक्रम में आज हम आपसे यादें साझा कर रहे हैं रामकृष्ण खत्री जी की। हमारी चर्चा आगे भी जारी रहेगी, लेकिन उसके पहले आइए सुनते हैं राष्ट्र वंदना के ये स्वर।

0: रामकृष्ण खत्री के पास यौवन था, बलिष्ठ देह थी, सूझबूझ थी और दल के प्रति निष्ठा थी। वे क्रांतिकारी दल की सभी योजनाओं और अभियानों में सम्मिलित होने लगे। उन्हीं दिनों 9 अगस्त 1925 को रामप्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने सहारनपुर लखनऊ डाउन पैसेंजर गाड़ी रोककर उसमें रखा अंग्रेजी खजाना लूट लिया। इस ट्रेन डकैती के फलस्वरूप जो व्यापक धर पकड़ हुई, उसके अंतर्गत बहुत से क्रांतिकारी गिरफ्तार कर लिए गए। बहुत से ऐसे क्रांतिकारी भी गिरफ्तार कर लिए गए जो ट्रेन डकैती में सम्मिलित नहीं थे। रामकृष्ण खत्री भी इसी प्रकार गिरफ्तार कर लिए गए थे। उन्हें सभी क्रांतिकारियों के साथ लखनऊ जेल भेज दिया गया। जेल अधिकारियों के साथ प्रारंभिक झगड़ों और अनशनों के परिणाम स्वरूप क्रांतिकारियों को जेल में कुछ सुविधाएं मिली। वे एक साथ मिल सकते थे, गपशप कर सकते थे और खेल कूद में भाग भी ले सकते थे। और इसी मनोविनोद के तहत उन्होंने मुकदमे का नाटक किया था और रामकृष्ण खत्री जी ने जज के रूप में कुछ फैसले सुनाए। विचित्र बात ये है कि रामकृष्ण खत्री द्वारा सुनाया गया फैसला हैमिल्टन द्वारा सुनाए गए फैसले से बहुत अधिक मिलता हुआ था। जो दंड उन्होंने स्वयं के लिए सुनाया था वो बिल्कुल ठीक निकला। 6 अप्रैल सन 1927 को लखनऊ की अदालत ने काकोरी केस का निर्णय दिया। इस निर्णय के अनुसार रामकृष्ण खत्री को 10 वर्ष के कठोर कारावास का दंड मिला। क्रांतिकारियों का न्यायाधीश सीखचों के अंदर बंद कर दिया गया। नमन ऐसी महान क्रांतिकारी को। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम याद करो कुर्बानी। इसमें आज हमने चर्चा की रामकृष्ण खत्री जी की। उम्मीद है आज का ये कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। किसी नए क्रांतिकारी की जीवनी के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दें अपनी रेडियो सखी सुनीता सिंह को। नमस्कार। आप बने रहिए रेडियो आजाद हिंद के साथ 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। सुनते रहिए देश का चैनल, देश के लिए।
1: याद करो कुर्बानी।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया FM 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। कार्यक्रम है स्वास्थ्य चर्चा, और इस कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे, वो विषय है नशीली दवाओं का दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय मुहिम। और इस विषय आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया FM 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। कार्यक्रम है स्वास्थ्य चर्चा, और इस कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे, वो विषय है नशीली दवाओं का दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय मुहिम। और इस विषय पर बात करने के लिए आज स्टूडियो में हमारे साथ हमारी मेहमान मौजूद हैं, निहारिका जी, जो NIWCYD बचपन के साथ कार्य कर रही हैं इस फील्ड में। उनसे जानेंगे कि वो इस फील्ड में कैसे आई। निहारिका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में।
2: धन्यवाद, सभी को नमस्कार।
1: तो निहारिका जी, हम बात कर रहे हैं नशे का जो दुरुपयोग है देश में और इसकी रोकथाम है, तस्करी, इस फील्ड पर आप बहुत समय से काम कर रही हैं, तो आपकी यात्रा कब प्रारंभ हुई, आप इससे कैसे जुड़ी?
2: लगभग 12 वर्षों से मैं समाज सेवी के रूप में भोपाल शहर में काम कर रही हूँ, और भोपाल शहर के ऐसे समुदाय में काम कर रही हूँ जिन्हें हम आमतौर पर बस्ती क्षेत्र या झुग्गी झोपड़ी के नाम से जाना जाता है। हालांकि शब्द का उपयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन आम भाषा में उनका उपयोग किया जाता है। तो खास तौर पर वहाँ के समुदाय में रहने वाले जो बच्चे हैं, युवा हैं और परिवार है, उनके साथ मैं लगातार काम कर रही हूँ, जहाँ पर मैंने देखा कई बार बहुत सारे जो बच्चे और महिलाएं स्कूल से बाहर होते हैं या डोमेस्टिक वायलेंस का जब वो सामना करते हैं, सबसे बड़ा जो कारण नजर आता है वो है नशा। नशे के कारण बहुत सारे जो बच्चे हैं वो स्कूल से बाहर हैं, या महिलाओं के साथ में जो हिंसा है इस वजह से होती है, और उसका कारण ये भी है क्योंकि वो आसानी से उस जगह पे उपलब्ध है। तो ये एक बड़ा कारण जो है मुझे समझ में आया। तो फिर हमने इस पे काम करने की शुरुआत की कि समस्याओं के पीछे की जो वजह है नशा, उस पे काम करना बहुत ज़रूरी है, उस पे लोगों को जागरूक करना बहुत ज़रूरी है, और लोगों को समझाना ज़रूरी है कि नशा हमारे जीवन में किस तरीके से परेशानियाँ लेकर आता है।
1: आप इसमें काम कर रही, नशा इतने आसानी से बच्चों को या जो नशा करने वाले उनको बड़े आसानी से मिल रहा है बाजार
2: में? जी हाँ, बिल्कुल।
1: इसके पीछे आप क्या मानती, किसकी खामी है और इतने आसानी से कैसे उपलब्ध है, जबकि सरकार इस पे रोक लगाती खासी?
2: सरकार तो बहुत काम कर रही है, लेकिन जो जमीनी स्तर पे जो काम होना चाहिए, खासतौर पे मॉनिटरिंग का जो काम होना चाहिए, मुझे लगता है वो व्यवस्था में अभी कमी है, हम उसे मजबूत करने की आवश्यकता है। क्योंकि आसानी से अवैध तरीके से जिन जगहों पर बिक रहा है, और स्लम की यदि हम बात करें तो बहुत ही घनी बस्ती क्षेत्र होता है जहाँ पर थोड़ा ढूंढना भी शायद मुश्किल है, तो वहाँ पर बच्चों के लिए जो उपलब्धता है हमें उस पर मॉनिटरिंग पे बहुत काम करने की आवश्यकता है, और उन तक जो पहुँच रहा है तो कहीं ना कहीं वो चैनल भी स्ट्रांग होगा। तो यदि हम जो हमारा तंत्र है उसको मजबूत करके जमीनी स्तर पर यदि काम करने की आवश्यकता है, जो मुझे लगता है, क्योंकि वहाँ तक लोगों की पहुँच नहीं है, और बहुत ही आसानी से यदि बच्चों को मिल रहा है तो ये हमारे लिए भी कई बार सवाल खड़े करता है।
1: बिल्कुल, ये बात वाजिब। एक बात आती है कि एक तो जब आप इसमें फील्ड में काम कर रहे हैं, तो जो लोग ये नशे का व्यापार कर रहे हैं, क्या वो कोई टारगेट लेके चलते हैं कि वो किन लोगों को नशे में लिप्त करेंगे, बच्चों को ही या युवा वर्ग को या लड़कियों को, ऐसा कुछ आपने स्पेसिफिक देखा, या सभी लोग इसमें लिप्त होते हैं? मतलब मैं जानना चाह रहा हूँ कि जो लोग ये व्यापार कर रहे हैं, क्या उनका कोई टारगेटेड ग्रुप है?
2: अधिकांश यदि मैं जिन एरिया में काम करती हूँ वहाँ की बात करूँ, क्योंकि अधिकतर जो जुड़ाव होता है वो बच्चों और युवाओं के साथ में होता है, यदि मैं उनके अनुभवों की बात करूँ तो जो मुझे समझ में आया है कि बच्चे उनके लिए एक बहुत आसान टारगेट है।
1: अच्छा।
2: क्योंकि एक तो बच्चों को प्रभावित करना बहुत आसान होता है, और दूसरा क्योंकि आज जो बच्चे हैं उनकी बहुत ख्वाहिशें सपने हैं, तो कहीं उसका लालच देना और उनको अपने काबू में करना बहुत आसान है। और हम देखें कि बच्चे जो हैं इन, तो उनसे श्रम कराना बहुत आसान होता है, उसकी कीमत ज़्यादा नहीं देनी पड़ती है, और क्योंकि बच्चे का जो जुड़ाव है उनके समुदाय स्तर पर बहुत ज़्यादा होता है, एक विश्वसनीय भी होता है। तो जो मुझे समझ में है कि खासतौर युवा लड़के जो हैं इसमें बहुत शामिल हैं, और वो नशे के आदि भी हैं, तो शायद उन्हें लालच देके अपने साथ में जोड़ना और उनसे काम करवाना, ये उनके लिए बहुत आसान मुझे लगता है जो है। क्योंकि अभी कुछ युवाओं के साथ जब मेरी बातचीत हुआ, तो जब मैंने उनको जिस हालत में देखा, तो बहुत ज़्यादा नशा करते हुए, फिर वॉयलेंस करते हुए, तो थोड़ा समय लिया उनसे बात करने का। जब गहरी उनसे बातचीत हुई तो समझ में आया कि घर में क्योंकि बहुत सारी दिक्कतें परेशानी होती हैं, तो कई बार बच्चे बहुत परेशान होते हैं कि हम किससे जाके अपनी बात कहें। तो आजकल की जो युवा जनरेशन, उन्हें लगता है कि यदि हमको अपने स्ट्रेस को दूर करना है तो नशा एक सुकून देने वाली जगह है, या नशा जो है बहुत हमको आराम देगा, तो वहाँ से बच्चे शुरुआत करते हैं, जुड़ते हैं अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए, और फिर धीरे धीरे वो एक ऐसे चैनल से जुड़ते हैं, और उनका उपयोग हो रहा है ये वो समझ नहीं पाते हैं। हाल ही में एक बच्चे ने सुसाइड अटैम्प किया, वो नशा मुक्ति केंद्र में ही उसने सुसाइड अटैम्प किया क्योंकि उसको नशे की बहुत लत थी। जब आपके हाथ में नशा आता है तो आप सोचते हैं कि मैं इसे ट्राई करूं, कोशिश कर लूं, क्योंकि जिज्ञासु तो बहुत होते हैं युवा साथी। तो उसने शुरुआत जस्ट एक शौक के तौर पर टेस्ट करने के लिए किया, धीरे धीरे उसकी आदत लगी। जब उसे नहीं मिल पाया तो उसकी लत से फिर उसने सुसाइड अटैम्प किया। तो युवा जो है जिस तरीके से जुड़ रहे हैं, शौक के तौर पर जुड़ते हैं, फिर स्ट्रेस को रिलीज करना अपना, और फिर धीरे धीरे वो इस चैनल में शामिल हो जाते हैं।
1: दो तीन चीज़ें अभी आपसे जो बातचीत हुई अभी तक की उसमें समझ में आई कि युवा इससे आसानी से जुड़ रहे हैं। एक कारण उनका लालच, तो हम आपसे जानना चाहेंगे वो किस तरह का लालच ये देते हैं बच्चों को, या सबसे पहली में हमारा जानना उद्देश्य कि पहला क्या उद्देश्य होता होगा या क्या तरीका होता होगा जो लोग बच्चों को इसमें लाते हैं या नशे के लिए आगे लाते हैं, एक बात। दूसरी बात कि आपने कहा स्ट्रेस, तो ये स्ट्रेस होता है इसलिए नशे की तरफ बढ़ जाते हैं, या दो बातें कि नशे की तरफ जाते हैं इसलिए भी स्ट्रेस होता है, दोनों बातों को एक बार आप हमें बताएं।
2: तो पहली बात जो आपने कही, जो युवा जुड़ते हैं उद्देश्य क्या होता है, मुझे लगता है कि हमारे यहाँ जो व्यवस्था है, खासतौर पर हम कानून व्यवस्था की करें तो बच्चों के ऊपर कार्यवाही उस तरीके से नहीं होती है। तो शायद इसलिए वो बच्चे उनका इजी टारगेट रहता होगा। हाँ। कि बच्चों के ऊपर हम कानूनी इस तरीके से कार्यवाही नहीं कर सकते, तो बच्चों को शामिल करना एक ये उद्देश्य उनका हो सकता है। दूसरा मुझे लगता है कि अभी हम जब बात करें खासतौर पर कोविड के वास्ते, जब हम लोगों को समझ में आया कि मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है, तो यदि हम देखें कि वैसे स्पेसेस नहीं है जहाँ पे आप अपने फीलिंग्स को, इमोशंस को व्यक्त कर पाएं खुलकर। अच्छा। तो कई बार व्यक्ति जो है व्यक्त नहीं कर पाता, तो वो खुद के लिए उस कमी को दूर करने के लिए कुछ चीज़ों को खोजता है, जिसमें एक जो चीज़ समझ कि नशे के ऊपर वो ज़्यादा होता है, क्योंकि कई बार लोगों को लगता है कि नशे में हम होश में नहीं रहेंगे तो शायद हमें वो चीज़ें याद नहीं आएंगी। और कई बार जो है नशा नहीं मिलने के कारण भी व्यक्ति में स्ट्रेस होता है। तो दोनों कारण है, एक तो स्ट्रेस होने के कारण आप वहाँ जा रहे हैं, और दूसरा आपको नशा नहीं मिलने का जो स्ट्रेस है, क्योंकि आप जब एडिक्टेड हो जाते हो तो ये भी एक मानसिक स्वास्थ्य की परेशानी ही है। तो इन दो तरीकों से लोग उसमें जुड़ते हैं।
1: एक चीज़ और हम अब पे निकल के आती है कि जब आप, चूँकि आप इसमें काम कर रहे हैं, तो ये आप जब निकलते हैं ये खुद ब खुद वो इलाकों में आपको बच्चे बड़े आसानी से मिल जाते हैं। केवल बच्चे ही नहीं, मैं पूछना चाहूँगा कि बच्चे या लड़कियाँ या बड़ी उम्र के लोग या पुरुष बड़े या महिला, उम्र को अगर दरकिनार करके बात करें तो हम बात करना चाह रहे हैं उस पर कि जो भी लोग नशे में लिप्त हैं तो किस तरह से वो, आप पहले प्रथम दृष्टि आप कैसे उन्हें पहचानते हैं या आप क्या तरीके अपनाते हैं जिससे ये लोग आपकी पहचान में या आप उन तक पहुँच पाए।
2: हम लोग जब समुदाय में काम करते हैं तो वहाँ पर हम लोग लोगों के साथ रैपो बिल्डिंग करते हैं। अच्छा। लोगों से मिलना, उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या चल रहा है, तो ऐसे बातचीत के साथ में शुरुआत होती है। तो एक परिवार के साथ में संपर्क होता है, फिर हमारे वहाँ पर बस्तियों में जाके हम जनसंवादों का आयोजन करते हैं ताकि लोग हमसे जुड़ पाए और हमसे बातचीत कर पाए। तो कई बार जनसंवाद तरीका होता है जहाँ पे लोग इन मुद्दों को बताते हैं, कई बार व्यक्तिगत रूप से मिलकर भी वो हमें बताते हैं उनकी बातों के बारे में, समस्याओं के बारे में, तब वहाँ से ये चीज़ें जो है निकल के आती हैं। जैसे कई बार महिलाएं जब आती, क्योंकि मैं काउंसलिंग का भी काम करती हूँ, तो कई बार महिलाएं जब आती हैं कि हमारे घर में लड़ाई झगड़ा हुआ, तो जब उनसे वजह पूछे जाते हैं तो वो एक नशा एक कारण बताते हैं कि इस वजह से जो है मेरे साथ में ही हुआ। और कई बार ये मैंने जो देखा है कि लाइव बोलते कि नशे में मुझे मारा गया, पीटा गया। कई बार नशे में व्यक्ति समझता है कि मैं बहुत पावरफुल हो गया, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो अधिकतर वायलेंस देखने को ज्यादा मिलता है नशे की वजह से। तो इस तरीके की बातें जो है जब संवाद होता है व्यक्तिगत रूप से, जब उनसे मिलते हैं या वो हमसे संपर्क भी करते हैं, तब वो हमें ये जानकारी देते हैं।
1: पहले ये बात करें, फिर आपसे ये भी पूछेंगे कि ये जो नशा ये करते हैं इसमें खासतौर कौन सा नशा ज्यादा कर, जो सबसे ज्यादा नशा आप जो आप देखते हैं किस चीज का नशा करते हैं ज्यादातर लोग?
2: ज्यादातर जो है शराब का नशा करते हैं, सिगरेट जो है वो यूज करते हैं, गांजा जो है वो यूज करते हैं, कुछ मामलों में ड्रग्स जैसी चीजें समझ, लेकिन वो बहुत ज्यादा उस पर नहीं निकल के आया कि यही, लेकिन कुछ लोगों ने जिक्र किया कि इस तरीके के नशे पे उपलब्ध सलोचन है खासतौर पे। कुछ युवा साथी की हम बात करें तो जो विक्स है या जो मेडिसिन मेडिकल पे मिलते हैं उनका भी वो उपयोग करते हैं।
1: तो जब भी आपको कोई केस आप दिमाग में अगर आपके आए तो हम चाहेंगे कि आप उसको दिमाग में रखते हुए बिना किसी का नाम बताए हमें ये बताइएगा कि जब भी आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिले, पहली दफ़ा आपको पता चला कि ये मिस्टर एक्स हैं जो या जो भी व्यक्ति है वो नशे की आदत में है, तो सबसे पहला कदम आप क्या करते हैं?
2: एक युवा साथी हमको मिले थे जिन्हें बहुत ज़्यादा वो था, हमने पहले उनसे दोस्ती की, थोड़ा उनको जानने की कोशिश किया। तो वो हमसे मिले, हमारे साथ बैठे, हमने उनको जानने की कोशिश, तो एक दोस्ती जैसा माहौल वहाँ पे शुरू हुआ, बातचीत होनी शुरू हुई। फिर धीरे धीरे उनसे जानने की कोशिश किया कि वो उन्हें कब से इस चीज़ का आदत लगा। तो उस बच्चे ने बताया कि क्योंकि उनके परिवार में जो पिताजी हैं वो नशे का उपयोग करते हैं, तो धीरे धीरे उन्होंने मंगवाना शुरू किया बच्चे से। तो वो कई बार होता है, जैसे मैंने भी देखा है कि जब हमको सर्दी खांसी होती थी तो हमारे पिताजी एक ढक्कन सिरप हमको दे देते थे कि सर्दी ठीक हो जाए। तो ऐसे ही वो बच्चे ने अपने पिताजी के लिए लाना शुरू किया, धीरे धीरे फिर उसने टेस्ट करना शुरू किया, फिर वो जिस समुदाय में रहते हैं वहाँ के जो और उसके पीयर्स या हम दोस्त की बात करते हैं तो दोस्तों के साथ में जुड़ा, तो दोस्तों ने उसे इन्फ्लुएंस किया कि तू लड़का है यार, तू ये नहीं करेगा तो कौन करेगा, मर्द है, मर्द तो पीते हैं। तो इस तरीके से उसने धीरे धीरे उसने ट्राई करना शुरू किया, फिर वो पीना शुरू हो गया। तो उस व्यक्ति से जब मेरी बात हुई तो उसने बताया उसने बहुत ज़्यादा नशे का उपयोग किया और वो 10 साल का था तब वो जुड़ा। तो आज वो जो बच्चा है 18 साल का है, तो आप सोचिए कि 8 साल से 18 से 10 साल तक उसने कंटिन्यू वो चीज़ें करी। तो दो तीन जो परेशानियां मुझे निकल के आई कि एक तो जो हमारे दोस्त होते हैं, पीयर्स होते हैं, उनका एक बड़ा असर हमारे ऊपर पड़ता है। यदि आप वो चीज़ नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर बहुत सवाल खड़े करते हैं। घर का माहौल है, यदि आपकी उपलब्धता में, यदि घर में आप वो चीज़ें देख रहे हैं तो आप उसमें जुड़ जाते हैं, क्योंकि हम बोलते हैं कि प्रथम शिक्षा जो है बच्चों को अपने परिवार से मिलती है, तो परिवार का जो माहौल देखता है वो अडॉप्ट करता है। तो वो चीज़ हमने उसमें देखी। फिर जब इस तरीके की चीज़ें निकल के आई तो हमने उनसे पूछा जब आप करते हो तो आपको क्या नुकसान होता है इससे। तो फिर उस व्यक्ति ने खुद बताया कि जब मैं पीता हूँ तो मैं कहीं भी पड़ा हुआ मिलता हूँ या मुझे होश नहीं रहता है, कई बार मैं ऐसी चीज़ें करता हूँ जो मुझे नहीं करनी चाहिए शायद, जैसे कई बार छेड़खानी करना हुआ, खुद को नुकसान पहुँचाना हुआ, लड़ाइयाँ करना। तो उन्होंने दोनों चीज़ें बताई। तो फायदे के रूप में भी पूछा उनसे क्या हुआ, तो फायदे के रूप में कुछ समय के लिए शायद मैं कुछ चीज़ें अपनी भूल जाता हूँ, लेकिन उसने नुकसान ज़्यादा उसके बताए। तो ऐसे दोस्ती में उनसे बातचीत किया, तो हमने एक हमारा ग्रुप चलता है, उस ग्रुप में उस बच्चे को हमने जोड़ा। तो ग्रुप में हमने बातचीत करना कि हम और क्या चीज़ें कर सकते हैं, अल्टरनेटिव क्या है, मान लो हमें कोई परेशानी होती है तो हम और क्या कर सकते हैं, किसी से बात कर सकते हैं, किसी की मदद ले सकते हैं। तो जुड़ाव इस तरीके से होता है। फिर हम काउंसलिंग के प्रोसेस में जाते हैं, फिर हमें लगता है कि केस में शायद हम नहीं मदद, तो फिर हम रेफरल करते हैं, तो जो प्रोफेशनल काउंसलर हैं या जो नशा मुक्ति केंद्र हैं तो फिर हम उनकी सहायता लेते हैं। तो इस तरीके से हम उनमें मदद करते हैं। आज मुझे खुशी इस बात की जब उस व्यक्ति से बातचीत हुआ तो उसने वो काउंटिंग करके बता रहा है कि मैंने 3-3.5 लाख रुपए का नशा किया और पैसे ना होने के बाद कई बार चोरियां भी की, तो कई बार लोगों से पैसा भी मांगा और कई बार पिटे भी हैं। लेकिन एक चीज मुझे समझ में आया कि शायद उनको समझाने वाला एक स्पेस नहीं था, या वो उनमें वो अवेयरनेस नहीं थी, या उनके साथ में दिक्कत चल रही है वो वहीं कहीं शेयर नहीं कर पाए। तो वो एक स्पेस उनको हमसे मिला, उन्होंने शेयरिंग किया, काउंसलिंग हुआ, हमने और ऐसे लोगों से जोड़ा जो उनको सपोर्ट कर सकते हैं। तो अभी वो जो बच्चा है वो बिल्कुल नशा नहीं करता है, तो ये हमारे लिए बड़ा
1: मतलब इससे बात कह सकते हैं कि जितने भी लोग नशा कर रहे हैं और अभी तक मान लीजिए वो छोड़ नहीं पा रहे हैं और उसके आदी हैं, तो अगर वो काउंसलिंग तक पहुंचते हैं या आपसे या आप जैसी अन्य संस्थाओं के संपर्क में आते हैं तो बहुत बड़ा मतलब एक कारण बन सकता है कि वो नशे से दूर हो जाए। जितनी बात आपकी हुई अपनी, जब आप इस तरह के केसेस आपको मिलते हैं, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों या युवा हों, तो परिवार का क्या आपको उसमें सपोर्ट मिलता है, या कई बार आपको लगता है कि परिवार भी आप लोगों के अगेंस्ट हो जाए, वो भरोसा कर पाते हैं आप पे जल्दी कि ये हमारे बच्चे को या इंसान का नशा छुड़ाने के लिए आए हैं या उसमें सहायता करेंगे, या अगेंस्ट भी होता है, दोनों बातें बताइएगा।
2: विश्वास एकदम से तो वो नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें लगता है ये अचानक से कौन सा व्यक्ति आ गया जो हमारे परिवार की इतनी चिंता कर रहा है या हमारे परिवार के बारे में सोच रहा है। तो वो उस विश्वास को बना पाना शुरुआत में मुश्किल होता है, लेकिन जब लगातार उनसे मुलाकात होती है, कई बार जब हम जिस तरीके के संवाद करते हैं, कार्यक्रम का आयोजन करते हैं, तो हम उन्हें इन्वाइट भी करते हैं, तो कुछ चीज़ें वहाँ से ऑब्जर्व करते हैं। जैसे जिस बच्चे की मैंने आपको कहानी इससे पहले बताई, तो उन परिवार का पहले ये था कि वो नहीं भेजते थे, लेकिन उन्होंने जब अवसर दिया, हमने उन्हें जोड़ा, उन्होंने अपने बच्चे में बदलाव देखा, तो उनका विश्वास हमसे बढ़ा, तो फिर उन परिवार ने हमको सहयोग करना शुरू किया। क्योंकि परिवार भी कहीं ना कहीं इन चीज़ों से बहुत परेशान होता है। जब परिवार को जोड़ा, उन्होंने अपने घर में उस बच्चे के अंदर बदलाव देखा, तो उनमें एक विश्वास बढ़ा और फिर उन्होंने हमें सहयोग किया। तो शुरुआत में तो बहुत दिक्कतें होती हैं, क्योंकि आप जब किसी के पास जाते हैं तो उन्हें भी लगता है, क्योंकि कई बार ऐसे लोग भी जुड़ते हैं जो आपका सहयोग करने तो आते हैं लेकिन वो सहयोग ना करके आपका उपयोग कर लेते हैं कई बार, तो ये एक चुनौती रहती है। लेकिन आप लगातार काम करते हैं, क्योंकि मुश्किलें नहीं आएंगी तो आप काम नहीं कर पाओगे और आप सीख नहीं पाओगे। तो ये जो परेशानी आई ये चुनौती थी, लेकिन हमारे लिए सीख भी था कि हमें परिवार से कैसे जुड़ना है, क्योंकि हम सीधे उन्हें समाधान लेकर जाएंगे तो वो नहीं समझेंगे। तो उनकी समस्याओं को समझना, समस्याओं से उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, जब तक वो इस चीज़ को महसूस नहीं करेंगे तो शायद वो आपको मदद नहीं कर पाएंगे। तो एक परिवार के रूप में हमारा उनसे जुड़ाव होता है, ना कि एक संस्था या समाजसेवी के रूप में। तो एक परिवार का सदस्य बन के हम उनसे जुड़ते हैं, फिर उनके साथ में काम करते हैं।
1: एक बात और पूछेंगे निहारिका जी, जो जैसे आप इसमें काम कर ही रही हैं और इतने लंबे समय से, अलग अलग आपने बताया लगभग 6 राज्यों में आप काम कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि अभी जितने लोग जैसे आप कर रहे हैं ये पर्याप्त है, या अभी काफ़ी और लोगों को या कुछ अन्य संस्थाओं को आने की ज़रूरत है, क्योंकि नशे की प्रवृत्ति तो काफ़ी बड़ी हुई है?
2: मुझे लगता है कि बहुत कम है और बहुत काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि सुविधाएं हैं लेकिन उसकी अवेयरनेस या लोगों तक उसकी जानकारी नहीं है, तो लोगों को आगे आना पड़ेगा और लोगों की आवश्यकता है इसमें काम करने के लिए। और मुझे लगता है कि हमारी जो व्यवस्था है उसमें और बदलाव करने की भी ज़रूरत है। मैं जो देख पाती हूँ कि बच्चों के लिए उस तरीके की सुविधा नहीं है कि हम पुनर्वास उनका कर पाए, खासतौर पर नशे की उससे। एक दूसरा हमें ये थोड़ा बालश्रम में भी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि अभी तक यदि हम बालश्रम कानून की बात करें तो नशे में जो बच्चे लगे हुए हैं कहीं ना कहीं हम उसको एड्रेस नहीं कर पाते हैं। तो हमें इस और भी देखने की ज़रूरत है कि नशे में कितने जो बच्चे हैं वो काम कर रहे हैं, वो भी देखने की आवश्यकता है। दूसरा जो हमारी व्यवस्थाएँ चल रही हैं अलग अलग उन पर भी हमें मजबूत और वो कैसे काम कर पाएँ इसकी बहुत ज़रूरत है। तो एक तो बच्चों के लिए ऐसे केंद्र हो
1: जैसे काम मतलब उनको रोकने के लिए और नशे से दूर करने के
2: बिल्कुल ऐसे हाँ। कुछ अभियान चल रहे हैं लेकिन उस अभियान को और मजबूती और सक्रिय होने की ज़रूरत है। और खास कर ज़मीनी स्तर पर जो सुविधाएं मिलना चाहिए, जैसे मैं ऐसे केंद्रों की बात कर रही हूँ जहाँ पर बच्चों को निःशुल्क एक पुनर्वास जो होना चाहिए, एक प्रॉपर काउंसलिंग मिलना चाहिए, एक जगह होनी चाहिए जहाँ से बच्चा निकल पाए, तो वो एक सुविधाओं का गैप नज़र आता है। दूसरा जो प्रचार प्रसार होना चाहिए योजनाओं का, जानकारियों का, वो एक मुझे कम नज़र में आता है। तो इस तरीके की चीज़ें और होना चाहिए और लोगों तक उसका उपलब्धता होनी चाहिए। तो यदि हम इस तरीके से आगे बढ़ेंगे, और मुझे लगता है कि परिवार में भी हमें ध्यान देना चाहिए कि कई बार परिवार का जो माहौल होता है वो बहुत असर करता है, और भी जागरूक होने की ज़रूरत है। और कई बार मैंने देखा है लोग जागरूक तो होते हैं लेकिन एक्शन नहीं लेते हैं। जैसे हम देखें कई बार जब नशे के पदार्थ मतलब उसमें लिखा होता है कि इसमें कैंसर ये है, हम उपयोग करते हम जानते हैं लेकिन हम उसमें एक्शन नहीं लेते। तो उस पर एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है यदि आप जागरूक हैं, अवेयर हैं, तो लेकिन उसके लिए कार्यवाही करना बहुत ज़रूरी है।
1: आप जब फील्ड में काम करती हैं, इस पर लंबे समय से काम कर भी रही हैं, तो आपको किस तरह की समस्याएं फेस करने में आती हैं? इतना आसान तो है नहीं कि भाई कोई आपको पता चला या मिले आप उस व्यक्ति से कि ये नशा करता है तो उसके बाद यूं ही तो हो नहीं जाता होगा उनसे नशा, आपको भी बहुत सारी समस्याओं को फेस करना होता होगा, तो वो किस तरह की होती है?
2: कई बार जब हम समुदाय में इंटर करते हैं तो बहुत सारे जो पब्लिक प्लेसेस होते हैं जो मैं देखती हूँ कि नशे कारण बहुत ज़्यादा अनसेफ हो जाते हैं, असुरक्षित हो जाते हैं, क्योंकि जहाँ खुला स्पेस या खेलने का मैदान है वहाँ पर लोग ग्रुप में बैठ के नशा करते हैं या उस तरह की गतिविधियाँ करती हैं, तो एक जो असुरक्षित वाला माहौल है वो मुझे वहाँ नज़र में आता है। दूसरा जो चुनौती कई बार रहता है कि यदि व्यक्ति नशे में है तो हिंसक होता है, वो चीज़ों को उस समय समझ नहीं पाता है, तो वो हिंसक जैसा माहौल जो है वहाँ पे देखने को मिलता है। और दूसरा जो है जो खासतौर पे जो महिलाओं के साथ में जो हिंसा है, लड़कियों के साथ में जो छेड़खानी वाले मसले हैं, वो बहुत समुदाय में नज़र आते हैं। जैसे घरेलू हिंसा का एक बड़ा कारण यही है, नशा है। और कई बार जो रिपोर्टिंग भी होना चाहिए वो कई बार नशे के कारण वो रिपोर्टिंग भी नहीं हो पाती है कि व्यक्ति नशे में शायद गलती से हो गया होगा, तो एक जो रिपोर्टिंग है वो भी नहीं हो पाती है। और कई बार व्यक्ति क्योंकि वो नशे में है तो इस चीज़ को वो टाल देते हैं कि नशे में इसलिए शायद उनसे गलती हो गई होगी। तो इस तरीके की समस्याएं जो है हमें वहाँ पर नज़र में आती है। मानसिक स्वास्थ्य एक स्ट्रेस वाला बहुत है, क्योंकि यदि आपके परिवार में कोई नशा कर रहा है, माहौल वैसा है, तो आप तनावित महसूस करेंगे और आपका मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य पर उसका असर पड़ेगा ही। तो ऐसे तमाम समस्याएं जो हैं वो नज़र में। कई बार मैं देखती हूँ कि बहुत सारे जो बच्चे वो स्कूल से बाहर ड्रॉप आउट भी इसलिए हो जाते हैं क्योंकि घर में यदि कोई बीमार है या नशे के लिप्त है तो वहाँ पे जिम्मेदारी फिर जो है बच्चों को निभानी पड़ती है।
1: सॉल्यूशन जो समस्याएं आपको लगती हैं, तो आपको क्या लगता है कि क्या इनके सॉल्यूशंस हैं ताकि ये समस्याएं लगभग कम और ख़त्म हों और इस पर काम और बेहतर करा जाए? जैसे आपने समस्याएं गिनाई तो ये समस्याएं ना आए, आप इसके लिए कोई आपको लगता है क्या तरीके हैं?
2: मुझे लगता है एक तो हमें अवेयरनेस पे जागरूकता पे काम करना चाहिए, जो मुझे लगता है खासतौर पे जहाँ पर अवैध तरीके से जो नशे के पदार्थ उपलब्ध हैं उस पे कार्रवाई होना चाहिए और सख्त कार्रवाई होना चाहिए। तो ज़मीनी स्तर पे हमें उन जगहों को चयनित करना और उस पर सख्त कार्रवाई होना चाहिए। और खासतौर पे जो लोग नशे में लिप्त हैं उनको बाहर निकालने के लिए हम जो प्रक्रियाएं चला सकते हैं वो प्रक्रियाओं की सुविधाएं हमें उपलब्ध करानी चाहिए, चाहे वो एक परामर्श देना हो, चाहे वो उनके पुनर्वास के लिए नशा मुक्ति केंद्रों की ज़रूरत हो। ऐसे कुछ अभियान जो मैंने देखा है, जैसे पुलिस विभाग का अभियान, तो उन्होंने बहुत से सामाजिक संस्थाओं के साथ में, युवाओं के साथ मिलकर, कॉलेजेस के साथ में मिलकर चलाया, जो बहुत प्रभावी रहा है। तो यदि हम सब मिलकर उसमें काम करेंगे तो एक बहुत बेहतर रिजल्ट हम उसमें देख पाएंगे। तो सब साथ में मिलकर काम करें, ये बहुत ज़रूरी है।
1: हमने शुरू में भी एक एग्जांपल दिया था, कोई बच्चा था 10 साल की उम्र से ही नशे में आ गया था, कोई और दूसरा भी हो सकता है 12 साल की, एक उनकी किसी उम्र हो सकती है। तो जो भी होते हैं जब ये नशे से मुक्त हो जाते हैं तो इनको दोबारा सामान्य जीवन में लाने के लिए आप क्या प्रयास करते हैं, क्या होता है कि कैसे क्या आ पाते हैं और आते हैं तो फिर वो किस तरह से काम कर रहे होते हैं? आपने ऐसे लोग एग्जाम्पल होंगे आपके सामने?
2: काफी सारे युवा साथी हम जुड़े हैं, तो कई बार होता है कि जो प्रीवियस लाइफ है उनकी, तो कई बार लोग जज भी करना शुरू कर देते हैं, तो जब वो उस दूर लाइफ से बाहर आता है लेकिन लोग कमेंट्स उसको कई बार करते हैं, तो एक स्टिग्मा भी होता है कई बार, तो वो एक चुनौती होता है, तो वो माहौल को निर्माण करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन ये एक चुनौती है उन लोगों के लिए। तो इस पे हम लोग जो काम करते हैं, खासतौर पर हम लोग सिर्फ उस परिवार के साथ साथ उस समुदाय में भी काम करते हैं, ताकि ऐसा वातावरण मिल पाए ताकि व्यक्ति सहज महसूस करे वहाँ पर। तो लोगों को हम जागरूक करते हैं कि यदि व्यक्ति बाहर आया है उस चीज़ से, तो हम कैसे मिलकर उन्हें सहयोग कर सकते हैं। तो कम्युनिटी में हमारे जो संवाद होते हैं, परिवारों के साथ में संवाद होते हैं, कई बार हम लोग ऐसी गतिविधियों का भी, समावेशी गतिविधियों का भी आयोजन करते हैं कि हर व्यक्ति उसमें जुड़ पाए। तो इस तरीके के मुद्दों पर हम बात करते हैं, और ख़ासतौर पर लोगों की भूमिका उसमें करते हैं कि आपके समुदाय में रहने वाला कोई व्यक्ति है, वो आपका परिवार का हिस्सा है, वो आपका हिस्सा है, तो हम उस व्यक्ति को बेहतर रहने के लिए कैसे कर सकते हैं। तो समुदाय के साथ में हम लोग जब काम करते हैं, तो ऐसा माहौल देने की प्रयास करते हैं, और कई बार देखा भी है जो हमारी गतिविधियां होती हैं, जो कार्यक्रम करते हैं, तो उस व्यक्ति को ऐसा महसूस कराते हैं कि वो व्यक्ति वहाँ सहज महसूस करे, और जो पूर्व में जो उसके साथ में घटनाएं हुई हैं, जो हुआ है, वो सामने।
1: एक चीज़ तो चलते चलते समय की भी एक सीमा होती है। एक प्रश्न आएगा, अभी आपने शुरुआत कही थी कि स्लम एरियाज में जाना पड़ता है आपको, हाँ ये सत्यता है, और आप इस पे काम करती, तो ये मोहर इस बात की कि स्लम एरियाज में इस तरह के केसेस ज़्यादा मिलते हैं, लेकिन क्या लगता है आपको जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, संभ्रांत घरों के हैं, जिनके पास सारी सुविधाएं, वो भी नशे में लिप्त हो रहे हैं?
2: बिल्कुल है।
1: इस पर एक बार आप बताइए, उसमें कितने केसेस आपने देखे, या मतलब उसको ध्यान में रखते हुए बताइए।
2: बिल्कुल, कोविड के समय हम लोगों ने हमारा एक ब्रोशर तैयार किया था काउंसलिंग के लिए, तो वहां पर हमारे पास कई बार केसेस आए, और वो ऐसे हाई प्रोफाइल सोसाइटी के ही लोगों के आए थे। तो क्योंकि स्लम एरिया में हमारा एक्सेस है, वहाँ लोग दिखते हैं, जुड़ते हैं, तो वहाँ पता चल जाता है, लेकिन बहुत सारे बच्चे जो आइसोलेटेड हैं, जो रहते हैं, वहाँ पर भी समस्या है। कई बार जब मैं बाहर निकलती हूँ, तो देखती हूँ जो बच्चे पीजीज में यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए आते हैं, या जो तमाम दुकानें हमें नजर आती है, वहाँ बहुत बड़ा स्टूडेंट क्राउड हमें नजर आता है। तो हर वर्ग का व्यक्ति इससे परेशान है और जुड़ा हुआ है।
1: इनका क्या प्रमुख कारण होता है? ये तो सब तरह से सुविधाएं इनके पास, टारगेटेड हैं, अच्छा खासा माहौल है, ये नशे की लत में क्यों पड़ जाते हैं?
2: माहौल का मतलब सिर्फ अच्छी शिक्षा देना नहीं होता है। माहौल जो है कि आपका बच्चा जो है वो किन गतिविधियों में जा रहा है, उसे क्या समस्या है, वो एक स्पेस वहाँ पर नहीं है। तो कई बार क्या होता है कि जो पेरेंट्स का भी जो डायलॉग है, वो बच्चों के साथ निरंतर नहीं होता है, और कई बार बच्चा जो बाहर गतिविधि करता है, उसका भी ऑब्जर्वेशन कई बार नहीं रहता है, क्योंकि वो वहाँ पर, कई बार बच्चे बाहर रहते हैं तो उनकी मॉनिटरिंग उस तरीके से नहीं हो पाती है, या फिर वो दोस्तों के साथ में जुड़ के जो चीज़ें कर रहा है। और कई बार जो है, जो हाई प्रोफाइल सोसाइटी में लोगों को जो मुझे जो देखा है कई बार, उनके लिए एक पैटर्न है अपनी लाइफ को इंजॉय करने का, तो वो इंजॉयमेंट के जो साधन के रूप में वो इसको देखते हैं। तो मुझे लगता है कि उन पे भी और बात करने की जरूरत है, क्योंकि हम उन्हें बना देते हैं कि आप सुविधाएं, आपको जरूरत नहीं है परेशानी, तो वो उसी माहौल में डरते हैं कि हमें शायद किसी से गाइडेंस की आवश्यकता नहीं, या फिर हम जो कर रहे हैं वो सब ओके है।
1: मतलब इस बात से निकल के ये आता है कि एक जो केवल हम गरीबी या स्लम में रहने वाले बच्चों पे केवल आरोप नहीं बढ़ रहे हैं, हम तो वास्तविकता पे बात कर रहे हैं कि हमें वहां भी वो बच्चे मिलते हैं, और जो नशे का उपयोग है वो केवल गरीबी ही नहीं, वो तो एक टारगेटेड है ही, लेकिन एक समाज जो पूरी तरह से संभ्रांत है, उसके पास सारी सुविधाएं, वो भी नशा कर रही है, उसके नशा करने के अपने अलग कारण हैं, है ना, ये बात हम कह सकते हैं। निहारिका जी, आपका तो पहले बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए, और एक बहुत ही अच्छे कार्य में आप लगी हैं, इसके लिए हम आपका पुनः धन्यवाद करेंगे हमारी और हमारे रेडियो की टीम की ओर से। प्रयास बहुत ज़रूरी है कि इस नशे को ख़त्म करा जाए, ताकि देश एक अच्छी दिशा में बढ़े।
2: बिल्कुल,
1: तो आपका ये जो आप साधुवाद हम आपका देंगे, जो आप कार्य कर रहे हैं। तो ये था कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा, जिस पे हमने आज बात करी नशीली दवाओं का दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ विषय पर। और ये जो कार्यक्रम था, इसका मार्गदर्शन हमें दिया संतोष कुमार वर्मा ने, परिकल्पना है अदिति गौड़ जी की, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी का, और समन्वय सहयोग है सतीश बाथम का, और मैं था आपके साथ आपका ध्वनि मित्र रत्नेश सोनी। निहारिका जी, आपका एक बार पुनः धन्यवाद।
2: धन्यवाद, नमस्कार।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: अगर आपको दो हफ्तों से ज्यादा खांसी है तो इसे हल्के में ना लें। ये टीबी भी हो सकता है। तुरंत डॉक्टर से मिलें और बलगम की जांच कराएं। टीबी किसी को भी हो सकता है। अगर आपको टीबी हो गया है तो बिना भूले पूरा कोर्स करें।
2: कोई भी टीबी मरीज इलाज से छूटे नहीं, इसके लिए हमने नई रणनीति पर काम किया। हमने आयुष्मान भारत योजना से जोड़ा है। हम टीबी की रोकथाम के लिए 6 महीने के कोर्स की जगह केवल 3 महीने का ट्रीटमेंट भी शुरू कर रहे हैं। अब नई व्यवस्था में मरीज को हफ्ते में केवल 1 बार दवा लेनी होगी। भारत अब वर्ष 2025 तक टीबी खत्म करने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का कैपेसिटी एनहेंसमेंट किया है। हम ट्रेस, टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट एंड टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। मुझे विश्वास है हमारा ये संकल्प जरूर सिद्ध होगा। यस वी कैन एंड टीबी। टीबी हारेगा, भारत जीतेगा।
1: दो हफ्तों से ज्यादा खांसी हो सकती है टीबी की बीमारी। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। रेडियो आजाद हिंद द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया FM 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। आइए सुनते हैं कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।
4: स्वराज संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग प्रस्तुत करते हैं स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और उनके विचारों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।

0: अभी तक आपने जाना कि युवा विवेकानंद कई तरह से धार्मिक तथा आध्यात्मिक मतवादों से परिचित होकर विचलित हो गए। सत्य क्या है इसकी खोज में वे भटकते रहे। अंततः डॉक्टर रामचंद्र दत्त के कहने पर दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण ठाकुर से मिलने गए। वहां उन्होंने ठाकुर के कहने पर गाने भी गाए। इस ऐतिहासिक मुलाकात से नरेंद्रनाथ के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया। इस मुलाकात का वर्णन उन्होंने खुद इस तरह किया है।
1: गाना तो मैंने गाया, उसके बाद ही श्री राम कृष्ण देव एकाएक उठकर मेरा हाथ पकड़कर अपने कमरे में उत्तर की ओर बरामदे में मुझे खींच ले गए। उस समय शीतकाल था। उत्तरी हवा रोकने के लिए बरामदे के खंभों के बीचों बीच टट्टे घिरे हुए थे, इसलिए वहां भीतर जाकर कमरे का दरवाजा बंद कर देने से कमरे के भीतर या बाहर के किसी व्यक्ति को देखा नहीं जा सकता था। बरामदे में प्रविष्ट होकर श्री रामकृष्ण देव द्वारा दरवाजा बंद कर देने पर मैंने सोचा, संभवतः एकांत में मुझे उपदेश देंगे, परंतु उन्होंने जो कुछ कहा और किया वो कल्पनातीत है। एकाएक उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। उनके नेत्रों से आनंद अश्रु की धारा बहने लगी और पूर्व परिचित की तरह मुझे परम स्नेह से संबोधित करते हुए कहने लगे, तू इतने दिनों बाद आया, मैं तेरे लिए किस प्रकार प्रतीक्षा कर रहा था तू सोच भी नहीं सकता। विषयी मनुष्यों के व्यर्थ के प्रसंग सुनते सुनते मेरे कान जले जा रहे हैं। मन की बात किसी से न कह सकने के कारण मेरा पेट फूलता जा रहा है। आदि आदि वे कितनी ही बातें कहने लगे और रोने लगे। दूसरे ही क्षण मेरे सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए और देवता की तरह मेरे प्रति सम्मान दिखाकर कहने लगे, मैं जानता हूं प्रभु, आप वही पुरातन ऋषि नर रूपी नारायण हैं। जीवों की दुर्गति दूर करने के लिए आप पुनः संसार में अवतीर्ण हुए हैं। मैं तो उनके इस प्रकार के आचरण से एकदम अवाक और स्तंभित रह गया। मन में सोचने लगा, मैं किसे देखने आया हूं, ये तो एकदम उन्माद है। मैं तो विश्वनाथ दत्त का पुत्र हूं, मुझसे ऐसी बातचीत। जो भी हो मैं चुप रह गया। अपूर्व पागल, जो मन में आया कहते चले गए। थोड़ी देर बाद मुझे वहीं ठहरने के लिए कहकर वे कमरे में चले गए और मक्खन मिश्री तथा कुछ मिठाई लाकर अपने हाथ से मुझे खिलाने लगे। मैं कहने लगा, मुझे मिठाइयां दे दीजिए, साथियों के साथ खाऊंगा, परंतु उन्होंने मुझे सब कुछ खिलाकर ही छोड़ा। इसके बाद मेरा हाथ पकड़कर उन्होंने कहा, बोल तू जल्दी ही एक दिन मेरे पास अकेला आएगा तो। उनके इस आग्रहपूर्ण अनुरोध को टाल न सकने के कारण लाचार होकर आऊंगा कह दिया और उनके साथ साथ कमरे में आकर अपने साथियों के साथ बैठ गया।
2: कमरे में श्री रामकृष्ण के समीप कई लोग बैठे थे। उन्होंने कहा,
3: देखो देवी सरस्वती के ज्ञान लोक से नरेंद्र कैसा चमक रहा है। अच्छा नरेंद्र, बता तो क्या तुझे सोने से पहले ज्योतिपुंज दिखाई पड़ता है?
1: जी हां।
3: वाह, सब कुछ ठीक ठाक मिलान होता जा रहा है। अरे ये तो ध्यान से धैर्य, जन्म से ही ध्यान से धैर्य।
0: नरेंद्र बैठे बैठे सब कुछ देखते रहे। उन्होंने देखा कि ठाकुर की चाल ढाल, बातचीत और दूसरों से व्यवहार में उन्माद जैसा कुछ भी नहीं है। वरन उनकी सत्कथा एवं भाव समाधि को देखकर नरेंद्र में यह विश्वास उत्पन्न हुआ कि ये सचमुच ही ईश्वर के लिए सर्वस्व त्यागी है तथा ये मुख से जो कुछ कहते हैं उसका स्वयं अनुष्ठान भी करते हैं। ये अत्यंत सहज सरल भाषा में उच्च आध्यात्मिक बातें करते हैं। इसी से नरेंद्र को लगा ये संभवतः सचमुच एक उच्च सत्य दृष्टा महापुरुष है। अतएव जो प्रश्न आज तक वे धर्माचार्यों से पूछते आए हैं वही प्रश्न लेकर उनकी ओर आगे बढ़े और जिज्ञासा प्रस्तुत की।
1: महाशय, क्या आपने ईश्वर को देखा है?
3: हाँ, मैंने ईश्वर को देखा है, ठीक जैसे तुम लोगों को देखता हूं, बल्कि इससे भी और अधिक स्पष्टता से। तुम लोगों को जैसे देख रहा हूं, तुम लोगों से जैसे बातचीत कर रहा हूं, वैसे ही ईश्वर को भी देखा जाता है और उनसे बात की जा सकती है। परंतु वैसा कौन चाहता है? लोग स्त्री पुत्र के शोक में घंटों आंसू बहाते हैं, विषय और धन के लिए तरसते रहते हैं, परंतु ईश्वर का दर्शन नहीं हुआ ये कहकर कौन रोता है? मैं उन्हें पा नहीं सका, ऐसा कहकर कौन व्याकुल होकर उन्हें पुकारता है? उन्हें मैं पा न सका तो वे अवश्य ही दर्शन देते हैं।
1: उनके श्रीमुख से ऐसी बात जानकर मुझे लगा कि अन्य धर्म प्रचारकों की तरह वे कल्पना या रूपक का सहारा लेकर व्याख्यान नहीं देते, यथार्थ में ही सब कुछ छोड़कर संपूर्ण मन से ईश्वर को पुकार कर जो कुछ प्रत्यक्ष अनुभव किया वही कर रहे हैं। पागल होने पर भी ईश्वर के लिए वैसा त्याग संसार में विरले मनुष्य ही कर सकते हैं। उन्माद होने पर भी ये महापुरुष पावन, पवित्र और त्यागी हैं। इसी कारण मानव हृदय की श्रद्धा, पूजा और सम्मान पाने के ये यथार्थ अधिकारी हैं।
0: इस प्रकार सोचते हुए उस दिन ठाकुर को प्रणाम कर उनसे विदा लेकर वे कलकत्ता लौट आए।
2: इस पहली मुलाकात के बाद लगभग महीने भर तक नरेंद्र दक्षिणेश्वर नहीं गए, पर बाद में उन्हें अपना फिर वहां जाने का वादा याद आया और इस बार वे अकेले कलकत्ते से दक्षिणेश्वर तक पैदल ही चले गए।
1: दक्षिणेश्वर कालीबाड़ी कलकत्ते से इतनी दूर होगी ये पहले एक बार गाड़ी से जाकर मैं समझ नहीं सका था। वराहनगर से दाशरथी, सान्याल, सातकड़ी, लाहड़ी आदि मित्रों के घर तो मैं कभी जाया करता था। मैंने सोचा था कि रानी रासमणि का बाग उन मित्रों के घर के समीप ही कहीं होगा, परंतु जितना ही चलने लगा रास्ता समाप्त ही नहीं होता था। अंत तो गतवा पूछते पूछते किसी तरह दक्षिणेश्वर पहुंच गया और एकदम श्री रामकृष्ण के कमरे में उपस्थित हो गया और देखा वे पहले की तरह छोटी चौकी पर अकेले अपने ही भाव में विभोर बैठे हैं। पास में कोई नहीं था। मुझे देखते ही आनंद से बुलाकर अपने पास बिठाया। बैठने के बाद ही मैंने देखा न जाने किस प्रकार के भाव में वे तन्मय हो गए हैं और अस्पष्ट स्वर से कुछ कहते हुए स्थिर दृष्टि से मेरी ओर देखकर धीरे धीरे सरकते आ रही हैं। मैंने सोचा संभवतः ये पागल पहले दिन की तरह फिर कोई पागलपन कर बैठेगा। ये सोच ही रहा था कि उन्होंने एकाएक मेरे पास आकर अपना दाहिना पैर मेरे अंग पर संस्थापित कर दिया और उसके स्पर्श से क्षण भर में मेरे भीतर एक अपूर्व उपलब्धि होने लगी। आंखें खोलकर मैं देखने लगा कि घर की दीवारों के साथ सारी चीजें घूमती हुई कहीं विलीन होती जा रही हैं, और सारे ब्रह्मांड के साथ मेरा शुद्र अहम भाव सर्वव्यापक महाशून्य में विलीन होता जा रहा है। उस समय भय से मैं घबरा उठा, सोचने लगा अहम भाव का नाश ही तो इस बात का संकेत है कि मृत्यु सामने बहुत समीप आ गई है। अपने को संभाल न सकने के कारण मैं चिल्ला उठा, अजी अजी, आपने मेरी एक कैसी अवस्था कर डाली, मेरे तो मां बाप हैं। मेरी बात सुनकर वो अद्भुत पागल खिलखिलाकर हंस पड़ा और मेरा हाथ पकड़कर छाती से स्पर्श करते हुए कहा,
3: अच्छा तो फिर अभी रहने दो, एकदम ही होने की कोई जरूरत नहीं, समय आने पर अवश्य होगा, समय आने पर होगा।
1: आश्चर्य की बात यह है कि उनके स्पर्श से और ये बात कहते ही मेरे अपूर्व दर्शन विलुप्त हो गए, मैं प्रकृतिस्थ हो गया और कमरे के भीतर तथा बाहर सभी पदार्थों को पहले की तरह अवस्थित देखने लगा। इस बात को कहने में तो इतना समय लगा, पर असल में तो वो घटना बहुत ही थोड़े समय में हो गई और उससे मेरे मन में एक युगांतर उपस्थित हुआ। स्तब्ध होकर मैं सोचने लगा, ये क्या हुआ? एक अद्भुत पुरुष के प्रभाव से भाव एकाएक उपस्थित हुआ और लुप्त भी हो गया। पुस्तक में मैस्मरिज्म यानी मोहिनी इच्छा शक्ति संचारण और हिप्नोटिज्म यानी सम्मोहन विद्या के संबंध में पढ़ा था। सोचने लगा कि यह भी कुछ वैसा ही होगा, किंतु यह सिद्धांत चित्त में ठहर न सका, क्योंकि दुर्बल मन के ऊपर ही प्रभाव डालकर प्रबल इच्छा शक्ति संपन्न व्यक्ति वैसी अवस्था ला देते हैं, परंतु मैं तो वैसा नहीं हूं, बल्कि अब तक अपने को विशेष बुद्धिमान और मानसिक शक्ति संपन्न मानता आया हूं। विशेष गुणयुक्त पुरुष के संग से साधारण व्यक्ति जिस प्रकार मोहित हो जाते हैं और उनके हाथ के खिलौने बन जाते हैं, मैं तो उन्हें देखकर वैसा नहीं हुआ हूं, बल्कि आरंभ से ही मैंने इन्हें आधा पागल समझ रखा है। अतः मेरे भीतर एकाएक इस प्रकार का भाव आने के कारण क्या है? मैं यही सब सोचता विचारता रहा, पर कुछ निश्चय नहीं कर सका। हृदय में कुछ हलचल सी मच गई। महाकवि शेक्सपियर की बात याद आई, पृथ्वी और स्वर्ग में ऐसे अनेक तत्व हैं जिनके रहस्य भेद की मनुष्य बुद्धि द्वारा रचित दर्शन शास्त्र कल्पना भी नहीं कर सकते। मैंने सोचा ये भी वैसा ही कुछ होगा। सोच विचार कर निर्णय किया कि इनकी बात अभी समझ में नहीं आएगी, और दृढ़ संकल्प कर लिया कि ये अद्भुत पागल अपना प्रभाव डालकर भविष्य में कभी वशीभूत करके वैसा भावांतर उपस्थित न कर दे। फिर ये सोचने लगा कि इच्छा मात्र से ये पुरुष यदि मेरे जैसे प्रबल इच्छा शक्ति संपन्न चित्त के दृढ़ संस्कार युक्त गठन को इस तरह तोड़ फोड़ कर मिट्टी के लांदे की तरह अपने भाव में ढाल सकते हैं, तो उन्हें पागल कैसे समझूं? किंतु प्रथम दर्शन के दिन मुझे एकांत में ले जाकर उन्होंने जिस तरह संबोधित करते हुए बातें की थी, उससे इन्हें पागल के अतिरिक्त तो और मान सकता हूं। अतः अभी जो उपलब्धियां हुई उनका कोई कारण मैं नहीं पा सका, और इस शिशु सदृश पवित्र तथा सरल पुरुष के संबंध में कुछ स्थिर निश्चय ही कर पाया। बुद्धि का उन्मेष होने के अनंतर खोज और तर्क युक्ति की सहायता से प्रत्येक वस्तु और व्यक्ति के संबंध में एक मतामत स्थिर किए बिना मैं कभी निश्चित नहीं हो सका। उसी स्वभाव में आज एक प्रचंड आघात प्राप्त हुआ है। इससे हृदय में वेदना उत्पन्न हुई। फलस्वरूप मन में पुनः प्रबल संकल्प का उदय हुआ, जैसे भी हो सके इस अद्भुत पुरुष के स्वभाव और शक्ति की बात अवश्य ही समझनी होगी। उस दिन उस प्रकार की विविध चिंताओं एवं संकल्पों से मेरा समय बीतने लगा, परंतु श्री रामकृष्ण देव उस घटना के बाद मानो एक दूसरे ही व्यक्ति बन गए और पहले दिन के समान अनेक प्रकार से मुझे प्रेम पूर्वक खिलाने तथा सभी विषयों में पूर्व परिचित की तरह आचरण करने लगे। अत्यंत प्रिय आत्मीय अथवा घनिष्ठ मित्र को बहुत दिनों के बाद सामने पाने पर लोगों में जिस प्रकार का भाव होता है, मेरे साथ भी उन्होंने वैसा ही व्यवहार किया था। खिलाकर, बातचीत कर, प्यार और हास परिहास करके भी उन्हें मानो तृप्ति नहीं हो रही थी। वैसे उनके प्यार तथा व्यवहार का कारण न ढूंढ पाने पर मैं और भी सोचने लगा। क्रमशः संध्या होते देखकर मैंने उस दिन उनसे विदा लेनी चाही, परंतु उससे वे बहुत ही अप्रसन्न होकर बोले फिर शीघ्र ही आएगा तो? लाचार होकर मुझे पहले दिन की तरह वचन देकर ही लौटना पड़ा।
0: इस घटना के हफ्ते भर बाद नरेंद्र एक बार फिर दक्षिणेश्वर गए। श्री रामकृष्ण के संबंध में संदेह आदि के निराकरण करने के लिए वे अधीर हो उठे थे। उस दिन भी ठाकुर ने नरेंद्र के साथ बगीचे में और गंगा तट पर कुछ समय टहलकर बातचीत की और लौटकर बैठक में बैठते ही समाधिस्थ हो गए। उसी समय अचानक रामकृष्ण देव ने समाधि से जागकर नरेंद्र के पास आकर उन्हें स्पर्श किया। तुरंत नरेंद्र जैसे बेसुध से हो गए। क्या घटित हुआ वे कुछ भी समझ नहीं पाए। चेतना लौटने के बाद उन्होंने देखा कि ठाकुर उनके वक्ष स्थल पर हाथ फेर रहे हैं और मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं।
2: कई दिनों के बाद पूछने पर रामकृष्ण ने बताया था कि वे पहले से ही नरेंद्र के बारे में जानते थे, प्रतीक्षा कर रहे थे कि वे कब आएंगे। उस दिन उन्होंने नरेंद्र की अचेतन अवस्था में उससे पूछा था कि वो कौन है, कहां से आया है, क्यों आया है, कितने दिनों तक पृथ्वी पर रहेगा, और उसने सब बातों का सही सही जवाब दिया था।
0: इधर इन 3 दिनों की जानकारी के फलस्वरूप श्री रामकृष्ण के संबंध में नरेंद्रनाथ की धारणा में आमूल परिवर्तन हुआ था, ये कहने की जरूरत नहीं है। उन्होंने समझ लिया था कि श्री रामकृष्ण देव उन्माद पूर्ण नहीं बल्कि दैवी शक्ति से परिपूर्ण और ईश्वरानुभूति संपन्न एक महापुरुष है। भगवत इच्छा के साथ उनकी इच्छा पूर्णतया एक होने से वे दूसरों का महाकल्याण करने में समर्थ हैं। इस प्रकार के त्याग, पवित्रता, सरलता और करुणा से विभूषित व्यक्ति के हाथों में अपने जीवन के नियमन और परिचालन का दायित्व सौंप देने पर ही मनुष्य कृतार्थ होता है।
2: वस्तुतः अपनी प्रखर बुद्धिमता और ब्रह्म समाज के प्रभाव से यद्यपि वे गुरु के रूप में किसी को ग्रहण करने में विश्वास नहीं रखते थे, तथापि इन कुछ दिनों की जानकारी के फलस्वरूप उनके विचार में परिवर्तन आ गया। निश्चय ही उस समय भी वे बिना विचारे श्री रामकृष्ण देव की सभी बातों को मान लेने को तैयार नहीं थे और बिना परीक्षा लिए तथा स्वानुभाव के किसी बात को मान लेने में कोई तर्कसंगति उन्हें दिखाई नहीं पड़ती थी।
0: अब से श्री रामकृष्ण देव के प्रति उनके मन में एक श्रद्धापूर्ण प्रीति के प्रतिष्ठित रहने पर भी नरेंद्रनाथ की विचार शक्ति पूर्णतः जागृत ही रही। इन दोनों भावों के सम्मिलन एवं संघर्ष के द्वारा ही इसके बाद से इन दोनों अलौकिक महापुरुषों के मानवीय संबंध विकसित होने लगे। अर्थात यद्यपि नरेंद्र अब से श्री रामकृष्ण के ही हो गए, तथापि श्री रामकृष्ण देव ने उनकी निजी स्वतंत्रता पर कोई हस्तक्षेप नहीं किया। नरेंद्र की स्वतंत्रता अक्षुण रही। श्री रामकृष्ण के उपदेश विषयक अन्य बातों के संबंध में हम लोग नरेंद्रनाथ के श्रीमुख से ही सुनते हैं।
1: ठाकुर के संग में किस प्रकार आनंद से दिन बीतते थे, दूसरों को समझाना कठिन है। खेल, हंसी, विनोद आदि साधारण विषयों पर उन्होंने किस तरह निरंतर उच्च शिक्षा देकर अनजाने में हमारे आध्यात्मिक जीवन के गठन में सहायता दी थी। उस संबंध में आज सोचने पर हमें बहुत आश्चर्य होता है। बालक को सिखाते समय शक्तिशाली पहलवान जिस प्रकार अपना संयम रखकर बालक के अनुरूप शक्ति प्रकाशित कर कभी उसे बहुत प्रयत्न के द्वारा हराकर और कभी उससे स्वयं हारकर उसके मन में आत्मविश्वास उत्पन्न कर देता है, हमारे साथ व्यवहार करते हुए भी प्रायः वैसे ही भाव का अवलंबन करते थे। वे बिंदु के भीतर सदा सिंधु का दर्शन करते थे। उसी प्रकार हम लोगों के अंतर्निहित आध्यात्मिक भाव का बीज फल फूलों के रूप में परिणित होगा, इस बात को उसी समय वे भावमुख सदा हमारी प्रशंसा किया करते थे, उत्साह देते थे और किसी खास सावधानी के साथ हमारे प्रत्येक व्यवहार के प्रति ध्यान रखकर अनेक उपदेश देते हुए हमें संयत रखते थे। परंतु वे इतना ध्यान देकर हमें सदा नियमित रखते थे, इस बात को हम उस समय बिल्कुल ही नहीं समझ सकते थे। वही उनके शिक्षा प्रदान और जीवन गठन करने का अपूर्व कौशल था।
2: श्री रामकृष्ण देव परीक्षा लेते और शिक्षा देते, फिर नरेंद्रनाथ भी श्री गुरुदेव के वचन सुनकर शिक्षा ग्रहण करते। कारण, भगवान ने उन्हें अपूर्व प्रतिभा प्रदान की थी। नरेंद्रनाथ की अनुपम मेधा शक्ति श्री रामकृष्ण देव के स्नेहाकर्षण का अन्यतम प्रधान कारण थी। अन्य भक्तगण श्री रामकृष्ण देव के जिन अमूल्य उपदेशों को साधारण भाव से ग्रहण किया करते अथवा उनके प्रति अधिक ध्यान नहीं दिया करते, उनमें नरेंद्रनाथ की प्रतिभा अत्यंत गूढ़ और फलदायी मर्म का उद्घाटन किया करती थी।
0: सन 1884 ईस्वी में किसी समय श्री रामकृष्ण कमरे में भक्तों से घिरे बैठे हैं। श्रीयुत नरेंद्रनाथ भी वहां उपस्थित हैं। विविध वार्तालाप तथा बीच बीच में सरल हास प्रयास भी हो रहा है। प्रसंगवश वैष्णव धर्म की बात उठी। उस मत का सार मर्म सब लोगों को संक्षेप में समझाकर श्री रामकृष्ण देव ने कहा,
3: तीन बातों का पालन करने के लिए सदा प्रयत्नशील रहने का उद्देश्य उस मत में है। नाम में रुचि, जीव के प्रति दया और वैष्णव पूजन। जो नाम है वही ईश्वर है। नाम नामी को अभिन्न जानकर निरंतर अनुराग के साथ नाम लेना चाहिए।
0: सब जीवों पर दया कहते ही श्री रामकृष्ण देव समाधिस्थ हो गए। कुछ क्षणों के अनंतर अर्ध बाह्य दशा में अवस्थित होकर कहने लगे,
3: जीव पर दया, अरे कीटाणु, कीट होकर तू जीव पर दया करेगा? दया करने वाला तू कौन है? नहीं, जीव पर दया नहीं, शिव ज्ञान के साथ जीव की सेवा।
0: ये बातें सभी ने सुनी थी, किंतु उनकी भाव भंगिमा के पश्चात बाहर आकर नरेंद्रनाथ ने कहा, आज ठाकुर की बात से कैसा अद्भुत प्रकाश दिखाई पड़ा। जिस वेदांत ज्ञान को लोग शुष्क, कठोर और मतांतर रहित समझते हैं, उसे भक्ति के साथ सम्मिलित करके कैसे सहज, सरस और मधुर प्रकाश का उन्होंने प्रदर्शन करा दिया। आज ठाकुर ने भावावेश में जैसा बताया, उससे जाना गया कि वन के वेदांत को घर में लाया जा सकता है, संसार के सभी कार्यों में उसका प्रयोग किया जा सकता है। ठाकुर के इस उपदेश से भक्ति पथ में भी विशेष प्रकाश दिखाई पड़ता है। जब तक ईश्वर को सर्वभूतों में नहीं देखा जाता, तब तक यथार्थ भक्ति या पराभक्ति लाभ करना साधक के लिए संभव नहीं होता। विशेष प्रकाश दिखाई पड़ेगा। भगवान ने यदि अवसर दिया तो आज जो जो सुना इस अद्भुत सत्य का संसार में सर्वत्र प्रचार करूंगा। पंडित मूर्ख, धनी निर्धन, ब्राह्मण चांडाल, सभी को सुनाकर मुग्ध करूंगा।

अभी आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।

तो ये था कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद। आपने ट्यून किया अपने रेडियो सेट पर 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव, भ्रष्टाचार की सफाई और दीवानी का खेल। क्या आप जानते हैं कि जब लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव 1765 में कलकत्ता लौटे तो उन्हें एक अनुशासित व्यापारिक केंद्र नहीं मिला, बल्कि एक ऐसा शहर मिला जिसे उन्होंने कल्पना से परे लालची और विलासी बताया था। पलासी की जीत के बाद यह तथाकथित स्वर्ग से जन्मा सेनापति अपनी प्रसिद्धि और अपनी आयरिश पियरिज यानी कुलीन पद का आनंद लेने के लिए इंग्लैंड लौट गया था, लेकिन पीछे जो बंगाल छूटा था वह भ्रष्टाचार के गर्त में गिर चुका था। क्या आप जानते हैं कि कंपनी के कर्मचारी वह बन चुके थे जिन्हें एडमंड बर्क ने बाद में शिकारी पक्षियों की नई उड़ान कहा था। धन की अदम्य भूख से प्रेरित मामूली वेतन पाने वाले युवा क्लर्क राइटर अचानक राजकुमारों की तरह रहने लगे थे। वे स्थानीय शासकों से भारी उपहार वसूलते थे और दस्तक, निजी व्यापार, पास के दुरुपयोग के माध्यम से ग्रामीण इलाकों में आतंक फैलाते थे। नवाब का हर बदलाव एक और 5 अंकों वाले इनाम का बहाना बन गया, जबकि कंपनी खुद दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गई थी। लॉर्ड क्लाइव अपने तीसरे कार्यकाल के लिए इस व्यापक भ्रष्टाचार की सफाई करने के जनादेश के साथ आए थे। क्या आप जानते हैं कि उन्होंने अपने ही सहयोगियों का शिकार करने के लिए एक सेलेक्ट कमेटी का इस्तेमाल किया? क्लाइव ने उन्हें मनाने में समय बर्बाद नहीं किया। उन्होंने पार्षदों को उनकी अचानक बड़ी संपत्ति का विवरण देने के लिए बुलाया और हर अधिकारी को भविष्य में उपहार न लेने के लिए एक शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया। लेकिन क्लाइव के सुधारों में एक अजीब विडंबना थी। क्या आप जानते हैं कि जहां वे ईमानदारी की मांग कर रहे थे वहीं वे खुद अपनी कुख्यात जागीर से सालाना बड़ी रकम प्राप्त कर रहे थे। जब अपमानित पार्षदों ने उन्हें याद दिलाया कि वे केवल उनके द्वारा स्थापित उपहार लेने के उदाहरण का पालन कर रहे थे तो क्लाइव का जवाब अभिजात्यवाद का एक उत्कृष्ट नमूना था। उन्होंने दावा किया कि उनके पुरस्कार वास्तविक सेवाओं के लिए थे, जबकि उनके सहयोगियों के पुरस्कार निम्न श्रेणी के दावों की लूट थे। निजी व्यापार के मुद्दे को हल करने के लिए क्लाइव ने वरिष्ठ कर्मचारियों के लिए नमक और तंबाकू पर राज्य स्वीकृत एकाधिकार पेश किया। हालांकि इसका उद्देश्य अधिकारियों के लिए कानूनी आय सुनिश्चित करना था, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसका परिणाम भूखे किसानों के लिए बढ़ी हुई कीमतों के रूप में निकला, जबकि क्लाइव का व्यक्तिगत हिस्सा बहुत बड़ी रकम से भी बहुत ऊपर पहुंच गया था। सबसे बड़ा सुधार तब आया जब क्लाइव ने मुगल सम्राट से दीवानी अर्थात पूरे बंगाल का राजस्व एकत्र करने का अधिकार प्राप्त किया। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस ऐतिहासिक समारोह के लिए इस्तेमाल किया गया सिंहासन वास्तव में क्लाइव की अपनी डाइनिंग टेबल थी, जिसे कठपुतली सम्राट के लिए कपड़े से ढक दिया गया था। इस एक कार्य के साथ कंपनी व्यापारियों की एक साधारण समिति से हटकर एक संप्रभु शक्ति बन गई। अंततः क्लाइव का दूसरा प्रशासन एक दृढ़ और जिम्मेदार कमान थोपने में सफल रहा, लेकिन भ्रष्टाचार का वह अस्तबल पूरी तरह साफ होने से कोसों दूर था। उनके भ्रष्टाचार विरोधी अभियान ने घूसखोरी के भाईचारे का उल्लंघन किया, जिससे वे कलकत्ता में सबसे नफरत किए जाने वाले व्यक्ति बन गए और यह सुनिश्चित कर दिया कि उनकी ईश्वरीय विरासत का अंत संसदीय महाभियोग के गंभीर गलियारों में होगा।
2: तो श्रोताओं, हमारी सुबह की सभा यहीं संपन्न होती है। आप बने रहिए हमारे साथ और आनंद लीजिए दोपहर की सभा का। सुनते रहिए FM 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
3: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए पेश है कार्यक्रम भारत भारती। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम भारत भारती में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं अजय सिंह टिपानिया का गायन, उसके बाद क्लेरनेट वादन की प्रस्तुति दी जाएगी डॉक्टर पंडित नरसिम्हा वड़ावाटी और साथियों द्वारा, और अंत में गायन प्रस्तुत किया जाएगा आरती अंकलीकर टिकेकर का। तो आइए आपको सबसे पहले सुनवाते हैं अजय सिंह टिपानिया का गायन।

इस तरह से प्रेम की प्यास जब लगती है तो हम उस अमी का पान करें। एक भजन में सद्गुरु कबीर इस तरह से कहते हैं।

सब आप लोगों के एक मोहब्बत से हम बजाए, आप लोग प्यार से सुन रहे हैं, हमारे अंदर थोड़ा

0: अभियात डॉक्टर पंडित नरसिम्हा वड़ावाटी तथा साथी बेंगलोर द्वारा क्लेरिनेट वादन का आनंद ले रहे थे।
1: आइए आज की सभा के दूसरे क्षण में हम कुछ क्षणों बाद आनंद लें। कबीर गायन की एक और शैली का और हमारे बीच कुछ ही क्षणों में मंच पर हाजिर होंगी विश्वख्याति प्राप्त शास्त्रीय गायिका सुश्री आरती अंकलीकर।

तो श्रोताओं, अजय सिंह टिपानिया के गायन के बाद अब बारी है क्लेरनेट वादन की, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं डॉक्टर पंडित नरसिम्हा वड़ावाटी और उनके साथ साथी कलाकार।

तो श्रोताओं, ये था कार्यक्रम भारत भारती। अब दीजिए इजाजत इस कार्यक्रम से। नमस्कार, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: श्रोताओं, रिटायरमेंट नौकरी की एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। इसी प्रकार सरकारी गीता के अनुसार जो नौकरी में भर्ती हुआ है तो उसका रिटायरमेंट भी निश्चित है। अब अगर मुलाजिम रिटायर होगा तो दो बातें होंगी, या तो उसे पेंशन की पात्रता होगी या नहीं होगी। अगर नहीं हुई तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर हुई तो इसे पाने के लिए उसे कितने पापड़ बेलने होंगे यह तो वह रिटायर होने के बाद ही जान पाएगा। यहां तक कि पेंशन चालू रहने के दौरान भी उसे बार बार अपने जिंदा होने का सबूत पेश करना पड़ेगा। जीते जागते आदमी से पूछा जाएगा कि साबित करो कि तुम जिंदा हो। और यह बात अलग है कि परलोकवासी का भी अगर लाइफ सर्टिफिकेट हो तो उसकी पेंशन नहीं रुकेगी। आज का हमारा नाटक इसी थीम पर आधारित है, पेंशन की टेंशन।
2: भाई साहब, यह पेंशन तो आपको नहीं मिल सकती।
3: नहीं मिल सकती? क्यों?
2: आपको अपने जिंदा होने का सबूत देना होगा।
3: जिंदा होने का सबूत? अरे आपके सामने वन पीस में खड़ा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, अपनी पेंशन मांग रहा हूँ, क्या इतना काफी नहीं है?
2: जी नहीं, वन पीस में तो क्या, अगर आप थ्री पीस में भी होते ना तो भी चलता, बशर्ते कोई सबूत होता आपके पास अपने जिंदा होने का।
3: तो आप ही बता दीजिए ना कि कैसे साबित करूँ कि मैं जिंदा हूँ।
2: कोई लेटेस्ट डॉक्यूमेंट दे दीजिए जो इस बात को साबित करे कि आप जिंदा।
3: जैसे
2: जैसे जैसे हाँ, किसी अस्पताल का कोई पर्चा जिसमें आपका नाम लिखा हो।
3: अस्पताल का पर्चा होगा तो जरूर, मगर घर पर ढूंढना पड़ेगा उसे।
2: तो ढूंढिए ना, जाइए, जाकर ले आइए। अगर पेंशन चाहिए तो ये तुच्छ पीड़ा तो आपको सहन करनी ही होगी।
3: मगर है वो 1.5 साल पुराना, चलेगा?
2: अजीब इंसान है आप। अरे 1.5 साल पुराना दस्तावेज चलता तो 3 महीने पहले के आपके सिग्नेचर ना चल जाते। जाने कैसे भर्ती हो गए थे सरकारी नौकरी में, इतना भी नहीं समझते।
3: अजीब आदमी है जी आप, एक सीनियर सिटीजन से बात करने की भी तमीज नहीं है आपको? सीट पर क्या बैठ गए, खुद को खुदा समझने लगे आप?
2: ओ भाई साहब, पेंशन लेने आए हैं तो पेंशन की टेंशन लीजिए, मुझे तमीज की कमीज ना पहनाइए। अब सीनियर सिटीजन हैं आप तो इसमें मेरा क्या कसूर? क्या साष्टांग दंडवत करूं आपको?
3: साष्टांग दंडवत करेंगे ये? अरे दो शब्द सभ्यता से तो बोल नहीं सकते। ये नहीं सोचते कि 4 दिन बाद इन्हें भी रिटायर होना है।
2: ओ बड़ो बाबा, भुनर भुनर मत करो, जो कहना है साफ साफ कहो, समझे?
3: नहीं नहीं श्रीमान जी, मेरा तो आपसे विनम्र निवेदन है कि कोई ऐसा उपाय हो जिससे मुझ गरीब का कुछ काम चल जाए तो कृपा करके हमें बताएं।
2: ये हुई ना सही बात। अरे उपाय एक तो क्या हजार हैं। एक 4 अंगुल का कागज ही तो चाहिए जिसमें आपका नाम लिखा हो और कोई ताजी तारीख पड़ी हो। अच्छा आप ये बताइए कि राशन कार्ड पर राशन लिया है आपने हाल में?
3: नहीं भैया, मैं तो कंट्रोल का राशन लेता ही नहीं हूँ।
2: अस्पताल में भर्ती नहीं हुए, राशन लेते नहीं? अरे कोई तो ऐसी हरकत हो आपकी जो जिंदा लोग करते हैं। आखिर कैसे साबित हो कि आप जिंदा हैं? अच्छा छोड़िए, ये बताइए कि बैंक से कोई विड्रॉल किया है आपने हाल में?
3: अरे कैसी बात करते हैं भाई आप। अरे बैंक से विड्रॉल करना होता तो पेंशन ही ना निकाल लेता।
2: बात तो सही है आपकी भाई साहब, फिर तो आप मुझे माफी कीजिए, मैं कुछ नहीं कर सकता। रूल यानी रूल, मैं उस आदमी को पेंशन नहीं दे सकता जिसके जिंदा होने की कोई गारंटी नहीं।
3: फिर वही बात। अरे कागज कहिए जनाब, कागज। आपको जिंदा होने का कागज चाहिए? मेरे जिंदा होने की गारंटी तो मैं खुद हूं। अरे मेडिकल साइंस भी इस बात को मानता है कि जो आदमी सांस ले रहा है, जिसके दिल की धड़कन चल रही है, जिसका दिमाग काम कर रहा है, वो जिंदा है।
2: तो जाकर ले आइए इस बात का सबूत उससे।
3: किससे?
2: मेडिकल साइंस से। जाइए किसी अस्पताल से एक सर्टिफिकेट ले आइए कि आपकी सांस चल रही है, आपका दिल धड़क रहा है, आपका दिमाग काम कर रहा है। मेडिकल ऑफिसर के सील सिग्नेचर करवा लीजिए। गॉड प्रॉमिस, 5 मिनट के अंदर आपकी पेंशन दे दूंगा।
3: हंसी खेल है क्या? क्या है? अरे वो डॉक्टर मुझे पागल समझेगा जिससे मैं कहूंगा कि ये सब बातें मुझे सर्टिफाई करके दो।
2: तो ठीक है, फिर पागल खाने से ही लिखवा लाइए आप। अरे कुछ तो खिलाकर कागज का पेट भरिए।
3: क्या भाई साहब, अरे यार मेरी पेंशन अटकी हुई है और आपको दिल लगी सूझ रही है।
2: अच्छा छोड़िए, ये बताइए कि हाल ही में ट्रैफिक पुलिस ने आपका चालान वगैरह तो बनाया होगा?
3: नहीं बनाया है। अब मैं क्या आपको रेस ड्राइविंग करने वाला दिखता हूँ? अरे मैं एक सभ्य नागरिक हूँ देश का, गाड़ी ऐसे नहीं चलाता कि ट्रैफिक पुलिस मेरा चालान बनाए। हे भगवान, 2-4 महीने के लिए तीर्थ यात्रा पर क्या चला गया, सरकार ने मुझे मरा हुआ ही मान लिया।
2: ओहो, हाँ, अच्छा याद दिलाया आपने। एक काम करिए आप, रेलवे रिजर्वेशन का एक टिकट लगा दीजिए, आपके लिए हम इसी से काम चला लेंगे।
3: मगर वो तो नहीं है।
2: वो क्यों?
3: क्योंकि मैं जनरल डिब्बे में गया था।
2: कैसे आदमी हैं आप भाई साहब, हैं? ची ची ची ची ची। जनरल डिब्बे में ही तीर्थ यात्रा कर गया है।
3: अरे तो इसमें क्या गलत किया मैंने? अरे गांधी जी भी तो 3rd क्लास में ही चला करते थे। आम आदमी हूँ, आम जनता के साथ सफर करता हूँ, ये कोई गुनाह तो नहीं है?
2: हाँ गुनाह तो नहीं, मगर पेंशन भी नहीं मिल सकती इसके बिना आपको।
3: काय सता रहे पेंशन बाबू इस बुड्ढे को। अरे पेंशन नहीं मिलेगी तो मैं खाऊंगा क्या?
2: खाना जिंदा आदमी खाता है बाबा, मरा आदमी नहीं।
3: यही बात तो आपको समझनी है भैया, जब मैं खाना खाने की चिंता कर रहा हूँ तो मैं जिंदा ही होऊंगा, मरा आदमी थोड़े ही खाने की फिक्र करता है।
2: मेरे समझने से तो काम नहीं चलेगा ना बाबा, मुझे तो कागज चाहिए रिकॉर्ड में लगाने के लिए। अच्छा चलिए, ये तो बताइए कि अभी म्युनिसिपल इलेक्शन में आपने वोट तो डाला ही होगा ना?
3: कैसे डालता भैया, बताया तो कि मैं यहाँ नहीं था यार, तीरथ पर गया हुआ था।
2: तीरथ पर गया था। जाइए भगवान से ही लिखवा लाइए कि आप तीरथ पर गए थे, मान लूंगा मैं।
3: काय काय मजबूर की हंसी उड़ा रहे हो भैया, कहीं भगवान भी लिखा पढ़ी करते?
2: जानता हूँ भगवान लिखा पढ़ी नहीं करते, मगर उनके एजेंट तो करते हैं। अरे पंडे पुरोहित की यहाँ हाजिरी लगाई होगी आपने तीर्थ यात्रा के दौरान, उनके बही खाते में नाम लिखवाया होगा, उनकी बही की ही सर्टिफाइड कॉपी ले आइए, हम उसी से मान लेंगे कि आप जिंदा हैं अभी।
3: अरे यार लेकिन मैंने तो सारा काम डायरेक्ट किया है, भगवान के एजेंटों से तो दूर ही रहा हूँ मैं।
2: एक काम कीजिए फिर, पेंशन भी डायरेक्ट सरकार से ही ले लीजिए।
3: अरे यार
2: काहे बीच में मुझ कर्मचारी की जान ले रहे हैं आप, हैं? पता चला आपको पेंशन देने के चक्कर में मेरी पेंशन बंद हो गई है? अरे ये नहीं वो नहीं, धरती पर कोई जिंदा इंसान ऐसा होता है कि एक आध महीने में कहीं किसी कागज पर उसका नाम ही ना लिखा जाए?
3: अरे भाई क्यों भरमा रहे हो यार मुझे, पेंशन के बिना मेरा गुजारा कैसे चलेगा यार?
2: देखिए सीनियर सिटीजन जी, देखिए मैं ठहरा सरकारी आदमी, कायदे कानून के हिसाब से चलता हूँ। माना कि मुझे आपसे हमदर्दी है, मगर मुझे भी तो अपनी नौकरी प्यारी है। अरे इतने दिनों में आपने एक भी ऐसा काम नहीं किया जो जिंदा लोग करते हैं, तो मैं क्या कर सकता हूँ? अरे कुछ नहीं तो किसी से मारपीट ही कर लिए होते, एक आध रात हवालात में काटे होते, कम से कम थाने से ही कोई रिकॉर्ड मिल जाता।
3: अरे काय मेरी भद्द बना रहे हो भैया, 65 साल का ये आदमी आपको मारपीट करने वाला दिखता है। अरे जवानी में भी कभी नहीं की ऐसी हरकत हमने, और आप कहते हो कि इस बुढ़ापे में
2: फिर तो भाई साहब आप मेरा पीछा छोड़ दो, अकेले आपका ही काम नहीं करना है मुझे। चलिए हटिए हटिए, मुझे दूसरों का काम करना है, चलिए हटिए।
3: मगर मैं अपनी पेंशन लिए बगैर नहीं जाऊंगा आज, कह देता हूँ आपसे, चाहे इसके लिए मुझे।
2: अच्छा, वाह वाह वाह वाह, बुढ़ापे में ये जोश, क्या करेंगे आप? चलिए चलिए, नहीं देता आपकी पेंशन, जो करते बने कर लीजिए।
3: ओ साहब, इस बुड्ढे के सब्र का इम्तिहान मत लीजिए, कहीं ऐसा ना हो जाए।
2: अरे जाइए जाइए जनाब जाइए, किसी और को आंखें दिखलाइए, अपन नहीं डरने वाले इन लाल लाल आंखों से। हाथ पांव में दम नहीं और हम किसी से कम नहीं। च्यवनप्राश खाया करो, ठीक से खड़ा तो हुआ नहीं जाता और डरा रहे ऐसे। चल चल फुट, बात सुन ली तेरी बड़बड़, चल फुट फुट फुट।
3: फूटने को बोलता है, पेंशन नहीं देता तो ले।
2: लाठी से कमर तोड़ दी मेरी। आराम कोई है? अरे पुलिस को बुलाओ पुलिस।
1: भगवान ना करे किसी को डॉक्टर वकील या पुलिस के पास जाना पड़े। इन तीनों जगहों पर इंसान अपनी मर्जी से नहीं जाता, लेकिन एक बार अगर पहुंच गया तो पीछा छुड़ाना जरूर मुश्किल हो जाता है। ऐसा ही कुछ हुआ हमारे इन दोनों पात्रों के साथ भी।
2: दरोगा जी देखिए, इस बुड्ढे ने जबरदस्ती मुझसे पेंशन लेने की कोशिश की। मैंने कहा कि लाइफ सर्टिफिकेट ले आओ, तो बोला नहीं लाऊंगा, जो करते बने कर लो। मैंने रोका तो गालियां देने लगा, देखिए देखिए डंडा खींच कर मारा मुझे। अरे गिरफ्तार कर लीजिए, बहुत खतरनाक बुड्ढा है।
3: अरे कोई गाली वाली नहीं दिए दरोगा साहब। हाँ छड़ी जरूर उठाई है इस पर, वो भी इसलिए कि इसने पेंशन देने से मना कर दिया था। कहने लगा जिंदा होने का सबूत लेके आओ। हाँ, मैंने कहा तुम्हारे सामने अच्छा भला खड़ा हूँ, क्या इतना सबूत काफी नहीं है? तो बोला मैं नहीं मानता इस सबूत को। तो ठीक है, जब मैं जिंदा ही नहीं हूँ तो मैंने कोई जुर्म भी कैसे किया है? किस कानून में लिखा है कि मुर्दे को गिरफ्तार करो? जाइए पहले ये साबित कीजिए कि मैं जिंदा हूँ, फिर गिरफ्तार करिएगा मुझे।
2: सुन रहे हैं दरोगा जी, आपके सामने खड़ा होकर बकर बकर कर रहा है, आपसे बहस कर रहा है दरोगा जी, आपको कानून सिखा रहा है और कह रहा है कि पहले ये साबित कीजिए कि ये जिंदा है।
4: चुप, एकदम चुप। तुम दोनों ने मेरा दिमाग गरम कर दिया। अरे ऐसा टिपिकल केस मैंने जिंदगी में नहीं देखा, और तो मैं सीनियर सिटीजन, ये सरकारी आदमी के काम में बाधा पहुंचाते हो, गाली बकते हो, मारपीट करते हो। IPC की धारा 294, 332, 33, 34, 353 की धाराएं जब लगाऊंगा ना तुम्हारे ऊपर, तो सारी जवानी ठंडी हो जाएगी तुम्हारी।
3: अरे ऐसे कैसे लगाएंगे जी, पहले साबित तो कीजिए कि मैं जिंदा हूँ, हैं? कि कोर्ट में बताएंगे कि दयाराम नाम के भूत ने ये सब किया है जी।
4: ये तुम साबित करना है कि तुम जिंदा नहीं हो। अरे भूत प्रेत पिशाच हो क्या हो, मैं तो तुम्हें जिंदा मानकर तुम्हारी चार्जशीट भर दूंगा, दैट्स इट।
3: अच्छा ऐसे कैसे दैट्स इट? थोड़ा बहुत कानून मैं भी जानता हूँ, जुर्म साबित करना पुलिस का काम है, ना कि मुलजिम का, कि वो खुद को बेगुनाह साबित करे। आप साबित कीजिए कि मैं गुनाहगार हूँ, मगर इसके पहले आपको मुझे जिंदा तो साबित करना पड़ेगा।
2: इस बुड्ढे की बातचीत में मत आइए दरोगा जी, मैं कंप्लेंट लिखवा रहा हूँ कि इसने मुझे गाली दी और मारा। अरे गाली गलौच और मारपीट कोई जिंदा इंसान ही कर सकता है, ना कि कोई मुर्दा। मैं गवाह हूं कि ये जिंदा है, आप पकड़ लीजिए इसको।
3: वाह वाह वाह वाह, सुना आपने दरोगा जी, ये पेंशन बाबू मुझे जिंदा मान रहा है, मगर इसके बाद भी पेंशन देने को तैयार नहीं है, कहता है कि साबित करो कि मैं जिंदा हूँ। अरे गिरफ्तार तो इसे कीजिए, एक सीनियर सिटीजन को प्रताड़ित करने के जुर्म में, दुर्व्यवहार करने के जुर्म में, गाली गलौज करने के जुर्म में, धक्का देकर पब्लिक प्लेस से बाहर निकालने के जुर्म में। इसे तो जिंदा भी साबित करने की जरूरत नहीं है, ऑफिस में हाजिरी लगाई होगी इसने, है ना? इतना ही काफी है।
4: हे भगवान, कहाँ फंस गया मैं? मुर्दा जिंदा है, लेकिन जो जिंदा है वो जिंदा नहीं।
3: वही तो, जो जिंदा है उसे जिंदा होने का सबूत पेश करने को कहा जा रहा है। ये देखिए आप, लेकिन लॉकअप में डालने के लिए जिंदा होना जरूरी नहीं है। अंधेर गर्दी मचा रखी है, हैं?
4: बस बस, अब मेरा सिर दर्द से फटा जा रहा है और अब किसी को नहीं छोड़ूंगा। मैं दोनों पार्टियों के खिलाफ केस बनाऊंगा और ज्यादा बड़बड़ की तो पुलिस ऑफिसर को ऑन ड्यूटी मेंटल टॉर्चर देने का एक कस और बनाऊंगा। सब लड़ाई झगड़ा भूल जाओगे। चलो थाने तुम दोनों, चलो।
5: अरे मुझे छोड़ दीजिए दरोगा जी, छोड़ दीजिए। अरे मेरी नौकरी चली जाएगी, इस बुड्ढे का क्या, मजे से सरकारी ने मेहमानी करेगा, मगर मैं तो बाल बच्चे वाला आदमी हूँ।
3: हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। अब तो मैं भी अंदर और तू भी अंदर। ना मुझे पेंशन की जरूरत और ना तुझे तनख्वाह की जरूरत। सरकारी खाना, सरकारी रहना, सरकारी इलाज, चारों ओर कमांडो। अब तो ऐसी ऐसे।
5: क्या बक रहा है बुड्ढे तू, हैं? तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? अरे जेल जा रहे हैं हम दोनों। जेल का मतलब जानता भी है तू?
3: नहीं जानता तो जान जाऊंगा। अरे ये तो अपनी जेल है, अपनी, भारत सरकार की। गांधी जी तो अंग्रेजों की जेल में रहे थे, हैं? वो भी सत्य के लिए गए थे और मैं भी सत्य के लिए ही जा रहा हूँ। बढ़िया है।
5: अरे ये बात बात में तू गांधी जी को क्यों बीच में ले आता है भाई? आपस का मामला है, मिलकर निपटा लेते हैं। चल भाई, मैं अपनी कंप्लेंट वापस ले लेता हूँ, अब तो खुश।
4: ओए, क्या फालतू समझ रखा है पुलिस को? जब मर्जी हुई तो कंप्लेंट कर दी और जब मर्जी हुई तो कंप्लेंट वापस। है पुलिस तो जैसे तुम्हारे बाप की नौकर है, जैसे चाहो वैसे नचाओ। कोई कंप्लेंट वम्प्लेंट वापस नहीं होगी। 24 घंटे हवालात में रहोगे, इसके बाद तुम दोनों को कल कोर्ट में पेश किया जाएगा और जो कुछ बोलना है वहीं जाके बोलना।
5: अरे आप भी तो कुछ बोलिए अंकल जी, अपनी तो वाट लग जाएगी।
3: अंकल जी, अरे वाह वाह अंकल जी। वारे वक्त, ये बुड्ढा अब अंकल जी हो गया। अरे बात तो तेरी लगेगी पेंशन बाबू। नहीं, अपने राम को कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे घर में रहे चाहे जेल में। दो वक्त की रोटी कपड़े से मतलब है ना, आगे कोई रोने वाला है ना पीछे।
5: हे राम, कहाँ फंस गया रे? हमें छोड़ दीजिए दरोगा जी, दरोगा जी हमें छोड़ दीजिए। हम अपना मामला आपस में ही सुलटा लेंगे। देखिए देखिए, मेरी नौकरी चली जाएगी। अरे आप भी तो नौकरी वाले हैं, कुछ तो ख्याल कीजिए।
3: बहुत खूब, बहुत खूब। अरे मैं भी तो कभी नौकरी वाला था और कल मेरी तरह तुम भी पेंशनर बनोगे, ये सब नहीं सोचा। पेंशन देने से मना कर दिया, बोला बाहर निकलो, ये नहीं सोचा कि पेंशन के बिना ये बुड्ढा खाएगा क्या।
5: अरे अब जाने भी दो भाई साहब, भाई साहब गुस्सा गुस्सा जो है ना, थूक दो एकदम, थूक दो आप तो। अरे दरोगा जी, दरोगा जी, दरोगा जी, अरे सुनिए तो, दयाराम जी जो है ना मान गए, अब तो हमें छोड़ दीजिए।
4: देखो भाई, थाने का मामला है, कोई ना कोई कार्रवाई तो करनी ही होगी। अब नहीं तो कल तुम ही लोग शिकायत करोगे मेरे खिलाफ कि पुलिस बेकसूर को पकड़ ले गई थी।
5: अरे नहीं दरोगा जी, हम वादा करते हैं हम कोई शिकायत विकायत नहीं करेंगे। अरे मैं तो याद भी नहीं रखूंगा कि मैं कभी थाने गया था, मेरा भरोसा कीजिए।
4: थाने में आने के बाद सब ऐसे ही बोलते हैं, और मगर छूटने के बाद SP DSP से लेकर DGP तक को शिकायत करते हैं। ना भाई ना, देखो तुम्हारी नौकरी की मैं उतनी ही हिफाजत कर सकता हूँ जितने में हमारी नौकरी खतरे में ना आए। तो 107-16 तो मुझे लगानी पड़ेगी दादा।
5: है 107-16? ये तो बहुत ज्यादा है। अरे जरा इकाई दहाई में सही कोई धारा लगा दिए ना, आप तो पूरे सैकड़े में पहुंच गए डायरेक्ट।
4: अबे तो धारा क्या, तुम्हारे बाप की डायरी में लिखी है, जो जैसे चाहे काट छाट कर लो, और ज्यादा बड़बड़ की तो 151 और लगा दूंगा। प्रेस DM कोर्ट से जमानत करवाना।
5: देखिए मुझे ये पुलिसिया भाषा समझ में नहीं आती साहब, आप तो किसी तरह मेरी नौकरी बचा लीजिए।
4: इसीलिए तो कह रहा हूँ पेंशन बाबू के, ज्यादा पकाओ मत मुझे। सबसे नरम वाली धारा है 107-16, इसमें कोई जेल वेल भी नहीं होती है। ये तो एक बांड भर है कि इसमें आगे तुम दोनों कोई झगड़ा नहीं करोगे, और अगर किया तो बांड कैंसिल और तुम दोनों जेल।
3: अच्छा तो है मेरे लिए, फिर तो हमें इसकी नकल भी मिल जाएगी और ये साबित हो जाएगा कि मैं जिंदा हूँ। थाने का पक्का कागज, फिर तो पेंशन देने में कोई एतराज नहीं होगा ना बाबू साहब।
5: अरे माफ करो अंकल, मैं तो ऐसे ही मान रहा हूँ कि आप जिंदा हो। अरे काहे कि 107 और 207 करवा रहे हो मेरा। अजी माफ कर दो।
1: तो श्रोताओं, ये था आज का नाटक पेंशन की टेंशन, प्रस्तुति रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़, देश का चैनल, देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए पेश है देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी। अब दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज पर, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 MHz पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए पेश है कार्यक्रम भारत भारती। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम भारत भारती में हम आपको सुनवा रहे हैं पद्मजा विश्वरूप का विचित्र वीणा वादन। उसके बाद प्रस्तुति होगी गायन की, जिसे पेश करेंगे भैरू सिंह चौहान, और अंत में सुनिएगा गायन सुगंध देवी गंधर्व का। तो सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं विचित्र वीणा वादन, प्रस्तुति पद्मजा विश्वरूप की।
2: ट्रेडिशनल कंपोजिशन है शंकर सुत गणेश विघ्न विनाशन गौरी नंदन बुद्धि विधाता। इसके तीन पार्ट हैं, स्थाई, अंतरा और सांचारी। सेकंड पार्ट है मंगलदायक तुम हो कृपा सिंधु। शंकर सुत गणेश विघ्न विनाशन गौरी नंदन बुद्धि विधाता। एंड थर्ड पार्ट इज जय जय गणाधीश सुर नर पूधीश भक्तन के कीत करत हो आदेश। थैंक यू। प्रस्तुत है आपके सामने

0: इस गायन के बाद अंत में अब आपको सुनवाते हैं गायन सुगन देवी गंधर्व का।
1: कर्माबाई का भजन है, अपने भगवान कृष्ण को कैसे भोग लगाती है और भगवान कैसे उनकी बातों में आकर जो है भगवान उनके हाथ का जो है बना हुआ भोग खाते हैं।

जब बच्चा पैदा होता है तो बहुत खुशियाँ लेकर आता है परिवार को, माता पिता को, सभी को बहुत खुशियाँ होती है। फिर वो थोड़ा थोड़ा बड़ा होता है, फिर वो डगर डगर पन पन इधर से उधर दौड़ता है, तो पीछे पीछे अपने माता पिता भी दौड़ते हैं, पीछे पीछे उनके बहुत उनको दौड़ाता है, उनको हंसाता है, रुलाता है। लेकिन एक दिन एक ऐसा आता है जब वो अपनी डगर छोड़ के जाता है। कृपया शब्द के ऊपर ध्यान दीजिएगा।

मनोहर कृष्ण कन्हैया जमुना के तट पर विराजे हैं। छन मोर मुकुट पे तांबर सोहे कर में मुरलिया मुरलिया बाजे हैं। तिने तिने तिने तिने इतने में ही पधारी राधा राधा राधा आनंद गीत थे तानंद गीत थे दैत दैत दत रंग घबराई रही बल खाई रही कोई आव सके कोई आव सके तब हाथ छुड़ा कर बोली है वो छोड़ गगरिया छोड़ तब का

मुरलिया बाजे हैं, तिन तिन तिन तिन तिन स्नेह में ही पधारी राधा राधा राधा राधा। आन दिखित थई तान दिखित थई धत धत धत रंग थई घबराई रही बलकाई रही, कोई आव सकी कोई आव सकी, तब हाथ छुड़ा कर बोली है वो छोड़ गगरिया छोड़।

तो श्रोताओं, ये था आज का कार्यक्रम भारत भारती। अब दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: प्रेम पत्र, एक ऐसा शब्द जिसे सुनकर मन में मीठी तरंगे दौड़ पड़ती हैं। ऐसा लगता है मानो सरगम के सातों सुर मन की वीणा पर एक साथ झनक उठे हों, जैसे बसंत ऋतु की कोयल ने तड़प कर कुहू भरी हो, जैसे पपीहे ने बादलों को आवाज दी हो, और जैसे सूखी धरती पर मेघ बरस पड़े हों। होता तो यह कागज का टुकड़ा ही है, पर इसे खोलते हुए हाथ कांपने लगते हैं। हर एक अक्षर आवाहन सा करता हुआ लगता है। न जाने किस लोक की महक समेटे रहता है यह कागज का टुकड़ा। इस दुनिया के किसी भी सुगंध में वो पागलपन कहां, वो मादकता कहां। हम में से बहुतेरे लोगों ने अपनी किशोर अवस्था में यह पागलपन अवश्य किया होगा, और क्यों ना करें। अजी कच्ची उम्र का यह विहल आनंद जीवन में दोबारा भला कहां मिलने वाला है। पर कुछ ऐसे भोले सनम भी होते हैं जिन्हें प्रेम पत्र लिखना उनके लिए पहाड़ तोड़ने से भी ज्यादा मुश्किल काम होता है। वो गणित के कठिन से कठिन सवालों को चुटकियों में हल कर लेते हैं, पर दिल के कागज पर प्रेम की यह पहेली हल करने में मात खा जाते हैं। तो लीजिए श्रोताओं, प्रस्तुत है एक ऐसे ही भोले सनम की दास्तान, जो प्रेम पत्र लिखने की ऐसी कोशिश करता है कि उसमें वो फंसता ही चला जाता है।

0: क्या बात है, आज मेम साहब का मिजाज बड़ा आशिकाना हो रहा है।
1: क्यों, क्या मैं बूढ़ी हो गई हूँ?
0: अरे नहीं, अभी तो हजार जाने तुम पे कुर्बान। एक बार बंद समर कर निकल जाओ कहीं ना, तो मनचलों के सीने पे सांप लौट जाए। और क्या?
1: नहीं नहीं, कुछ और कहो ना मेरी तारीफ में।
0: क्या सूझी थी मुझे जो मैंने आग में हाथ डाल।
1: क्या कहा, जरा जोर से कहना तो।
0: अरे नहीं नहीं, मैं तो ये कह रहा था कि अगर मांग पे सिंदूर न भरो तुम, तो न जाने कितने लड़के तुम्हें प्रेम पत्र लिखने के लिए कलम में स्याही के बजाय अपना लहू डालेंगे।
1: सच? मुझे विश्वास तो नहीं हो रहा, पर ये बताओ जी, आज तक तुमने क्यों नहीं लिखा मुझे कोई प्रेम पत्र?
0: क्या प्रेम पत्र? मैं? अरे जिंदगी में कभी जो काम नहीं किया वो काम मैं अब।
1: जिंदगी में शादी भी तो नहीं किया थे तुम? हर काम इंसान कभी ना कभी पहली बार ही करता है।
0: हाँ?
1: और सच पूछो तो ऐसे इंसान से लव लेटर पाने का मजा ही कुछ और है। उसके लव लेटर की भला क्या अहमियत, जो दुकान के कैश मेमो की तरह हमेशा ही काटता रहता है। हाँ जी, अब तो तुम्हें मेरे लिए एक प्रेम पत्र लिखना ही होगा। और वो जो खूबियां अभी अभी तुमने बताई थी ना मेरी, उनकी लिस्ट और बढ़ानी होगी।
0: मगर मेम साहब, ऐसे कैसे लिखा जा सकता है प्रेम पत्र? इसके लिए जुदाई होना चाहिए, तड़प होनी चाहिए, मन में कसक होनी चाहिए, पर आप तो हर वक्त मेरी नजरों के सामने रहती हैं। ऐसे में वो सेंटीमेंट्स कहां से लाऊं मैं?
1: तो ठीक है जी, उसका भी इंतजाम किए देती हूँ मैं। रिंकू को लेकर मायके चली जाती हूँ।
0: क्या?
1: और क्या, फिर जब आप प्रेम पत्र लिखकर गुहार लगाएंगे ना, तभी लौटूंगी मैं। पपीहे की तरह पीऊ पीऊ करना, तभी झलक दिखलाएगी आपकी ये सावन की घटा।
0: अरे अरे, ऐसा जुल्म न करिए श्रीमती जी। लीजिए, मैं आपके जाए बिना ही आपको प्रेम पत्र लिख देता हूँ। लिख देता हूँ कि मुझे आपसे बेहद बेइंतहा मोहब्बत है। हाँ, मुझे मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत है। और ये लीजिए मेरी सिग्नेचर, नीरज वशिष्ठ। बिल्कुल पक्की रसीद है ये। अब तो मैटर सॉल्व हो गया ना।
1: वाह रे मेरे कारोबारी सनम, और वाह रे आपका प्रेम पत्र, जैसे किसी कंपनी का वारंटी कार्ड भर रहे हो। अरे दिल की डीलिंग बिजनेस की तरह नहीं की जाती है। जब आप सच्चे दिल से पूरी फीलिंग के साथ लिखेंगे ना, तभी ये कस्टमर आपकी बात पर यकीन करेगा। और ये फीलिंग मैं आपको देकर ही मानूंगी। अरे मैके की जर्नी अब मेरी फाइनल है। कोई हाई कोर्ट, कोई सुप्रीम कोर्ट इसमें अब दखल नहीं कर सकता है।
0: हे भगवान, आज सुबह सुबह किस गलत गली में घुस गया। त्रिया हट ने तो दशरथ की भी मिट्टी पलीत कर दी थी यार। त्राहिमाम, त्राहिमाम प्रभु, इस मुसीबत से बाहर निकालो।
2: तो श्रोताओं, इस तरह से नीरज की धर्म पत्नी रितु त्रिया हट कर बैठती है कि उसका पति उसे प्रेम पत्र लिखे। शादी के 5 साल गुजर चुके हैं। पहाड़ी झरने की तरह गरजता प्यार तूफानी दौर से गुजर चुका है, और अब तो नदी सागर में समा चुकी है, जहां का पानी शांत व ठहरा हुआ है। रितु इस पानी को पहाड़ पर चढ़ाना चाहती है। नीरज की हालत खराब है, रितु उलाहने देती है। नीरज धीरज का परिचय देता है। एक तरफ तलवार थी तो दूसरी तरफ ढाल। अब सुनिए आगे क्या होता है उन दोनों की दास्तान।
1: सुनो जी, मम्मी का फोन आया है।
0: क्या?
1: उनका बीपी है ना, बहुत ज्यादा बढ़ गया है।
0: अरे,
1: बोली है कि जल्दी आ जाओ।
0: क्या यार, अभी हाल तक तो सब ठीक था, और अब यकायक
1: ये। अरे यकायक ही तो सब होता है पति देव। अब देखो, यकायक ही मुझे मायके भी जाना पड़ेगा, पर मेरे पीछे मेरी उस ख्वाहिश का ध्यान जरूर रखना पति देव। हाँ, नहीं तो अब मायका ही होगा मेरा परमानेंट ठिकाना। फिर ना कहना कि
0: नहीं, ऐसा जुल्म ना करो मेरी जान मुझ पर। आपके बिना तो मुझे एक पल भी पहाड़ लगता है यार।
1: को।
0: आप कहती हैं कि
1: डिसीजन फाइनल है, जाना तो होगा ही, पर वापसी आप पर डिपेंड करती है।
0: कैसे?
1: जितनी जल्दी आपका प्रेम पत्र मुझे मिलेगा उतनी ही जल्दी मेरी रवानगी डलेगी वहाँ से।
0: क्या टेलीफोन से काम नहीं चलेगा?
1: हरगिज नहीं, रिटर्न एविडेंस वर्बल से ज्यादा पावरफुल होता है।
0: एसएमएस?
1: बिल्कुल नहीं, मुझे डिटेल्ड ब्यौरा चाहिए। मेरे बिना कैसा लगा तुम्हें, कैसे तुम्हारे दिन गुजरे, कैसी रातें गुजरी, कैसी नींद आई और कितना याद किया तुमने मुझे। तुम्हारे पूरे एहसास चाहिए मुझे, मेरी यही वापसी की टिकट होंगे, समझे?
0: इतना कुछ लिखना होगा प्रेम पत्र में? ब्योरे वार दास्तान, वेरी डिफिकल्ट, हॉरिबल।
1: ताजमहल बनवाने से ज्यादा तो मुश्किल नहीं है।
0: ताजमहल कोई शाहजहां ने अपने हाथों से थोड़े ही बनाया था यार, बादशाह सलामत थे, वो हुक्म दे दिया और बन गया ताजमहल। तुम कहो तो मैं भी किसी एक्सपर्ट से लेटर।
1: हे राम, कैसा जमाना आ गया है अब, प्रेम पत्र भी लिखवाने के लिए लोग एक्सपर्ट के पास जाना चाहते हैं। शेरो शायरी तो फीस चुकाकर मिल ही जाती है, और अब ये लव लेटर भी। वाह जी वाह। पर सुनो जी, मैं बता देती हूँ, कोई भी चीटिंग नहीं चलेगी इस मामले में। अगर ब्लैक लिस्टेड हो गए ना आप, तो टेंडर भी भरने को नहीं मिलेगा, काम पूरा करने की बात ही छोड़िए। सुनो जी, अपना ख्याल रखना। और हाँ, सुबह जल्दी उठकर घूमने जरूर जाना, ताजी हवा खाना, पर नजर नीचे रखना। हाँ, और सुनो, नौकरानी को मैंने मना कर दिया है, जवान जहान है, क्या ठिकाना उसका।
0: क्या? अब घर का झाड़ू पोछा भी मैं करूँगा क्या, क्या, क्या, क्या?
1: अपनी इज्जत की हिफाजत करना अच्छे पति का धर्म है।
0: अरे यार, तुम्हारे अलावा मेरी इज्जत को भला और किससे खतरा हो सकता है। एक मिनट, ट्रेन आने का अनाउंसमेंट हो रहा है।
1: जा तो मैं रही हूँ जी, पर मुझे ना बड़ी रुलाई छूट रही है, मन कर रहा है कि उतर पड़ूं गाड़ी से। सच तुम्हारे बिना रहने का सोचकर ही जी घबराने लगता है।
0: अरे तो उतर पड़ो, इतना प्यार हमारी आंखों में उमड़ रहा है, इसके आगे भी प्रेम पत्र की जरूरत लगती है क्या तुम्हें?
1: नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, आज दिल से नहीं, दिमाग से काम लेने की जरूरत है। पक्का इरादा, कड़ा अनुशासन। रिंकू को भी मैं इसलिए साथ लेके जा रही हूँ जिससे तुम्हें तन्हाई शिद्दत से महसूस हो।
0: तुम औरतें तो यार इतनी दूर तक कैसे सोच लेती हो। मैं तो सोच रहा था कि मेरा भार हल्का करने के लिए तुम रिंकू।
1: हाँ, और क्या, अरे भार हल्का ही तो हो रहा है तुम्हारा भाई, अकेले जन का काम रहेगा, चटपट निपटा लेना तुम। और फिर तन्हा बैठकर लव लेटर लिखना, और जब वो लव लेटर पूरा हो जाए ना तो मुझे पोस्ट कर देना।
0: सफर में अपना ख्याल रखना, पहुंचते ही फोन करना।
3: पापा, बाय बाय, अपना ख्याल रखना।
1: गाड़ी तो छोड़ो, स्पीड बढ़ रही है, गाड़ी छोड़ो।
0: अरे बेटा, रिंकू मम्मी को तंग ना करना, जैसा आप कहेंगे वैसा ही करना।
1: बाय
3: बाय बाय।
2: रितु के जाने के बाद नीरज के एक दो दिन तो बड़ी मस्ती में गुजरे। जब चाहो खाओ, जब चाहो सो, जब चाहो उठो, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। रितु होती तो कहती, यह ना करो, यह ना खाओ, अब टीवी बंद कर दो, सो जाओ, सुबह जल्दी उठना है। कच्ची नींद में उठा देती और कहती, फ्रेश होकर टहलने निकलो। जिंदगी जैसे जेल मैनुअल पर चल रही थी, पर अब आजादी की हवा में सांस लेने का मौका मिला था। लेकिन नहीं, अजी अकेलेपन की आजादी डराने वाली थी। भला शमशान की शांति भी किसी को अच्छी लगती है? नीरज को आटे दाल का भाव याद आ रहा था। अब सुनिए आगे की दास्तान।
0: चाय की पत्ती कहाँ रखी है, पानी उबला जा रहा है। जानते बिना जान चीजें ना जाने कहाँ कर रखती है। आया आया भाई आया, तुम्हें भी यार अभी बजना था। हेलो, अच्छा अब जाके फोन करने की फुर्सत मिली मैम साहब को। अन्य भाग मेरे जो आपको मेरी याद आई। क्या शेर? नहीं नहीं सवा शेर कहिए जनाब। क्या क्या कह रही हैं? यही काबिलियत में लव लेटर लिखने में भी? अरे क्या यार, मेरी अग्नि परीक्षा क्यों ले रही हैं पत्नी जी? हैं? नहीं मैं पार ना कर पाऊंगा इसे। क्या कहती हैं? उसके बिना आप नहीं आएंगे, करना ही पड़ेगा। अरे यार, हम पतियों के लिए तो होम मिनिस्ट्री ही सुप्रीम कोर्ट है, कोई मर्सी अपील भी नहीं होती इसके फैसले पर। ओके ठीक है ठीक है, करता हूँ यार करता हूँ। अच्छा अच्छा ओके, बाय बाय बाय बाय।
2: रितु को गए हुए अभी कुछ ही दिन बीते थे। नीरज समझ चुका था कि उसकी मोहम सी रितु अब आयरन लेडी बन चुकी है, जिसकी निगाह अर्जुन की तरह अपने लक्ष्य पर थी, और वो लक्ष्य था प्रेम पत्र। प्रेम पत्र लिखना ही पड़ेगा, कोशिश करता है नीरज, और वो पूरा ब्योरा लिखने बैठ जाता है। आप भी सुनिए क्या लिखा उसने अपने प्रेम पत्र में।
0: मेरी प्राणेश्वरी, तुम्हें गए अभी 4 दिन ही हुए हैं। इन 4 दिनों में ही मुझे तुम्हारी कीमत पता लग गई। तुम्हारे रखे सामान किचन में मिलते ही नहीं थे, अब जाकर कुछ कुछ उनकी लोकेशन समझ में आने लगी है। कल की बात है, दाल फ्राई करते हुए मेरे चेहरे पर घी का छींटा पड़ गया। रोटियां नक्शों की तरह बनती हैं, फूलती भी नहीं, कच्ची रह जाती हैं। नतीजा ये होता है कि ठीक से पचती भी नहीं, खट्टी डकारें आती रहती हैं। हाँ, तुम्हारे पीछे एक बड़ा नुकसान हो गया। कल नमक ढूंढ रहा था तो अचार की भरनी गिर कर टूट गई। कितनी मेहनत से डाला था तुमने। अदरक तुमने फ्रिज में ऐसे रखे थे जैसे कोई लॉकर में ब्लैक मनी रखता है, और अंत में इनकम टैक्स वालों की तरह रेड करके निकालना पड़ा मुझे। गैस का सिलेंडर खत्म हो गया है, इसलिए कोने वाली होटल से एक खाना मुकर्रर कर दिया है। दुआ करना सेहत सलामत रहे। सब्जी वालों को पता नहीं कैसे टैकल करती थी तुम, मुझे तो सब दिन दहाड़े लूट लेते हैं। तुम होती तो ऐसा ना हो। छत पर कपड़े फैलाए थे, क्लिप लगाना भूल गया था, सब उड़ गए। सच, तुम्हारे बिना समझ में आता है कि बिन घर नहीं घर भूत का डेरा। अरे हाँ, तुम्हारी मम्मी का क्या हाल है? अब तो उनका बीपी नॉर्मल होगा। रिंकू शैतानी तो नहीं करती? हाँ, तो ये रहा तुम्हारा रिटर्न टिकट। तुम्हारी शर्त पूरी हो चुकी है, अब लौट आओ। तुम्हारा पत्नी पलायन पति।
2: कुछ ही दिनों के बाद नीरज को अपने प्रेम पत्र का जवाब मिल गया। आंखों में खुशी और दिल में उत्साह था। इकलौती पत्नी का पहला पहला पत्र था। खोल कर पढ़ा उसने।
1: वाह रे मेरे भोले सनम, आपके लव लेटर ने तो बड़ा ही मायूस किया, वादा वफा न रहा। ये आपने लव लेटर लिखा है कि डायरी? मैंने तो दिल का हाल बयान करने के लिए लिखा था, और आपने गृहस्थी का हाल बयान कर दिया। ये लव लेटर नहीं, ये रोज नामचा है। क्या मेरी कीमत बस इतनी ही है कि मैं आपकी गृहस्थी चलाती रहूं? सोचा था कि जुदाई में आप मजनू बन जाएंगे, पर आप तो नहीं। नहीं नहीं, ये रिटर्न टिकट वैलिड नहीं है। इसके सहारे सफर करना बेटिकट सफर करने जैसा होगा। एक बार आप फिर कोशिश कीजिए, मम्मी का बीपी पहले भी ठीक था, हाँ अब जरूर बढ़ गया है। सोचती हैं कि मैं लड़कर आई हूँ आपसे। आप सेहत का ख्याल रखिएगा और इज्जत का भी। आपके लव लेटर के इंतजार में, आपकी रितु।
2: प्रेम पत्र को पढ़कर के नीरज की हवा खराब हो गई। जिसे ब्रह्मास्त्र समझकर चलाया था वो तो लकड़ी का तीर निकला। अब क्या करे, वह इस कला में माहिर न था। सोचा क्यों ना अपने दोस्त अशोक की मदद ली जाए। आखिर दोस्त वही होता है ना जो मुसीबत में काम आए। तो नीरज पहुंच गया अशोक के घर उससे सलाह लेने।
4: कौन? अरे नीरज तू भाई, सुबह सुबह यहाँ का रास्ता कैसे भूल गए?
0: अरे यार भीतर तो आने थे पहले कि दरवाजे पर ही पूरा इंट्रोगेशन कर डालेगा।
4: आना आना बैठ। क्या लेगा तू? अरे श्यामा जरा दो कप चाय तो पिलाना गर्मा गर्म।
0: यार चाय वाय तो बनती रहेगी पर इस वक्त मैं बड़ी मुसीबत में हूँ।
4: क्या हो गया तुझे कि सांड को तूने लाल कपड़ा दिखा दिया जो जान बचा कर यहाँ भागा है?
0: अरे यार सांड से पीछा छुड़ाना तो फिर भी आसान है, पर ये प्रेम पत्र।
4: प्रेम पत्र यानी कि लव लेटर? वाह यार, किसकी मती मारी गई है जो तुझ जैसे शादीशुदा को लव लेटर लिखेगा?
0: भाई मती किसी और की नहीं, मेरी खराब हो रही है। समझ में नहीं आता कि कैसे प्रेम पत्र लिखूं मैं, जिस काम का कोई तजुर्बा ही नहीं है वो आखिर यार मैं।
4: वाह भाई वाह, तो ये बात है। भाभी कहाँ है जो तू?
0: वो मायके गई हुई है बाल गोपाल को लेकर।
4: और तू मौके का खूब फायदा उठा रहा है, प्रेम पत्र लिख रहा है?
0: नहीं नहीं,
4: अब जब प्रेम का पत्र है तो प्रेमिका भी तो होगी ना कहीं ना कहीं। बच्चू आने दे भाभी को, फिर देख मैं किस तरह।
5: लीजिए भाई साहब चाय लीजिए।
4: खैर ये ले, पहले चाय पी ले तू, फिर तुझे पानी पिलाता हूँ जीवा।
0: अरे कोई प्रेमिका प्रेमिका नहीं है यार, तेरी भाभी को ही प्रेमिका बनने का जुनून सवार हुआ है। हाँ वो बोलती है मुझे प्रेम पत्र लिखो तब लौटूंगी मैं। अब तू ही बता यार मैं क्या करूँ।
4: ओ तो ये बात है, पहले क्यों नहीं बताया?
0: तूने बताने कब दिया? एकदम से राशन पानी लेकर चढ़ बैठा मेरे ऊपर।
4: खैर खैर बोल दोस्त, क्या मदद मांगता है तू?
0: यार एक चिट्ठी लिखी थी उसे, जवाब में लिखती है फीलिंग के साथ लेटर लिखो तब लौटूंगी। अब तू ही बता के।
4: ठीक है ठीक है ठीक है, एक काम कर।
0: हाँ
4: एक हिट आइडिया देता हूँ तुझे।
0: बता यार।
4: कुछ फिल्में देख डाल
0: है?
4: कुछ शेर और शायरी की किताबें पढ़ डाल।
0: हाँ
4: किसी खूबसूरत लड़की का चेहरा रख आंखों के सामने।
0: हाँ।
4: क्योंकि जब खूबसूरती सामने होगी तो अल्फाज खुद ब खुद निकलने लगेंगे। बस तैयार हो जाएगा तेरा प्रेम पत्र।
0: थैंक यू यार, थैंक यू, थैंक्स। अब बाद में मिलता हूँ तुझसे।
4: पहले चाय तो खत्म कर ले भाई।
0: तो वो तू पी लेना। बाय एंड अगेन थैंक यू यार।
4: बाय बाय।
2: नीरज के हाथ फार्मूला लग चुका था, बस उसका इस्तेमाल करने की कला आनी चाहिए थी। अशोक का एक एक शब्द उसने पकड़ा। अशोक ने कहा था कि फिल्में देखो, शेर व शायरी की किताबें पढ़ो, खूबसूरत लड़की का चेहरा अपनी आंखों के सामने रखो। अब उसने कई फिल्में देख डाली। नई फिल्में उसको जमी नहीं तो उसने पुरानी फिल्मों का सहारा लिया। शेर व शायरी की किताबें भी कई पढ़ी, पर बेचारा खूबसूरत लड़की कहाँ से लाता? अकल काम नहीं कर रही थी। अंत में उसे एक उपाय सूझ गया। मार्केट जाकर के एक खूबसूरत सा पोस्टर उठा लाया और दीवार पर चस्पा कर दिया। साथ ही एक सुगंधित लेटर हेड भी ले आया, जिसके एक कोने पर दो दिल बने हुए थे और दिल में एक तीर चुभा हुआ था। सारी सामग्री इकट्ठी करके अब वो लव लेटर लिखता है। आइए आप भी सुने उसका लव लेटर।
0: ये पोस्टर भी लग गया। आप ठीक है, इसकी खूबसूरत आंखों में डूबकर, गुलाब की कली जैसे इसके होठों को देखकर, खिलती धूप सी इसकी मुस्कुराहट में नहाकर, हाँ अब लव लेटर लिखने की फीलिंग पैदा की जा सकती है भीतर से। एक काम और करता हूँ, बाजार से रंगीन लेटर पैड और खरीद कर लाता हूँ, वही जिस पर तीर से बिंधे हुए दिल बने रहते हैं, जिससे भीनी भीनी खुशबू आती रहती है, तब प्यार का एहसास और भी घना हो सकेगा। बिल्कुल कंफर्म रिटर्न टिकट बनेगा तब, कोई वेटिंग शेडिंग नहीं। अब हो गया प्रणेश्वरी तुम्हारा लव लेटर तैयार, एक बार पढ़ तो लूं कैसी फीलिंग आती है। प्रिय प्राणेश्वरी, तुम्हें जाने आरजू कहूं या आरजू ये जहां कहूं, तुम ही बता दो मुझे, मैं तुम्हें क्या कहूं। तुम्हारी झील सी गहरी आंखों में डूब जाने को मन करता है, जब तुम हंसती हो तो ऐसा लगता है मानो कोई कानों में मीठी मीठी मिश्री खोल रहा हो, जब तुम कुछ बोलती हो तो दिल में सितार बजता है, जब तुम हंसती हो तो तुम्हारे गाल में जो डिंपल पड़ता है वो तुम्हारी खूबसूरती में चार चांद लगा देता है। तुम्हारे बिना न नींद आती है न चैन आता है, दिल तुमसे मिलने को बेचैन होता है। चांद में तुम नजर आती हो, सितारों में तुम नजर आती हो, रोटी में तुम, खाने की हर बोटी में तुम। जिस शक्ल को भी देखता हूं बस तुम्हारी ही शक्ल दिखती है, जुदाई के पल अब बर्दाश्त नहीं होते हैं। अब तुम ही बताओ कब मिलेंगे हम, तुम्हारा और सिर्फ तुम्हारा प्राणों से भी प्यारा। आ रही है फीलिंग आ रही है, अब एक बार अशोक को और दिखला देता हूं। चलो
4: ये क्या लिखा है रे बुद्धू तूने, ऐसे भी कहीं प्रेम पत्र लिखते हैं
0: है?
4: अरे मैंने तुझे फिल्में देखने के लिए कहा था, फिल्मों के गाने और डायलॉग चुराने के लिए नहीं। औरतें फौरन ताड़ लेती हैं कि बनाया जा रहा है उन्हें, अरे नेचुरल एक्सप्रेशन होना चाहिए इसमें।
0: यार नेचुरल एक्सप्रेशन ही बनता मुझसे तो तेरी मदद क्यों लेता। मानता हूँ कि सब कुछ अननेचुरल है, पर करना ही पड़ेगा, नहीं तो तेरी भाभी का कोप भवन टूटने वाला नहीं है।
4: अच्छा यार एक काम कर तू,
0: बोल
4: अभी तो रहने ही दे तू उसे, मैं जरा फुर्सत निकाल कर आता हूँ तेरे पास, फिर मैं खुद बैठ कर लिखवा दूंगा तुझे। उसे भाभी को भेजना तू, पर ये जो एंटीसेंट लिखा है ना तूने,
0: हाँ।
4: इसे तो रहने ही दे भगवान के लिए। लव लेटर लिखे, अरे भाभी वापस तो नहीं आएगी, उल्टे तुझे नौटंकी की बात समझेगी।
0: आता हूँ भाई आता हूँ। कौन टपक पड़ा यार?
6: अरे तुम व्हाट अ ग्रेट सरप्राइज, अरे तुमने तो ठानी थी।
1: ठानी तो बहुत जमकर थी, पर क्या करूं पतिदेव, आप पर तरस आ गया। और सच कहूं तो आपके बिना रह ही नहीं सकती हूं मैं, सोचना चाहिए था मुझे। आप जैसे भोले भाले आदमी भला क्या जाने प्रेम पत्र लिखना। सतयुग के पुरुष ठहरे आप, आज के छोरों जैसी लंपटता आप में कहाँ है भला।
0: क्या बात है। आपने अपना प्रण तोड़ दिया इस नाचीज के लिए।
1: मैं तो प्राण दे दूं पति देव, प्रण तो कुछ भी नहीं आपके लिए।
0: थैंक गॉड।
2: नीरज मन ही मन खुश था, नीरज की मुसीबत टल चुकी थी, पत्नी बिना प्रेम पत्र के ही मान गई थी, खुशी खुशी दफ्तर गया। पर जब वापस लौटा तो घर में मातम फैला हुआ था, प्राण देने का वादा करने वाली पत्नी प्राण लेने पर उतारू थी, आंखों से प्रेम की धारा नहीं आंसुओं का सैलाब बह रहा था, मुख से शहद के भीगे शब्द नहीं बल्कि तोप के गोले चल रहे थे, आखिर ऐसा क्या हो गया था दिन भर में, आप भी सुनिए।
1: वाह रे मेरे भोले सनम, अच्छी वफा निभाई तुमने। तुम भी आखिर बाकियों की तरह ही निकले ना, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, मुंह में राम बगल में छुरी, रंगोसी और।
0: अरे काहे मुहावरेदार गालियां दे रही हो भाई, साफ साफ बताओ कि क्या हो गया। सुबह सुबह की स्वच्छ ऋतु अचानक इतनी गर्जन तर्जन क्यों कर रही है?
1: अरे अपनी किस्मत को रो रही हूँ और क्या।
0: क्या?
1: अरे क्या समझा था तुम्हें और तुम क्या निकले? कहते थे प्रेम पत्र लिखना ही नहीं आता, और यहाँ तो पूरा प्रेम सागर ही उमड़ा जा रहा है।
0: क्या कह रही हो?
1: ये देखो अपना कच्चा चिट्ठा, हाथ कंगन को आरसी क्या? अरे मेरे पीछे इश्क फरमा रहे थे तुम।
0: क्या कह रही हो?
1: सींग कटा कर बछड़े बन रहे थे तुम, तुम्हारा पाप तुम्हारे सामने है।
0: पाप? ओह तो ये बात है। अरे यार ये पाप नहीं, मेरा बेवकूफी नामा है बेगम। ये आपके लिए ही लिखा था मैंने, किसी और के लिए नहीं। आपके सर की कसम।
1: मेरे सर की कसम ना खाओ जी, खाना है तो उसी की कसम खाओ जो तुम्हारे सपनों की रानी है।
0: अरे तुम
1: उसकी इबारत पढ़ो ना, तुम खाने में तुम, खाने की हर बोटी में तुम। मुझे पागल समझा है क्या? 15 दिन बाद लौट कर आ रही हूँ मैं, और मैं मान लूं कि ये लाइन तुमने मेरे लिए लिखी है।
0: अरे हाँ जी, 100% ही तुम्हारे लिए लिखी थी यार। इमोशन पैदा करने के चक्कर में ये बेवकूफी हुई थी मेरे से। हाँ, दरअसल एक दिन पहले ही सपने में आई थी। तो
1: बहुत अच्छे। हाँ, और ये तुम्हारी, ये तुम्हारी झील सी आंखों में डूब जाने को मन करता है, और थोड़ी सी भी गलत बची हो ना तुम्हें तो तुम तालाब में जाकर डूब मरो, या मुझे डुबो दो और फिर मजे से रहना उसके साथ में।
0: अरे यार धर्म पत्नी जी, ये लाइन तो फिल्मों के चक्कर में आ गई यार। सच, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने खुद नहीं बनाई है इसे।
1: और ये आगे भी तो देखो।
0: अरे
1: रहन दो, बस बस। अब एक झूठ छुपाने के चक्कर में 1000 झूठ मत बोलो जी, फंसते ही चले जाओगे तुम।
0: अरे यार कैसे तुम्हें समझाऊं प्राणेश्वरी, प्रेम पत्र लिखते समय ये सब झूठ सच लिखना पड़ता है यार, नहीं तो प्रेम पत्र का वजूद ही खत्म हो जाएगा दुनिया से। सब सच लिख दिया तो प्रेमिका पत्थर फेंक कर मारेगी अपने प्रेमी को।
1: अच्छा तुमने कहा और मैंने मान लिया है।
0: हाँ हाँ, मान भी जाओ मेरी बात यार, ये लेटर मैंने तुम्हारे लिए ही लिखा था, तुम्हारे लिए ही लिखा था।
1: तुम मुझे बरगलाओ नहीं। और ये देखो, ये तुम्हारा, ये क्या लिखा तुमने? जब तुम हंसती हो ना तो तुम्हारे गाल पर जो डिंपल पड़ता है ना, तुम्हारी खूबसूरती में 4 चांद लगाता है। तुम ही बताओ मेरी कचोरी जैसे गालों में कब डिंपल पड़ता है।
0: अरे यार,
1: और आगे ये देखो, ये देखो क्या लिखा है। चांद में तुम, सितारों में तुम, रोटी में तुम, आईने में तुम, हर शक्ल में तुम्हारा ही चेहरा नजर आता है।
0: अरे क्या
1: बड़ी आंखें सेकी जा रही थी मेरे पीछे।
0: यार
1: इश्क का भूत तो ये पोस्टर भी बयान कर रहा है, जिसे आंखें सेकने के लिए तुमने।
0: अरे यार इस पोस्टर में भी तो तुम ही हो जाने मन, जमीन पर आसमां में तुम ही हो जाने मन।
1: ओहो, बड़े बदले बदले नजर आ रहे हैं मेरे सरकार। कहां तो प्रेम पत्र लिखने के नाम पर हाथ पांव ठंडे पड़े जा रहे थे, और कहां पूरे प्रेम कवि ही बन चुके हैं। किसका कमाल है ये बताओ मुझे। पर मुझे क्या, मैं तो वापस जा रही हूँ। नादान थी मैं जो तुम्हें भोला समझ बैठी। अरे तुम तो भेड़ की खाल में भेड़िया हो।
0: अरे जाने मन क्या।
1: अच्छा हुआ जो तुम्हारा असली रूप दिख गया, नहीं तो जिंदगी भर में इसी मुगालते में रहती कि मैं।
0: ऐसा जुल्म ना करो जी। तुम सुनो तो यार, एक काम करो, तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं होता?
1: बिल्कुल नहीं।
0: तो तुम अशोक को बुला लो। अशोक को तुम बुला लो, तुम खुद तस्दीक कर लो अपने हिसाब से, जैसा तुम चाहो। मैं कुछ नहीं बोलूंगा, बीच में चुपचाप बैठा रहूंगा यार, प्लीज। हां ऐसा अशोक।
4: क्या हुआ भाभी, इतनी इमरजेंसी में आपने क्यों बुला लिया मुझे?
1: क्या कहूं भैया, कुछ दिनों के लिए मैं मायके क्या चली गई, इन्हें तो सिंह ही निकल आए। अरे आशिकी करना शुरू कर दिया, एक बेटी के बाप हैं पर हरकत, मुझे कहते हुए भी शर्म आती है। तुम खुद ही देखो कैसा बेहुदा लव लेटर लिखा है इन्होंने अपनी उसको। अरे वो तो यकायक में आ गई और ये दे नहीं पाए उस कलमुही को, नहीं तो
4: ओहो तो ये बात है। अरे ये बुद्धू है भाभी, आपको वापस बुलाने के लिए न जाने क्या क्या बेवकूफियां करता रहा है ये। मुझे मालूम है इस लव लेटर के बारे में, मैंने ही तो कहा था इससे कि इसे पोस्ट ना करे। फंस गया बेचारा। अरे पोस्ट कर दिया होता आपको तो कम से कम आज आप इस बेचारे पर शक तो ना कर रही होती।
1: सच कह रहे हैं भैया आप, ये भी यही कह रहे थे पर मुझे विश्वास ही नहीं हुआ।
4: 100% सच कह रहा हूँ भाभी, आप चाहें तो श्यामा से कंफर्म कर लीजिए पूरा मैटर, उसे बताया है मैंने।
1: नहीं नहीं अब इसकी जरूरत नहीं है, सचमुच ये भोले सनम ही है। बेचारे इतना जुल्म सहते रहे मेरा, और मुझे माफ कर दो मेरे भोले सनम, माफ कर दो।
2: तो श्रोताओं ये था हमारा हास्य नाटक लव लेटर, प्रस्तुति रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए पेश है देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी। अब दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज पर, देश का चैनल देश के लिए।

90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

दूंगी। नमस्ते, मैं हूँ रानी मुखर्जी और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: 90.8 मेगा हर्ट्स पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। शाम के 5 बजे हैं, हमारी सांध्यकालीन सभा आरंभ होती है। इस सभा में हम अपने सभी श्रोताओं का स्वागत करते हैं। शुभ संध्या, संध्या वंदन। सभा की शुरुआत में आइए आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम अक्षय निधि।
1: प्रस्तुत है कार्यक्रम अक्षय निधि। अक्षय निधि कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 180 से वाचन। ऋषि हैं अगस्त्य मैत्रा वरुणी, देवता हैं अश्विनी कुमार और छंद है त्रिष्टुप।
2: नी यद्युवेथे नियुतः सुदानु उप स्वधाभिः सृजथः पुरंधिम प्रेषद्वेषद्वातो न सूरिरा महे ददे सुव्रतो न वाजम। हे श्रेष्ठ दानवीर अश्विनी कुमारो, जब आप दोनों अश्वों को अपने रथ में जोतते हैं तब असंख्यों का भरण पोषण करने वाली व्यवस्था, बुद्धि, प्रचुर अन्न संपदा के साथ साधकों में आप उत्पन्न करते हैं। श्रेष्ठ कार्य करने वालों के समान ज्ञान संपन्न मनुष्य इस महत्वपूर्ण दायित्व के निर्वाह के लिए अन्न उपलब्ध करके हविष्यान्न के रूप में वायुभूत बनाकर आपको तृप्त करते हैं। वयम् चिद्धिवाम् जरितारः सत्या विपन्यामहे वि पर्निर्हितावान् अधा चिद्धिष्मा श्विना वनिन्द्या पाथो हिष्मा वृषणा वन्ति देवम्। हे शक्ति संपन्न अनिंदनीय अश्विनी कुमारो, हम सच्चे साधक हैं, अतएव आप दोनों के प्रख्यात गुणों का वर्णन करते हैं। परंतु धन संग्रह करने वाले व्यापारी लोकहित के कार्यों में इसे बिल्कुल नहीं लगाते। आप दोनों देवों के ग्रहण करने योग्य सोमरस का ही पान करते हैं। युवाम चिद्धिष्माश्विनावनु द्योन विरुद्रस्य प्रस्रवणस्य सातौ अगस्त्यो नराम नृषु प्रशस्तः काराधुनीव चितयत् सहस्रैः। हे अश्विनी कुमारो, मनुष्यों और नेताओं में सुप्रसिद्ध अगस्त्य ऋषि नित्य प्रति विशिष्ट गर्जना वाले जल प्रवाह को उपलब्ध करने के लिए कुशलता से बांसुरी वादन करने वाले के समान ही आप दोनों की कोमल ध्वनि से सहस्रों आलापों श्लोकों से प्रार्थना करते हैं। प्रयद्वहे थे महिना रथस्य प्रस्यंद्रा याथो मनुषो न होत

0: ऐसे श्रेष्ठ ज्ञानियों को उत्तम अश्वों से युक्त धन संपदा प्रदान करें तथा हमें भी ऐश्वर्य संपदा से परिपूर्ण करें। तम वाम रथम वयमद्या हुवेम स्तोमै रश्विना सुविताय नव्यम अरिष्टनेमिं परि द्यामियानं विद्यामेशं व्रजनं जीरदानुं। हे अश्विनी कुमारो, आज ही हमें सुख साधनों की प्राप्ति हो, इसी निमित्त हम आपका आवाहन करते हैं। द्युलोक के चारों ओर विचरणशील, कभी विकृत न होने वाली धुरी से युक्त आपका नवीन रथ हमारे समीप पहुंचे और हमें अन्न, बल तथा दीर्घ जीवन प्रदान करे।
1: अक्षय निधि कार्यक्रम में अभी आपने सुना ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 180 से वाचन, प्रस्तुत कर रहे थे डॉक्टर नीलिम पुत्रपाठी।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम अक्षय निधि। 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8,
1: देश का चैनल देश के लिए। हम हैं
0: रूहानी सिस्टर्स। हम सलाम करते हैं उन देश के जवानों को जो सरहदों पर दिन रात तैनात होकर हमारी और हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, और हम उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को नमन करना चाहते हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व न्योछावर कर हमें ये आज़ादी दिलाई।
1: रेडियो आज़ाद हिंद देश का पहला और एकमात्र ऐसा रेडियो चैनल है जो वीर जवानों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की अमर गाथाओं को समर्पित है।
0: तो सुनते रहिए रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। हम हैं रूहानी सिस्टर्स। नमस्कार।

0: मैं हूँ मितुल प्रदीप। आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए। देश को आज़ादी दिलाने वाले हमारे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को मेरा शत शत नमन है। जिन्होंने भारत माता को अंग्रेज़ों के चंगुल से आज़ाद कराया, उनकी कुर्बानी हमेशा याद रहेगी। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। पांच बजकर 10 मिनट हुए हैं, लीजिए अब प्रस्तुत है भक्ति गीतों का कार्यक्रम भक्ति संगीत। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी सुखी हों, सभी रोग मुक्त रहें, सभी मंगलमय घटनाओं के साक्षी बने, किसी को भी दुख का भागी न बनना पड़े। इसी मंगल भावना के साथ आइए सुनते हैं ये भक्ति रचना।

जीवन की सबसे सुंदर आदत है हर दिन कुछ नया सीखना, कुछ अच्छा सोचना और किसी के लिए कुछ उपयोगी करना। ज्ञान से बुद्धि बढ़ती है, विनम्रता से व्यक्तित्व निखरता है और सेवा से जीवन धन्य हो जाता है।

हर नया दिन स्वयं को बेहतर बनाने का अवसर लेकर आता है। जो सीखना और बदलना नहीं छोड़ता, वही निरंतर आगे बढ़ता है।

हम जैसा सोचेंगे वैसा ही महसूस करेंगे। अगर हम हर समय चिंता, गुस्सा, ईर्ष्या या नकारात्मक बातें सोचते रहें तो उसका असर शरीर पर भी पड़ता है, तनाव बढ़ता है, मन अशांत रहता है। इसलिए हमेशा सकारात्मक और खुश रहें।

आत्मविश्वास वो शक्ति है जो असंभव लगने वाले कार्य को भी संभव बना देती है। जो स्वयं पर विश्वास रखता है उसके लिए हर मार्ग सरल और सफल बनते जाते हैं।

हर दिन प्रभु का स्मरण करें, हर पल कृतज्ञता रखें और हर परिस्थिति में विश्वास बनाए रखें। जो पाना है उसमें विश्वास रखें, यही जीवन का सबसे बड़ा सकारात्मक सूत्र है।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: इन्हीं भक्ति रचनाओं के साथ हमारा आज का कार्यक्रम भक्ति संगीत अब यहीं समाप्त होता है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। लीजिए प्रस्तुत है काशी प्रसाद जायसवाल पर केंद्रित कार्यक्रम वतन का राग।

वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। काशी प्रसाद जायसवाल की पहचान एक सुप्रसिद्ध इतिहासकार, पुरातत्व के अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के विद्वान और एक साहित्यकार के रूप में है। उनका मानना था कि भाषाई एकता सभी प्रकार की एकता की जननी है। उन्होंने भारत की गंगा जमुनी संस्कृति को विश्व पटल पर नई ऊंचाइयां प्रदान की। उनके क्रांतिकारी विचार अत्यंत प्रखर थे और व्यक्तित्व देशभक्ति की भावनाओं से रंगा हुआ था। यही कारण है कि अंग्रेज उन्हें क्लेवरेस्ट इंडियन और डेंजरेस्ट रिवॉल्यूशनरी कहते थे। काशीप्रसाद जायसवाल का जन्म 27 नवंबर सन 1881 को उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में हुआ था। उनके पिता बाबू महादेव प्रसाद ने अपना व्यापार स्थापित करने के लिए अपने बेटे काशीप्रसाद को उसकी माँ के साथ ससुराल में छोड़ दिया था। ननिहाल बहुत गरीब था। दूसरे बच्चों को देखकर जब काशी प्रसाद मिठाई मांगते तो सत्तू में गुड़ मिलाकर उसकी छोटी छोटी गोलियां बनाकर माँ लड्डू के नाम से दिया करती। मैट्रिक पास करने के बाद काशी प्रसाद जी ने पढ़ाई छोड़ दी। इस बीच पिता का व्यापार जम गया, लाखों की आमदनी होने लगी। एक दिन चर्चा के दौरान उनकी बहस सुनकर किसी ने ताना मारा, बड़े बैरिस्टर बने हुए हैं। बस ये बात उनके मन को लग गई, तय कर लिया कि अब तो बैरिस्टर बनना ही है। पिता ने उनकी ये इच्छा पूरी की और काशी प्रसाद जी ने लंदन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया। इस तरह उनकी शिक्षा मिर्जापुर, फिर बनारस और फिर इंग्लैंड में हुई। वो चाहते तो बैरिस्टरी पास करके लौट आते, लेकिन उनके भीतर प्रबल ज्ञान पिपासा थी, इसलिए इंग्लैंड में अध्ययन के दौरान उन्होंने 3 डिग्रियां प्राप्त की। उन्होंने लॉ किया, इतिहास में एमए किया, साथ ही चीनी भाषा की भी 1 डिग्री हासिल की। वो पहले भारतीय थे जिसे इसके लिए स्कॉलरशिप मिली। इंग्लैंड में उनका संपर्क इंडिया हाउस के अनेक क्रांतिकारियों से हुआ। वहां से वो हिंदी पत्रों में अपने लेख भेजा करते। अंग्रेज उनके विचारों पर नजर रखने लगे। वीर सावरकर और लाला हरदयाल से क्रांतिकारी गतिविधियों पर उनकी विस्तार से चर्चा होती रही। अपनी इन गतिविधियों के कारण उन पर पुलिस की कड़ी नजर रहने लगी। यही कारण है कि सन 1910 में जब वो भारत लौटे तो गिरफ्तारी की आशंका से जल, थल और रेल मार्ग से यात्रा करते हुए भारत पहुंचे। भारत वापसी के बाद पहले वो कलकत्ता में रहे और फिर बिहार प्रांत बनने के बाद सन 1914 से वो पटना में रहने लगे। उन्होंने पटना उच्च न्यायालय में आजीवन वकालत की। देश के प्रतिष्ठित लोग उनके मुवक्किल थे। प्रिवी काउंसिल में बहस करने वो इंग्लैंड भी जाया करते। इंग्लैंड में शिक्षा के दौरान ही काशी प्रसाद जायसवाल विश्व के बदलते राजनैतिक परिदृश्य को भांप गए थे और उन्हें विश्वास हो चला था कि अब पुरानी व्यवस्थाएं काम नहीं करेंगी, पुरानी दुनिया अब नहीं रहेगी। वो देख रहे थे कि युगों से पीड़ित शोषित जनता अब अंगड़ाई लेकर जाग रही है, मुखर हो रही है। इस बात को अपने लेखों में उन्होंने मजबूती से रेखांकित भी किया और इसका समर्थन भी किया।

स्वाधीन बनाए। काशी प्रसाद जायसवाल कई भाषाओं के जानकार थे। संस्कृत, हिंदी और बांग्ला जैसी भारतीय भाषाओं के साथ साथ वो अंग्रेजी, चीनी, फ्रेंच और जर्मन भाषाओं के भी ज्ञाता थे। उनका मानना था कि अलग अलग भाषा ज्ञान से हम पूरे विश्व के बारे में बेहतर तरीके से पढ़ और समझ सकते हैं। उनकी लिखी किताबें एक धरोहर की तरह हैं। उन्होंने दर्जन भर शोध पुस्तकें लिखीं, जिनमें हिंदू पॉलिटी, मनु एंड याज्ञवल्क्य,

हिस्ट्री ऑफ इंडिया आदि अत्यंत चर्चित रहीं। काशी प्रसाद जायसवाल ने हिंदी भाषा और साहित्य तथा प्राचीन भारत के इतिहास और संस्कृति पर लगभग 200 लेख लिखे। ये लेख समय समय पर प्रदीप, सरस्वती, नागरी प्रचारणी पत्रिका, द मॉडर्न रिव्यू आदि में प्रकाशित हुए और लोगों द्वारा सराहे गए। बिहार के तत्कालीन प्रशासक एडवर्ड गेट ने बिहार रिसर्च सोसाइटी से जब बिहार रिसर्च जर्नल का प्रकाशन आरंभ किया तो काशी प्रसाद जायसवाल उसके प्रथम संपादक हुए। उन्होंने पाटलिपुत्र का भी संपादन किया। काशी प्रसाद जी ने अपने जीवन काल में कई महत्वपूर्ण व्याख्यान दिए। उनके व्याख्यानों की श्रृंखला में टैगोर लेक्चर सीरीज कलकत्ता, ओरिएंटल कॉन्फ्रेंस पटना और बड़ौदा, अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन इंदौर के व्याख्यान अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी लंदन में व्याख्यान देने के लिए वो आमंत्रित किए गए थे, जो उस समय की अत्यंत महत्वपूर्ण घटना थी। 20वीं सदी में जिन भारतीय विद्वानों ने विमर्श की दिशा को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उनमें काशी प्रसाद जायसवाल अग्रणी हैं। वो नागरी प्रचारणी सभा के उपमंत्री भी रहे। पटना म्यूजियम की स्थापना में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। बिहार एंड उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी और इतिहास परिषद जैसी कई संस्थाओं की स्थापना से लेकर संचालन तक उन्होंने अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इतिहास और पुरातत्व उनका मुख्य विषय था। प्राचीन भारत और उसकी व्यवस्थाओं को लेकर किया गया उनका शोध कार्य अतुलनीय है।

काशी प्रसाद जायसवाल का कथन था कि भाषा की एकता सभी एकता की जननी है। उनका स्पष्ट मानना था कि अंग्रेजों की उन्नति ऐसी कदापि नहीं हो सकती थी यदि उन सभी की भाषा एक न होती। भाषा को लेकर अपने विचार उन्होंने बहुत स्पष्ट तरीके से हमेशा रखे। जिस समय उन्होंने लेखन आरंभ किया था वो समय हिंदी नवजागरण का काल माना जाता है। ये वो समय था जब भारतेंदु हरिश्चंद्र और पंडित बालकृष्ण भट्ट के नेतृत्व में हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि को आधिकारिक मान्यता दिलाने का आंदोलन चल रहा था। जायसवाल जी बोलचाल की आम भाषा के पक्ष में थे। उन्होंने भाषा के भी दो भेद किए थे, पहली साधु भाषा और दूसरी प्रचलित भाषा। उनका कहना था कि उपन्यास, जीवन चरित्र और दर्शन विषयक साहित्य की भाषा साधु होनी चाहिए तथा समाचार पत्र आदि के लिए प्रचलित भाषा उपयुक्त होगी। उस समय राष्ट्रीय एकता का प्रश्न भी अत्यंत महत्वपूर्ण था। काशी प्रसाद जायसवाल का मानना था कि राष्ट्रीय एकता भाषाई एकता के बिना नहीं हो सकती। उनका मत था कि भारत में भिन्न भिन्न भाषाएं हैं, पर राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से हिंदी अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हिंदी ही सबको एक सूत्र में बांध सकती है। इस विषय पर सरस्वती में भाषा का महत्व शीर्षक से उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेख लिखा। इस लेख में उन्होंने कहा कि भाषा देवकृत नहीं बल्कि मानवकृत है, और भाषा का संबंध रक्त के संबंध से भी प्रबल होता है। वो सदैव सांप्रदायिक सद्भाव के पक्षधर थे। उनका कहना था कि जाति धर्म के विभेद के साथ न तो भारत एक राष्ट्र हो सकता है और न ही राष्ट्रीय एकता कायम हो सकती है। अपने विचारों से देश दुनिया को नई रोशनी और नई राह दिखाने वाले इस महान व्यक्तित्व ने 4 अगस्त सन 1937 को अंतिम सांस ली। सुप्रसिद्ध कवि रामधारी सिंह दिनकर ने उनके विषय में लिखा था कि सूर्य, चंद्र, वरुण, कुबेर और बृहस्पति भी डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल की बराबरी नहीं कर सकते। सुप्रसिद्ध उपन्यासकार अमृतलाल नागर ने कहा कि यदि मुझे 3-4 घंटे की बादशाहत मिल जाए तो मैं गांव-गांव के मंदिरों में डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल की मूर्तियां स्थापित करने का आदेश प्रसारित करूंगा। सच है कि समय सदा उनके द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्यों का पुनर्पाठ करता रहेगा। नमन ऐसी महान विभूति को।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: नमक हराम, जिस देश का नमक खाता है उसी से गद्दारी करता है।
2: नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो।
3: अंग्रेजों का पिट्ठू बनता है।
2: नहीं, मुझे छोड़ दो।
3: ये ले, माँ भारती से दगाबाजी करने का पुरस्कार।
1: मेरी तरफ से भी ये इनाम ले।
4: जिनके लिए वतन था प्राणों से भी प्यारा, उन अमर शहीदों की यादों को समर्पित है कार्यक्रम हिंदोस्ता हमारा। सुनिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज पर, देश का चैनल देश के लिए।
5: नमस्कार, मैं हूं अन्नू कपूर और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर। मैं प्रणाम करता हूं, नतमस्तक हूं, सलाम करता हूं देश के सभी सैनिकों को जो हमारे देश की सुरक्षा के लिए हरदम तैनात रहते हैं, तैयार रहते हैं। नतमस्तक हूं साथ ही उन सभी क्रांतिकारियों को प्रणाम करता हूं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें ये आजादी दिलाई। वो हैं तो हम हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

नमस्कार, मैं हूं मधुश्री और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए। मैं सलाम करती हूं देश के सभी सैनिकों को जो हमारे देश की सुरक्षा में हमेशा तैनात रहते हैं, और साथ ही उन क्रांतिकारियों को भी जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान देकर हमें आजादी दिलाई। वो हैं तो हम हैं।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 MHz पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आइए सुनते हैं कार्यक्रम प्रकृति की पुकार।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8 FM, देश का चैनल देश के लिए। मैं हूं वर्षा सिंह।
3: और मैं हूं दीपक नेमा। लीजिए प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम प्रकृति की पुकार।

0: अरे वाह वाह, क्या बात है, आज तो आप बड़ी खुश नजर आ रही हो और इतना खूबसूरत गाना भी गा रही हो।
1: हाँ, आपने ठीक कहा, आज मैं बहुत खुश हूँ। जानते हैं क्यों?
0: बताइए, आप ही बताइए क्यों।
1: दरअसल आज मैं सुबह काफी लंबी सैर करके आई हूँ और बाहर सुबह इतनी सुहानी लगी कि मन खुश हो गया। हरे भरे पेड़, कलकल बहता पानी और ठंडी ठंडी बयार, मन को इतना अच्छा लगा कि वहाँ से वापस आने का मन ही नहीं कर रहा था।
0: बात तो सही कही आपने, प्रकृति की गोद है ही इतनी खूबसूरत कि वहाँ से उन नजारों से नजर ही नहीं हटती है।
1: मैंने तो सोच लिया है, जब भी फुर्सत मिलेगी तो बाहर इन नजारों के बीच जरूर जाऊंगी।
0: वर्षा, आप जानती हैं
1: जी
0: कि प्रकृति ने हमारे लिए चारों ओर ऐसी चीजें और ऐसा वातावरण दिया है कि हमारे मन को तो भाता ही है, साथ ही हमें ये स्वस्थ भी रखता है। यही तो है परी और आवरण, यानी पर्यावरण हमारी धरती का।
1: जी हाँ, पर्यावरण प्रकृति का सबसे बड़ा और कीमती उपहार है जो हमें मिला है, और हमारा कर्तव्य है कि हम सब इसे संभाल कर और बना कर रखें।
0: बात तो सही कही आपने, ये एक ऐसा प्राकृतिक तंत्र है जहाँ हम जीवित रहते हैं और जीवित रहने के लिए एक दूसरे पर निर्भर भी रहते हैं।
1: हाँ, पर्यावरण से मतलब उस परिवेश से है जिसमें हमारी पृथ्वी विद्यमान है। पशु पक्षी, सूर्य का प्रकाश, जल, पेड़ पौधे, हवा और हम मनुष्य तथा सभी जीव जंतु सब मिलकर पर्यावरण का निर्माण करते हैं।
0: हाँ, इसके संतुलन को बनाए रखने में भी सभी की समान भागीदारी है। थोड़ी भी गड़बड़ी पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुँचाएगी।
1: हाँ, हर जीवित प्राणी अपनी विशेषताओं के साथ विकसित होता है। जैसे जलीय प्राणी पानी में सांस लेते देखे जा सकते हैं, और हवा में रहने वाले तो हवा में रहते ही हैं।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, अगर इन्हें अपने वातावरण से यदि हम अलग करें तो इनका जीवित रहना मुश्किल हो जाएगा। वैसे ही पर्यावरण हर एक जीव के आसपास की दुनिया है जो उन्हें जीवित रखती है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, पर्यावरण पौधों, जानवरों, पशु पक्षियों, जीव जंतु और मनुष्यों जैसे जीवित और वायु, जल और भूमि जैसे निर्जीव तत्वों से बना है।
0: प्रकृति ने अपनी कार्य प्रणाली को इस तरह से डिजाइन किया है कि हम सब एक दूसरे पर निर्भर हैं।
1: इनमें हम मनुष्य उन सभी प्राणियों में सबसे अधिक शक्तिशाली है जो पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर है और उनका उपयोग करते हैं।
0: हाँ जी, अब जैसे हवा की बात करें तो ये न केवल मनुष्यों के लिए बल्कि पेड़ पौधों के जीवित रहने के लिए भी जरूरी है। हवा के बिना पृथ्वी पर जीवन असंभव है।
1: बिल्कुल सही कहा दीपक, जीवन देने के लिए ऑक्सीजन जरूरी है और नाइट्रोजन जैसी कई गैसें वायुमंडल में पाई जाती है।
0: और इस पर्यावरण में जलमंडल भी नदियों, महासागरों, समुद्रों आदि जैसे कई जल निकायों से बना है।
1: इसी तरह स्थल मंडल चट्टान और मिट्टी से बना है और जीव मंडल सभी जीवित प्राणियों का घर है।
0: वर्षा, हम ईश्वर प्रस्थ दुनिया में रहते हैं, इसमें से कुछ तत्व प्राकृतिक और कुछ हम मानवों द्वारा निर्मित है। हमारे आसपास की चीजें ही मिलकर पर्यावरण का निर्माण करती हैं।
1: लेकिन पर्यावरण के बिगड़ने के लिए हम मनुष्य ही जिम्मेदार हैं। पर्यावरण का विनाश एक बड़ा मुद्दा है जिसका समाधान हम मनुष्यों को ही करना चाहिए।
0: जलवायु, स्वच्छता, प्रदूषण और पेड़ पौधे, ये सभी चीजें हमारे दैनिक जीवन से सीधा संबंध रखते हैं। हम मनुष्य और पर्यावरण एक दूसरे पर निर्भर होते हैं।
1: बिल्कुल सही बात है। अब जैसे जलवायु प्रदूषण या वृक्षों का कम होना हमारे शरीर और हमारे स्वास्थ्य दोनों पर बुरा असर डालते हैं।
0: अब देखिए ना वर्षा जी, हमारी अच्छी बुरी आदतें जैसे पेड़ पौधों को सहेजना, जलवायु प्रदूषण रोकना, स्वच्छता रखना, ये सब पर्यावरण को प्रभावित करता है।
1: बिल्कुल सही कहा, हमारी गलत आदतें जैसे पानी दूषित करना या जबरन पानी को बहाना, वृक्षों की जरूरत से ज्यादा कटाई करना, ये सारी बातें पर्यावरण को बुरी तरह से प्रभावित करती हैं।
0: हाँ वर्षा जी, अब तो वो समय आ गया है कि हम अपनी इन बुरी और गलत आदतों के कारण पर्यावरण को प्रभावित करने का नतीजा प्राकृतिक आपदाओं का सामना कर भुगत रहे हैं।
1: हमारे पर्यावरण में जैविक सूक्ष्म जीवाणु से लेकर कीड़े मकोड़े, जीव जंतु, पेड़ पौधों के अलावा उनसे जुड़ी सारी जैव क्रियाएं और प्रक्रियाएं शामिल हैं।
0: सामान्य शब्दों में अगर इसको समझें तो ये हमारे जीवन को प्रभावित करने वाले सभी जैविक और अजैविक तत्वों, तथ्यों और प्रक्रियाओं तथा घटनाओं से मिलकर बनी इकाई है।
1: पर्यावरण तो हमारे चारों ओर रहता है और हमारे जीवन की हर एक घटना इस पर निर्भर होती है। यानी किसी भी जीव जंतु के बीच ऐसा संबंध होता है जो पर्यावरण आश्रित होता है।
0: हाँ, पर अब मनुष्यों के हस्तक्षेप के कारण हम कह सकते हैं कि इसे दो भागों में बांटा जा सकता है, एक प्राकृतिक या नैसर्गिक पर्यावरण और दूसरा मानव निर्मित पर्यावरण।
1: आपका कहना बिल्कुल सही है दीपक। बढ़ती जनसंख्या और बड़ी बड़ी इमारतों के कारण पर्यावरण की प्रकृति अब नष्ट होती जा रही है। हर जगह घने जंगलों को काटकर समाप्त किया जा रहा है।
0: हाँ, जबकि हमारे कवियों और लेखकों ने इन्हीं प्राकृतिक मनोहारी रूपों को अपने शब्दों में बांधा है जिसे हम पढ़ते हैं, परंतु जो खूबसूरती देखकर उन्होंने लिखा है वो अब देखने को नहीं मिलती है।
1: आपका इशारा किस ओर है दीपक, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। शायद सतपुड़ा के घने जंगल।
0: शायद नहीं, आपने बिल्कुल सही समझा है। कवि भवानी प्रसाद मिश्र की कविता में इन प्राचीन जंगलों का कितना अच्छा वर्णन मिलता है। कितने घने होंगे ये जंगल जब उन्होंने इन्हें देखकर इस कविता की रचना की होगी।
1: हाँ, कविता की एक पंक्ति में उस रूप का ऐसा सुंदर विवरण है और ऐसा सुंदर चित्रण है कि जब उसे पढ़े तो हमें दिखाई भी देने लगता है।
0: लेकिन वर्षा जी, बड़े अफसोस की बात है, आज वृक्षों की कटाई और बड़ी इमारतों को बनाने और नए नए उद्योगों को शुरू करने के कारण प्राकृतिक पर्यावरण बुरी तरह से नष्ट हो रहा है।
1: बिल्कुल सही कहा, घने वृक्षों को काट कर नष्ट करना, पर्यावरण और प्रकृति से खिलवाड़ कर हम मनुष्यों ने अपनी ही आने वाली पीढ़ियों के लिए संकट खड़ा कर लिया है।
0: कभी कभी लगता है वर्षा जी, प्रकृति से हमने बस लिया ही है, हमने कुछ भी नहीं दिया। अनगिनत वाहनों का धुआं, कारखानों से निकलता धुआं, दूषित पानी और मशीनों की आवाजें, ये सबके कारण वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण बढ़ता जा रहा है।
1: बिल्कुल सही कहा दीपक, इसी कारण हमें नित नई और ऐसी बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है जिसका इलाज हमारे चिकित्सा जगत की समझ से बाहर है।
0: और इस कड़ी में हम वैश्विक स्तर पर फैली बीमारी कोविड-19 की भयावहता को देख चुके हैं, जिसके कारण हमारे देश ही नहीं बल्कि विश्व के हर देश से लाखों लोगों की जानें गईं।
1: इस तरह की त्रासदी से बचने के लिए जरूरी है कि हम अपनी जीवन शैली को बदलें, उसमें परिवर्तन लाने के लिए दृढ़ संकल्पित हों। इस बात की आवश्यकता अब हमारे लिए पहले से अधिक महत्वपूर्ण हो गई है कि हम अब इस ओर पहल का कदम नहीं बढ़ाएं बल्कि दौड़ पड़ें।
0: बिल्कुल ठीक कहा वर्षा जी, क्योंकि यदि हम अपना जीवन बचाना चाहते हैं और मानव जाति और अन्य प्राणियों की रक्षा करना चाहते हैं तो पर्यावरण की सुरक्षा को सुनिश्चित करना ही होगा।
1: हम सभी ने सदा से पर्यावरण के सभी संसाधनों का भरपूर इस्तेमाल किया है। तकनीकी आपदा के कारण भी हम दिन प्रतिदिन प्राकृतिक तौर तरीकों को छोड़ नहीं रहे बल्कि उसकी महत्ता को नजरअंदाज कर रहे हैं।
0: हाँ, जबकि पृथ्वी पर रह रहे हर प्राणी की जिम्मेदारी बनती है कि वे प्रकृति द्वारा दी गई उन अनमोल वस्तुओं के महत्व को समझे और इसे संरक्षित रखे, क्योंकि हमारे आसपास अपने जीवन को बचाने के लिए इसका कोई सानी नहीं है।
1: तभी तो हमारे प्राचीन ऋषि मुनि भी पर्यावरण को बनाए रखने के प्रति गंभीर थे और इसी वजह से उन्होंने प्रकृति को माता के रूप में माना और ये भी जाना कि स्वच्छ पर्यावरण स्वस्थ जीवन के लिए जरूरी है।
0: ये बड़ी सुंदर बात कही आपने। प्राचीन ऋषि मुनियों ने सफाई को महत्व दिया और ये माना कि स्वच्छता स्वस्थ जीवन का आधार है और प्रदूषण जीवन के लिए खतरा।
1: जी हाँ, उन्होंने पर्यावरण को बनाए रखने के लिए पेड़ों की आवश्यकता के अनुरूप ही उपयोग की बात पर बल दिया और पानी का सीमित उपयोग किया उन्होंने सदा अपने शिष्यों को भी पर्यावरण के महत्व और संरक्षण की शिक्षा दी।
0: जी हाँ, अपनी शिक्षा में उन्होंने प्रकृति के साथ रहने और उसके नियमों और सिद्धांतों को अपनाया। हमारे ऋषि मुनियों ने प्रकृति को देवी देवता के रूप में देखा, उसकी पूजा की और कहा कि इसी में हमारा सुख, शांति और समृद्धि है।
1: जी हाँ, उनकी कही गई बातें और उनकी दी गई शिक्षा आज भी प्रासंगिक है। हमें अपने उन पूर्वजों की शिक्षा को अपनाकर पर्यावरण को बचाना ही है।
0: बिल्कुल सही बात कही वर्षा। इसके लिए हमें आत्मनियंत्रण की भी जरूरत है। हमारी महत्वाकांक्षाएं इतनी अधिक बढ़ती जा रही हैं कि हम भूलते जा रहे हैं कि इन्हें पूरा करने के कारण हमारी प्रकृति, हमारी पृथ्वी कितना कुछ सह रही है।
1: अब देखा जाए तो हमारी दिनचर्या में ही कितना अंतर आ गया है। ज्यादातर घरों में देर से सोना और प्रातः काल की बेला गुजरने के बाद उठना और फिर अलसाते हुए अपने कामों को करने का प्रयास करना,
0: जबकि प्रातः काल और सूर्यास्त से पहले का समय प्रकृति के सबसे ज्यादा शांतिपूर्ण समय में से होता है। इस समय सारा वातावरण साफ, शांत और ताजा होता है।
1: सुबह पक्षियों के चहचहाने की आवाजें मन को मोह लेती हैं और कहते हैं ना, प्रातः काल सूर्योदय के समय वातावरण में बड़ी सकारात्मक ऊर्जा होती है जो हमारे मन को और शरीर को तरोताजा कर देती है।
0: और हमारे शरीर को मिलने वाली ये ताजगी हमें पूरे दिन स्फूर्ति से भर देती है, ऊर्जावान बनाए रखती है। तभी तो कहते हैं कि सुबह की सैर हमारे लिए स्वास्थ्यवर्धक होती है।
1: बिगड़ता पर्यावरण वर्तमान समय में विश्व की एक ज्वलंत समस्या है। आवश्यकता है कि हम सब मिलकर और व्यक्तिगत रूप से भी इसको बचाने में जुटें और सभी को प्रेरित करें।
0: प्राकृतिक संसाधनों का सीमित उपयोग करें, प्रकृति के महत्व को समझें। ये सभी जीवों का आश्रय स्थल है, इसलिए मानव जीवन के लिए ये समझना बड़ा आवश्यक है कि हमारा पर्यावरण, जहां हम सब साथ रहते हैं और इस पर केवल हम मनुष्यों का ही नहीं बल्कि हर जीव, जंतु और वनस्पति का अधिकार है, इसे सुरक्षित और साफ सुथरा बनाए रखें।
1: ये प्रकृति का अनमोल उपहार कई चीजों से मिलकर बना है, जैसे वायुमंडल या हवा, जलमंडल या पानी, स्थलमंडल या चट्टाने और मृदा यानी मिट्टी, जैवमंडल या जीव जंतु और सौर ऊर्जा।
0: इसको ऐसे समझ सकते हैं, पर्यावरण को तीन भागों में बांटा गया है, भौतिक, जैविक और सामाजिक पर्यावरण। इन सभी पर हम अपने अगले कार्यक्रमों में विस्तार से चर्चा करेंगे।
1: तो दो पंक्तियों के साथ हम आज के इस कार्यक्रम को विराम देंगे। आइए प्रण करें।
0: धरती डगमग डोलती आते नित भूकंप,
1: करो प्रकृति दोहन नहीं मिट जाए हड़कंप।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम प्रकृति की पुकार। अब वक्त है इजाजत लेने का।
1: इस कार्यक्रम की परिकल्पना की थी अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, लेखन प्रमिला दिवाकर मुंशी। मैं था आपके साथ दीपक निमा।
0: और मैं थी आपके साथ वर्षा सिंह। तो सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 FM, देश का चैनल देश के लिए।
1: नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम प्रकृति की पुकार। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम योग संवाद।
2: नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। मैं हूं आपकी रेडियो सखी सुनीता सिंह, लेकर उपस्थित हूं हमारी सनातन योगिक परंपरा पर प्रकाश डालता कार्यक्रम योग संवाद। श्रोताओं, वो कोई सौभाग्य क्षण ही होता है जब जीवन से जुड़े प्रश्न मन को इतना आंदोलित कर देते हैं कि संसार का समस्त वैभव, सामर्थ्य और आकर्षण मन को संतोष नहीं दे पाता है। लहरों की तरह प्रश्न जीवन तट से टकराते रहते हैं और मनुष्य के भीतर समुद्र जैसा शोर गूंजता रहता है। लेकिन विशेष बात यह है कि यही वो समय होता है जब ज्ञान का द्वार खुलता है, और उस द्वार तक पहुंचाने के लिए नियति स्वयं गुरु का मार्ग प्रशस्त करती है। योग वासिष्ठ का आरंभ भी एक ऐसे ही अद्भुत क्षण से होता है। अयोध्या के राजकुमार श्री राम तीर्थ यात्रा से लौटकर गहन वैराग्य में डूबे हुए हैं। उनके अंतर्मन की पीड़ा को महर्षि विश्वामित्र पहचान लेते हैं। वो जानते हैं कि ये विषाद नहीं है, सत्य की खोज है। ये मौन नहीं है, आत्मबोध की पुकार है। इसलिए वो कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ से आग्रह करते हैं कि वो युवराज श्री राम के संशयों का निवारण करें और उन्हें आत्मज्ञान का अमृत प्रदान करें। यहीं से आरंभ होती है गुरु और शिष्य के बीच की वो दिव्य संवाद धारा जिसने युगों युगों से अनगिनत साधकों के जीवन को आलोकित किया है। आइए योग संवाद में आज की चर्चा आरंभ करें, योग वासिष्ठ के पन्ने पलटें और उस बिंदु पर पहुंचें जहां महर्षि विश्वामित्र श्री राम को उपदेश देने हेतु महर्षि वशिष्ठ से अनुरोध कर रहे हैं। हमेशा की तरह इस बातचीत के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं योग अध्यात्म और जीवन विज्ञान विशेषज्ञ डॉक्टर शशिकांत मणि त्रिपाठी। नमस्कार शशिकांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में।
3: नमस्कार।
2: भगवान श्री राम तीर्थ यात्रा करके लौटे हैं, संसार की नश्वरता और सुख दुख को देखा है, जीवन मृत्यु को देखा है, मोह को भी बहुत निकट से देखा है
3: जी।
2: और उनके भीतर वैराग्य का उदय हुआ है, और महर्षि विश्वामित्र ये बहुत अच्छी तरह से जान रहे हैं कि ये जो श्री राम की उदासी है ये कोई साधारण उदासी नहीं है, बल्कि ये आत्मज्ञान की एक पुकार है। तो इस बात को विश्वामित्र जी किस तरह से देख रहे हैं? क्या आत्मज्ञान के लिए पात्रता भी आवश्यक है?
3: बिल्कुल, आपने जब ये बात कही तो मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण में विश्वामित्र जी ने राम जी को सुखदेव जी का वृतांत सुनाया। उसमें वो कहते हैं कि सुखदेव जी ने अपने विवेक से उस ज्ञान को प्राप्त कर लिया था जिस ज्ञान को प्राप्त कर लेने के बाद किसी और ज्ञान की आवश्यकता शेष नहीं रह जाती है। बावजूद इसके सुखदेव जी को शांति नहीं मिली और संसार को देख करके उन्होंने अपने पिता से प्रश्न किया। पिता ने भी वही उत्तर दिया जो उन्होंने अपने विवेक से जाना था
2: जी।
3: उसके बाद भी शांति नहीं मिली, क्योंकि इसके पीछे कारण यह है कि उनके अंदर जो पिता होने का जो भाव था कि ये मेरे पिता हैं, तो वो ज्ञान ग्राह्य नहीं हो पाया।
2: अच्छा।
3: कई बार आप देखिएगा कि ज्ञान की स्थिति ऐसी होती है कि जो हम अपने अनुभव से प्राप्त करते हैं उन अनुभवों को हम स्वीकारने की बजाय हम दूसरों के द्वारा बताए गए ज्ञान पर ज्यादा भरोसा करते हैं। हाँ, अपने जीवन के अनुभव पर हम बहुत नहीं ठहरते। तो ऐसे में जब ये जाते हैं जनक जी के पास, तो जनक जी सबसे पहले इनकी परीक्षा लेते हैं, और परीक्षा में वो देखते हैं कि पहले उनकी अवहेलना करते हैं कि ठीक है उनको द्वार पर खड़े रहने दो
2: जी जी।
3: फिर उनको अंदर बुलाते हैं आंगन में, जहां पर अब राज्य वैभव सारा मिलता है। एक तरफ त्याग है, दूसरी तरफ भोग है, और इन दोनों में उनके चित्त की स्थिरता बनी हुई है। और जब ये चित्त की दोनों स्थितियों में स्थिरता बनी है, तब उनको वो अंतःपुर में बुलाते हैं, जहां पर उनसे वो संवाद कर रहे हैं जनक जी की अब बताइए क्या है। तो वो जनक जी से भी वही प्रश्न करते हैं जिस प्रश्न को उन्होंने अपने पिताजी से किया। तो जनक जी कहते हैं कि हे ब्राह्मण, आपको जो जानने योग्य है वो जान लिया है आपने, आप पूर्ण काम हो चुके हैं। अब आप इस संसार में जितने भी दृश्य पदार्थ हैं, उन दृश्य पदार्थों के प्रति आपका कोई आकर्षण नहीं है, यही इस बात का प्रमाण है कि आपने ज्ञेय को जान लिया, जो जानने योग्य है वो जान लिया। ऐसी ही स्थिति राम जी की वो कह रहे हैं विश्वामित्र जी. राम जी को कहते हैं कि हे मुनीश्वरों, राम जी ने ज्ञातव्य वस्तु को पूर्णतः जान लिया है. जितने भी वहां मुनीश्वर मौजूद हैं उनसे विश्वामित्र जी राम जी के बारे में कह रहे हैं कि जान लिया है, क्योंकि इन शुद्ध बुद्धि वाले राम को भोग

0: प्रकार की कामना
1: जी जी
0: अगर आपके मन में शेष है तो इसका मतलब यह है कि आपने कामनाओं के बढ़ने के सत्य को नहीं जाना कि कामनाएं कभी शांत नहीं होती बल्कि और प्रज्वलित होती हैं वो यज्ञ के अग्नि की भांति जब उसमें हविष पड़ता है। तो कहते हैं कि राम ने जान लिया और राम की शुद्ध बुद्धि है, वे इन्हें रोग के समान प्रतीत होते हैं। भोग रोग के समान जब प्रतीत होने लगे तो इसका मतलब यह है कि भोगों का वो सत्य आपके सामने उद्घाटित हो चुका है जिस सत्य को नहीं जानने के कारण लोग भोगों के पीछे अपने जीवन को तबाह कर देते हैं। जैसे आपने देखा होगा हम लोग कहते हैं कि समा और परवाने की बात कि वो आकर के दिए पर जल जाता है, तमाम जले हुए लोगों को देखता है फिर भी वो जान नहीं पाता, तो ऐसे ही इंसान भोगों में जी लिप्त रह करके भी उसी को शांत करने के लिए उसी का सहारा ले रहा है कि फिर से वो सोचता है कि मैं और कोई हविष डाल करके उस अग्नि को शांत कर दूंगा, जबकि भोगों की अग्नि भोगों से कभी शांत नहीं होती।
1: तो ये जानना आवश्यक है कि जो भोग है वो एक तरह का रोग है।
0: हाँ, भोग रोग है, लेकिन ये बात वही जान सकते हैं जिनकी बुद्धि राम की तरह शुद्ध हो गई है। अशुद्ध बुद्धि से इसका ज्ञान नहीं होगा क्योंकि भोग बुद्धि को अशुद्ध करते हैं। भोगों के प्रभाव से अशुद्ध हुई बुद्धि में ये ज्ञान उपजेगा ही नहीं कि भोग रोग है।
1: जी जी बिल्कुल,
0: वो तो भोग योग बन जाएगा उनके लिए।
1: जी जी। तो अच्छा, भगवान श्री राम ने भव बंधन को देखा है, जो संसार में जिस तरह से वो लिप्त हैं ये देखा है, तो इसी बात से वो उद्वेलित भी हैं।
0: जी,
1: तो संसार का जो बंधन है कैसे क्षीण होता है?
0: भोगों के चिंतन से अज्ञान जनित बंधन दृढ़ होता है। अब देखिए, मैंने हम लोग बात की कि अज्ञान जनित बंधन, बंधन हमेशा अज्ञान जनित है, बंधन कभी ज्ञान के साथ नहीं टिकता। ठीक वैसे ही जैसे हजारों साल का अंधेरा प्रकाश के सामने खड़ा नहीं हो सकता कि आप वो कहे कि नहीं हजारों साल से मेरा साम्राज्य है, अभी अभी आप आए हैं, कैसे हम चले जाएं। तो ऐसे ही ज्ञान के होते ही बंधन क्षीण हो जाता है, यानी बंधन हमेशा अज्ञान से ही जन्म लेगा, इसीलिए अज्ञान जनित कहलाता है। और अज्ञान जनित बंधन अगर किसी भी व्यक्ति के जीवन में है तो उसकी भोग में आकांक्षा बनी रहेगी, कामना बनी रहेगी, वो अनासक्त नहीं हो सकता। हाँ। वो हमेशा उसकी आसक्ति बनी रहेगी और भोग वासना के शांत हो जाने पर संसार बंधन क्षीण हो जाता है। ये राम जी ने देखा है और राम जी ने संसार में जो जितने भी लोग लगे उनको जो कर्म करते हुए भी दुख से मुक्त नहीं दिखाई दिए, उनके मूल में यही कारण था कि वो कर्म किसी भोग की आकांक्षा में कर रहे थे। इसीलिए भगवान कृष्ण ने गीता में कहा मां फलेशु कदाचना, क्योंकि जब फल की कामना से तुम कर्म करोगे तो वो कर्म ही तुम्हारे बंधन का कारण बनेगा, और जब फल के भोग की वासना क्षीण होगी तो वो स्वयमेव आपके कर्म का परिणाम, वो फल बनेगा ही बनेगा, बिना चाहे ही आपको मिलेगा। इसलिए आपने सुना होगा वो एक लोकोक्ति है ये कि बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। तो कहते हैं ना कि अगर आपके अंदर से मांग खत्म हो जाए तो वो समस्त जिसकी चाह आपको है वो अपने आप पूरी हो जाती है, लेकिन मांग के रहते ही उसमें बंधन खड़ा होगा, बैरियर खड़ा होगा।
1: अच्छा, इस बंधन की बात हो रही है तो मेरे मन में ये सवाल आता है कि बंधन और मोक्ष का कोई संबंध है आपस में, क्या आशय है?
0: शंकराचार्य जी थे, आदिगुरु शंकराचार्य जी, जब वो निर्वाण शतकम लिखते हैं तो उसमें कहते हैं कि न बंधन न मुक्ति, यानी बंधन नहीं तो मुक्ति नहीं, बंधन और मोक्ष ये दोनों एक दूसरे के अनुपूरक हैं। जिस व्यक्ति ने बंधन को अपने जीवन में अनुभव किया वही मोक्ष का अनुगामी होगा। बंधन जब महसूस होगा, यानी जब भोग बंधन स्वरूप दिखाई देने लगे, तो निश्चित ही आप ये मान लें कि उन भोगों से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो रहा है।
1: जी, जी।
0: लेकिन जब तक भोग योग बना रहेगा, जब तक भोगों को पाने की कामना बनी रहेगी, तब तक व्यक्ति कभी भी बंधन से मुक्त नहीं होगा। विश्वामित्र जी कहते हैं कि श्री राम विद्वान लोग भोग वासना के क्षय को ही मोक्ष कहते हैं। विश्वामित्र जी राम जी से कहते हैं कि जो ज्ञानी पुरुष हैं, जो तत्वज्ञ हैं, तत्वदर्शी हैं, वो भोग वासना का क्षय होना ही मोक्ष कहते हैं। मोक्ष कुछ और नहीं है, भोग वासना का क्षय मोक्ष है। कहते हैं मोह का क्षय होना मोक्ष है।
1: जबकि आम सांसारिक जो मनुष्य है वो क्या सोचता है कि जन्म मृत्यु का जो चक्र है उससे मुक्ति ही मोक्ष है।
0: अब जन्म मृत्यु भी तो भोग का परिणाम है, भोग के लिए मिला हुआ है। आप देखिए जो जाति आयु और भोग, जो योग में शब्द आता है, जाति मतलब होता है जन्म, कि व्यक्ति का जन्म किसी अतृप्त भोग के कामना की वजह से यहाँ जन्म होता है, और पूरे जीवन जब तक उसकी आयु पूर्ण नहीं होती है वो उन भोगों में संलग्न होता है। ये तब तक व्यक्ति रहता है इस संसार में जब तक उसके प्रारब्ध क्षीण नहीं हो जाते। जब सुखदेव जी को जनक जी ने ज्ञान दिया तो जनक जी फिर उसके बाद सुमेरु पर्वत पर चले गए और वहां जब तक प्रारब्ध क्षीण नहीं हुआ तब तक वो शरीर में बने रहे, नहीं तो वो निर्विकल्प समाधि में स्थित रहे। अब देखिए यहाँ पर एक इशारा ये भी है कि जब भी शरीर मिलेगा वो प्रारब्धावशात मिलेगा और प्रारब्ध के क्षीण हुए बिना आप शरीर से मुक्त नहीं हो सकते, और शरीर से मुक्त नहीं होंगे तो भोग से भी मुक्त नहीं होंगे, क्योंकि शरीर पर आप भले अंतर जगत को अपने शांत कर लें और भोग की वासना का क्षय कर दें यानी मोक्ष की प्राप्ति कर लें, लेकिन शरीर के रहते शरीर के भोगों का तो भोग शरीर को भोगना ही है ना। भूख, प्यास, नींद, ये सब उसको आएगी, तो ये स्वाभाविक है,
1: शरीर के साथ जुड़ी वो एक स्वाभाविक सी बात
0: जी। तो वो कहते हैं कि विषय भोग वासनाओं के क्षय को ही विद्वान लोग मोक्ष कहते हैं और विषयों में होने वाली सुदृढ़ वासना को ही बंधन कहते हैं। देखिए कितना सुंदर परिभाषा है कि विषयों में जो आकर्षण है, जो आसक्ति है, ये क्या है, ये बंधन है, और विषयों की वासना का क्षय होना मोक्ष है।
1: मोक्ष है। अच्छा, तत्वज्ञ की इसमें चर्चा होती है
0: जी,
1: तो मैं जानना चाहती हूँ कि जो तत्वज्ञ है वो कौन है, कैसा होता है, क्या लक्षण होते हैं उसके।
0: बिल्कुल, तत्वज्ञ के बारे में जब विश्वामित्र जी राम जी को बताते हैं तो वो कहते हैं कि जिसकी दृष्टि राग द्वेषादि दोषों से रहित है वही तत्वज्ञ है, उसी ने जानने योग्य वस्तु को जाना है और वही विद्वान है। उस महात्मा पुरुष को भोग हठात अच्छे नहीं लगते, जैसे मरुभूमि में लता नहीं उगती, उसी प्रकार जब तक जानने योग्य तत्व का कुछ भी ज्ञान नहीं होता तब तक मनुष्य के हृदय में विषयों की ओर से वैराग्य नहीं होता है। अब एक चीज देखिए कि जब तक जानने योग्य आपको संसार में शेष चीजें रहेंगी तब तक आपके जीवन में वैराग्य नहीं होगा, यानी भोग की वासना का क्षय नहीं होगा। जब जानने योग्य को आप जान लेंगे, अब जानने योग्य क्या है, जानने योग्य यही है कि संसार के विषयों में वासना का होना बंधन है और वासना का क्षीण हो जाना मोक्ष है। जब आप ये बात जान लेते हैं तो फिर आप जानने योग्य को आपने जान लिया, फिर संसार के विषय आपके आसपास आएंगे, जैसे जनक जी संसार के विषय में ही हैं लेकिन वो उससे वैसे निर्लिप्त हैं जैसे कीचड़ से कमल। अध्यात्म में कमल और कीचड़ का उदाहरण बड़ा सामान्य रूप से दिया जाता है कि कीचड़ में कमलवत रहिए, इसका अर्थ ये हुआ कि इन दोनों का संबंध है लेकिन दोनों एक दूसरे से मुक्त हैं,
1: इसीलिए जनक विदेह हैं।
0: जनक विदेह कहलाते हैं कि देह में रह करके भी देह के किसी वासनाओं का उन पर प्रभाव नहीं है, वासनाएं क्षीण हो गई हैं, इसलिए वो विदेह हैं, और विदेह होकर के ही आप मोक्ष को अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि देह में तो आपको वासनाएं खींचेंगी, वो बंधन का कारण बन सकती हैं।
1: अच्छा, अब अगला प्रश्न मेरे मन में ये है कि श्री राम जी ने संसार को देखा है और जिस तरह से देखा है उसे चित्त उनका विचलित हो गया है, वैराग्य उसमें उत्पन्न हुआ है, इस चित्त को कैसे विश्राम मिलेगा, कैसे मिलता है विश्राम।
0: देखिए, चित्त को विश्राम तभी मिलेगा जब आप सदचिंतन करेंगे, और सदचिंतन क्या है, ये विश्वामित्र जी कह रहे हैं, हे मुनिवर आप लोग यह निश्चित रूप से समझ लें कि रघुकुल शिरोमणि श्री राम को गेय तत्व का ज्ञान हो गया है, क्योंकि गेय का मतलब जो जानने योग्य है,
1: हाँ,
0: क्योंकि इन्हें ये भोगों की रमणीयता अब आनंदित नहीं कर रही है। ये सबसे बड़ा प्रमाण है कि संसार के विषयों में जो व्यक्ति रमण करता है इसका मतलब ये है कि उसको अभी इस सत्य का पता नहीं है कि संसार में कभी भी सुख नहीं बल्कि अंततः उसका परिणाम दुख कहलाता है। और भोग, आपको योग में तो ये कहा भी गया है, परिणाम दुख, माने ऐसा सुख जिसका परिणाम दुख में परिणित हो जाए।
1: जी, जी,
0: तो संसार का कोई ऐसा सुख नहीं है जो परिणामी रूप से दुखी न करे आपको, है ना। तो उसको जो ज्ञानी व्यक्ति है वो जानता है कि इसको कहता है वो परिणाम दुख है, कि प्रकृति के किसी भी विषय के सानिध्य के साथ परिणाम में अंततः दुख ही प्राप्त करेंगे आप। तो राम जी को कहते हैं कि राम जी ये मान लीजिए आपकी ये अब संसार के रमणीय भोगों में इन्हें आनंद नहीं आ रहा है, इसलिए राम जी तत्व को बुद्धि द्वारा जानते हैं।
1: जी,
0: यानी जो बुद्धि तत्व को जाने, जैसे आप देखिए भौतिक जगत में भी जो वैज्ञानिक हैं, जो फिजिसिस्ट हैं, वो क्या करते हैं, उन कार्य कारण के संबंधों को उद्घाटित करते हैं। ऐसे ही आत्मिक जगत में जब अध्यात्म का चिंतन या अध्यात्म विद्या का तत्वज्ञ पुरुष चिंतन करते हैं तो उस तत्व की तरफ जानना चाहते हैं कि आखिर वो मूल तत्व क्या है जिसके द्वारा ये जो चित्त की जो प्रवाहमान अवस्था है ये स्थिरता को प्राप्त हो, आखिर क्यों चित्त विषय वासनाओं की तरफ भाग रहा है। तो उसको उन्होंने कहा कि ये अज्ञानता के नाते भाग रहा है, क्योंकि हम आज तक विषयों के पीछे भागे लेकिन विषयों से कभी शांति नहीं मिली, तो आने वाले समय में जिन विषयों की आकांक्षा पाल करके हम बैठे हैं और सोचते हैं कि हम उससे शांत हो जाएंगे, तो एक तो महज ये मुगालत है, एक दिवा स्वप्न की तरह है, क्योंकि अगर ये होता तो आज तक तो हमें शांति का कितनी बार अनुभव हुआ होता।
1: तो बड़ी गंभीर बात है कि सुख शांति आनंद की कामना हर मनुष्य को है, उसी प्रयास में वो जीवन बिता रहा है, प्रयास कर रहा है, लेकिन ये मिलना नहीं है।
0: नहीं, मिलना जैसे होश पूर्वक, जैसे कहते हैं इसको महात्मा बुद्ध कहते थे या उनको मानने वाले लोग कहते हैं कि माइंडफुल होकर के अगर आप पूरी एकाग्रता और पूरी तन्मयता के साथ अगर देखें तो जो भी आपके चित्त में जो वेग आया है, अगर थोड़ा सा आप स्पेस लें, पॉज लें, अल्प विराम लें, तो आपको लगेगा कि वो एक लहर की तरह आया है और फिर धीरे धीरे अपने आप शांत हो जाएगा। किसी भी भाव को आप देखिए जो अपना उद्वेग पैदा करता है चित्त में, चाहे क्रोध हो, चाहे वो प्रेम, प्रेम तो भाव यद्यपि बहुत ऊंची भाव है, मैं उसे नहीं मानता कि इस श्रेणी में आता है, लेकिन वो भाव थोड़ी देर बाद शांत हो जाता है, जैसे लहरें अपने आप शांत होती हैं। लेकिन अगर उस भाव के बहाव में आप आ गए तो फिर आप जीवन भर अशांत रहेंगे या उसी के आदती हो जाएंगे, जिसको ये न्यूरोसाइंस के लोग कहते हैं, वो एक लूप में व्यक्ति फंस जाता है और लगातार उसी को रिपीट करता है। तो हम लोग सांसारी लोग सामान्यतः उसी लूप को रिपीट कर रहे हैं, लेकिन जो तत्वज्ञ है वो वहां पॉज लेता है, जैसे ही वो प्रतिक्रिया नहीं करता कि जैसे कोई भाव बना और तुरंत उस प्रवाह में उसने प्रतिक्रिया की, क्योंकि आप प्रवाह में प्रतिक्रिया करते हैं और जैसे ही आप शांत होते हैं उस समय आप क्रिया करने में दक्ष होते हैं। तो उसके लिए तत्वज्ञ होना जरूरी है, तत्व से जानना जरूरी है, और तत्व ये है कि जैसे ही आप थोड़ा सा शांत होंगे, जगह देंगे, तो भाव अपने आप डायल्यूट होने लगेगा, शांत होने लगेगा और फिर आप सही निर्णय ले पाएंगे।
1: अच्छा, तो भगवान श्री राम जो हैं, सब कुछ उन्होंने देखा है
0: जी,
1: तीर्थ यात्रा के दौरान विचलित हुए हैं, तो देखने के बाद वो स्वयं समझ नहीं पाए, चित्त बहुत उनका विचलित है, बहुत परेशान है वो, तो ये उनका चित्त किस तरह से शांत होगा?
0: राम जी का चित्त कैसे शांत होगा अगर आप ये कह रहे हैं, तो ये कहते हैं कि वो गुरु के वचन से शांत होगा। यहाँ पर एक बड़ी बात आपने कहा कि गुरु के वचन, अब यहाँ पर हम श्रोताओं से ये कहना चाहेंगे कि जिस तरीके से हम लोगों की गुरु की मान्यता है, ऐसे वचन की बात यहाँ नहीं हुई है। यहाँ पर जैसे मैं फिर सुखदेव जी के वृतांत पर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि सुखदेव जी को जो ज्ञान अपने स्वयं के विवेक से मिला था और उसके बाद भी उनके मन में प्रश्न बने, यानी विवेक से ज्ञान होने के बाद भी प्रश्न का निर्मूलन नहीं हुआ, उसके बाद जब उस प्रश्न का उत्तर वही ज्ञान दिया गया जिस ज्ञान को उन्होंने अपने विवेक से पाया था,
1: तो
0: भी नहीं हुआ, क्योंकि वो कहते हैं कि तुम्हें जानता ही हूं जो बता रहे हैं आप। फिर उनको जनक के पास भेजा गया, यानी यहां जनक की जो भूमिका है वो गुरु की भूमिका है, तो जनक के पास जाकर के उनका चित्त शांत होता है, लेकिन खुद के द्वारा एक्सप्लोर किया हुआ ज्ञान उनके चित्त को शांत नहीं करता, पिता के द्वारा दिया ज्ञान उनके चित्त को शांत नहीं करता, शास्त्रों में भी वही बात लिखी हुई है, उन शास्त्रों के ज्ञान से भी उनका चित्त शांत नहीं होता। तो इसका मतलब यह हुआ कि यहां गुरु का वचन एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, कि गुरु वो होता है जो जिस ज्ञान को आपको देने वाला है या जिस ज्ञान को आप उससे प्राप्त करने वाले हैं, वो उसके प्रत्येक कोशिकाओं से वो ज्ञान प्रवाहित हो रहा है, उसके प्रत्येक क्रियाओं में वो ज्ञान बह रहा है।
1: यही मैं पूछने जा रही थी, हाँ। क्या कारण है कि वही जवाब आपकी बुद्धि ने आपको दी है, विवेक ने दिया है, वही जवाब आपको पिता ने दे दिया, लेकिन शास्त्रों से भी वही उत्तर आपको मिला है, लेकिन गुरु के वचन से या गुरु के सानिध्य से वो बात, उसका समाधान हो जाता है, चित्त शांत हो जाता है।
0: जी जी,
1: तो उसका कारण यही है,
0: उसका कारण यही कि वो जो सद्गुरु है वो सद जीता है, वो ऐसा नहीं है कि सद की बातें करता है,
1: जी, जी, जी।
0: वो सद को जीता है, सद चिंतन करता है, सद वचन बोलता है और सद को जीता है। इसी को कबीर साहब ने एक दोहे में शायद कहा है कि कथनी करे सुपूत हमारा, करनी करे सुनाती, रहनी रहे सदगुरु हमारा, हम रहनी के साथी। तो कथनी करनी और रहनी, ये तीन स्थिति बनी कि आपने शास्त्रों से सदवचन पढ़ा और उसे कह दिया, एक बात ये हो गई,
1: जी, जी,
0: और आपने शास्त्रों से सदवचन सुना, उसका श्रवण किया, मनन किया, एक दूसरी बात हो गई, एक स्थिति और अच्छी हुई कि मनन कर रहे हैं आप,
1: जी, जी,
0: और उसका निधिध्यासन कर रहे हैं, यानी वो आपके रहन में आ गया, आपके रहने में आ गया। तो जब रहने में आ गया तो फिर बच्चा या कोई भी व्यक्ति उससे सीखता है। सीखने की एक प्रक्रिया है जो आज मनोविज्ञान में जो सोशलाइजेशन की थ्योरी है कि आदमी सामाजिक संज्ञान कैसे लेता है, तो जॉन बेंडुरा नाम का एक मनोवैज्ञानिक है, वो कहता है कि जो आदमी इमिटेशन से सीखता है, अनुकरण से सीखता है, वो देखता है लोगों को, अपने माता पिता को, अपने आसपास को। तो जो गुरु होता है, गुरु को देखने मात्र से ज्ञान होता है, गुरु का दर्शन ही उसका वचन है। गुरु शब्द नहीं बोलता, गुरु का जीवन बोलता है, गुरु का एक्शन बोलता है। और हम लोग कहते हैं कि योर एक्शन लाउडर देन वर्ड, कि आपका कार्य आपके शब्दों से तेज बोलता है, उसकी ध्वनि बहुत आसानी से सुनने में आती है, लेकिन आदमी उसे क्रिया में नहीं, सिर्फ बातों में, वचनों में रखता है। तो मन, वचन और फिर जब वो कर्म में आता है, तब वो ज्ञान आपके जीवन का हिस्सा बन जाता है और आप उस ज्ञान से प्रकाशित दिखते हैं, फिर अन्य लोगों के प्रकाश की वजह भी बन जाते हैं।
1: जी, तो मतलब गुरु का जो जीवन है, उसका जो आचरण है, वही एक मुखर या बुलंद स्वर में एक संदेश देता है और एक ज्ञान दे देता है।
0: विश्वामित्र जी कहते हैं कि महात्मा श्री रामचंद्र जी के चित्त को के विश्राम के लिए ये पूज्यपाद वशिष्ठ जी ही यहाँ युक्ति का प्रतिपादन करेंगे। देखिए कितनी बड़ी बात है, जब वो जान रहे हैं, उन्होंने सुखदेव की कथा भी सुनाई, लेकिन कह रहे हैं कि नहीं, इनके जो गुरु वशिष्ठ हैं, ये वशिष्ठ ही वो युक्ति प्रतिपादित करेंगे जिससे राम के चित्त को विश्राम मिलेगा। अच्छा, एक बात और भी है कि गुरु जितना मूल्यवान है, उससे अधिक जो है महत्वपूर्ण है शिष्य की श्रद्धा। क्योंकि जो वशिष्ठ के प्रति राम की श्रद्धा है, क्योंकि वशिष्ठ उनके कुल गुरु हैं, उनके परदादा के गुरु रहे हैं, तो ऐसे में जो आस्था, जो श्रद्धा राम के अंदर वशिष्ठ के प्रति है, वो शायद विश्वामित्र के प्रति ना हो।
1: अच्छा, यही सवाल मैं करने जा रही थी कि जो भगवान श्री राम के चित्त की अवस्था है, विश्वामित्र उसको समझ रहे हैं
0: जी,
1: और वो ज्ञान भी उनके पास है, विश्वामित्र के पास भी है, लेकिन फिर वो वशिष्ठ जी से क्यों कहते हैं कि वो उपदेश करें?
0: वो कहते हैं कि क्योंकि ये इनके समस्त रघुवंशियों के ही नहीं, समूचे इक्ष्वाकु वंशियों के गुरु हैं, सदा से ये शिक्षक और नियंता हैं और कुल गुरु हैं। माने विश्वामित्र को, जैसे उस समय के ब्रह्मर्षि हैं वो, यानी उस समय के सबसे प्रतिष्ठित ऋषि हैं, यहाँ तक कि विश्वामित्र जी को भी उन्होंने राजर्षि से ब्रह्मर्षि का दर्जा वशिष्ठ जी ने ही दिया है।
1: अच्छा,
0: वो उतने पात्र व्यक्ति हैं। तो इसलिए कहा कि ये इनके जब मुख से ये बात आएगी, तो ये राम के लिए युक्ति पूर्वक होगी। तो वशिष्ठ जी से उन्होंने अनुरोध किया कि अब जो है राम को आप वो योग, जिस योग के प्राप्त होने के बाद बुद्धि से वैषम्य मिट जाता है, जिसको भगवान कृष्ण समत्वम योग उच्चते कहते हैं, बुद्धि समत्व में स्थित हो जाती है, ऐसी स्थिति में राम अब आ चुके हैं और आप इनको उपदेश करें ताकि वहां ये ठहर सकें, जैसे सुखदेव जी जाकर के जनक जी के यहाँ ठहर गए, ऐसे ही वो वशिष्ठ जी से आग्रह करते हैं कि अब आप इनको उपदेश करें, जिससे इनका भी चित्त सुखदेव जी की तरह ठहर जाए। और फिर जो ये तमाम चीजों में लगे हैं, जो तमाम इनके मन में प्रश्न उठ रहे हैं, इन अज्ञान जनित भ्रमों की तरफ दिमाग लगाने से शांत हो जाएं, क्योंकि इनको जो जानना है वो जान चुके हैं। अब जिसको भी जानने की ये बात करेंगे, वो उचित नहीं है, क्योंकि वो भ्रम होगा या वो भटकाव होगा। क्योंकि अंततः फिर वही जानेंगे जो आप जानते हैं। तो सत्य एक बार प्रकट हो जाने के बाद बार बार उसको खोजने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उस सत्य के साथ स्थित होने की, इसी को स्थित प्रज्ञा कहा गया, कि उस सत्य की स्थिति में आप उस वो प्रज्ञा को बनाए रखें।
1: तो दो महत्वपूर्ण बातें समझ में आती हैं कि एक तो वो गुरु जो ज्ञान देगा
0: जी,
1: उसका आचरण है ना, उसकी पहुंच
0: जी,
1: और दूसरी बात वो शिष्य और उसकी श्रद्धा।
0: बिल्कुल,
1: इससे ही ये बात बन रही है।
0: इसको और मैं कहूं तो गुरु और शिष्य, देखें ये हमेशा भगवान ने एक गीता में बात कही है कि मैं समासों में द्वंद्व समास हूं। जैसे किसी भी गुरु का प्राकट्य तब तक गुरु की उपाधि उसे नहीं मिलेगी जब तक उसका योग्य शिष्य ना हो। तो देखें तो शिष्य गुरु बनाता है या गुरु शिष्य बनाता है, ये दोनों एक दूसरे के अनुपूरक हैं। ठीक वैसे ही जैसे संसार के रिश्ते दो होते हैं, माता पिता, पिता पुत्र वगैरह वगैरह जो भी जितने रिश्ते हैं, उनके पीछे दोनों लगे हुए हैं। तो ऐसे में जो शिष्य की पात्रता है, तो राम जैसा पात्र शिष्य के लिए वशिष्ठ जी ने उस कुल का पौरोहित्य कर्म स्वीकार कर रखा था। ये कितनी बड़ी बात है, आप सोचिए कि जबकि वो चाहते थे कि मैं इससे मुक्त हूं, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, राम आएंगे तो इसलिए राम के लिए उनके गुरु के होने का सौभाग्य आपको मिलेगा। तो सोचिए वो गुरु का भी सौभाग्य है ऐसे योग्य शिष्य को पाना। कई बार क्या होता है कि गुरु को हम जानते भी हैं उसके शिष्य की वजह से। हाँ, तो ऐसा भी देखा गया है। वो ऐसा माने तो उसमें जो आपने कहा कि गुरु शिष्य का संबंध अनुपूरक संबंध है, ये अलग अलग नहीं है, इतना आसान भी नहीं है। कहते हैं कि जिस दिन आप पात्र होते हैं, गुरु स्वयं आपको धारण करता है, जैसे धर्म धारण करता है, ऐसे ही गुरु भी धारण करता है। वशिष्ठ जी सदा से प्रभु हैं, कुल गुरु हैं, इसलिए वशिष्ठ जी के वचन से राम जी को जो शांति मिलेगी, उसके लिए विश्वामित्र जी कहते हैं। और विश्वामित्र जी कहते हैं वशिष्ठ जी से कि महात्मन आप इनको वही ज्ञान दीजिए जिससे हमारे आपके बीच जो बैर भाव था उसमें शांति मिली थी।
1: बैर भाव था।
0: आप
1: संक्षेप में जल्दी से।
0: हाँ, मैं ये कहता हूँ कि जैसे एक चूंकि विश्वामित्र राजर्षि थे तो राजर्षि से ब्रह्मर्षि तक की यात्रा उनको करनी थी और उस यात्रा में जो तमगा था कह सकते हैं या जो उपाधि थी
1: जी।
0: वो वशिष्ठ जी के द्वारा दी जानी थी और चूंकि राजर्षि थे तो राजा जो है अपने पुरुषार्थ से चीजों को अर्जित करना चाहता है तो वो ब्रह्म ऋषि होना भी अपने पुरुषार्थ से प्राप्त करना चाहते थे और पुरुषार्थ में कहीं ना कहीं अहंकार मिटता नहीं है तो वो अहंकार के साथ खड़े रहे। और कहा तो ये तक जाता है पुराणों में कि विश्वामित्र जी ने क्रोध में आकर के वशिष्ठ जी के 100 पुत्रों की हत्या कर दी। ये मुझे राजर्षि से ब्रह्मर्षि होने में बाधा है क्योंकि ये ब्राह्मण अपने अहंकार में डूबा हुआ है और मुझे ब्रह्मर्षि की उपाधि नहीं दे रहा है
1: जी, जी,
0: तो एक दिन क्या होता है कि वो विश्वामित्र जी वशिष्ठ को ही मारने उनके आश्रम में आ जाते हैं, छुपे हुए हैं। तब तक वो ब्रह्म मुहूर्त में जब विश्वामित्र वशिष्ठ जी जागते हैं तो ऐसे में हवाओं का जो स्पर्श है उनकी पत्नी को बड़ा अलग लगता है। कहती हैं वो कि आज क्या है कि आज कुछ ये हवाएं या जो यहाँ का सौंदर्य है बड़ा बदला बदला सा लगता है। तो वो कहते हैं वशिष्ठ जी ये सब विश्वामित्र के तप का प्रभाव है।
1: अच्छा।
0: तो जब विश्वामित्र की प्रशंसा उन्होंने की विश्वामित्र के अनुपस्थिति में तो विश्वामित्र को रोना आ गया। कहते हैं कि मैं इनसे इतना द्वेष करता हूं और जबकि ये तो मेरे प्रशंसक हैं।
1: जी, जी, जी।
0: तो वो आते हैं और आकर के उनके चरणों में गिर पड़ते हैं और क्षमा मांगते हैं कि ये मुझसे क्या हो गया। तो जब गिरते हैं और अहंकार शून्य होते हैं तो फिर वहां पर वशिष्ठ जी उनको उठाते हैं, कहते हैं उठो ब्रह्मर्षि उठो। तो ब्रह्मर्षि का मतलब होता है कि जहां पर उसी परम तत्व को सब में देखना
1: जी, जी, जी।
0: तो ऐसे में फिर कोई दूसरा अहंकार के खड़ा होने की वजह ही नहीं बनेगा ना। जैसे आप जब सर्वव्यापी ईश्वर को आप जान गए और उसी सर्वव्यापी ईश्वर में ये पूरे जगत की क्रिया को होते हुए आप देख रहे हैं तो फिर ऐसे में किस क्रिया के बदले आप अपने मैं को खड़ा कर पाएंगे। तो आदमी अहंकार शून्य हो जाएगा। अहंकार शून्य होना यानी निर्वैर भाव, यही बैर अहंकार से खड़ा होता है। तो कहते हैं कि हमारे बैर की शांति यानी जब मैं अहंकार शून्य हुआ तो हमारा बैर शांत हो गया। तो ऐसे में राम जी के अंदर जो अभी ये बात आ रही है कि संसार कैसे बना, संसार में क्या है, तो इन्होंने जो जानने योग्य है वो जान लिया है। अब इनको उस परम तत्व के साथ आप उपदेश करें ताकि ये वहीं प्रकाशित हो सके। तत्वज्ञ तो हैं ही, ये तत्व दर्शन इन्हें हो चुका है और उपदेश के लिए वो उनसे प्रार्थना करते हैं।
1: तो शशिकांत जी, आज बहुत ही सुंदर चर्चा रही योग संवाद कार्यक्रम में, आज आप हमारे बीच उपस्थित हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक आभार।
0: नमस्कार।
1: तो श्रोताओं, योग संवाद कार्यक्रम में हमने चर्चा की श्री राम को उपदेश हेतु विश्वामित्र जी का जो अनुरोध था इस विषय पर। उम्मीद है आज का ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। चलते चलते आपको हम बता दें कि इस कार्यक्रम में विशेषज्ञ के तौर पर हमारे बीच उपस्थित होते हैं योग अध्यात्म और जीवन विज्ञान विशेषज्ञ डॉक्टर शशिकांत मणि त्रिपाठी, मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा का, परिकल्पना अदिति गौड़ की, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी का, समन्वय सहयोग सतीश बाथम का, और आपसे बातचीत कर रही थी मैं सुनीता सिंह। अब इस कार्यक्रम से अनुमति दें। नमस्कार, आप सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। आइए अब सुनवाते हैं शहीद भगत सिंह नाटक का पहला भाग, विशेष कार्यक्रम।
2: नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर यह रेडियो आजाद हिंद है। अब वक्त विशेष कार्यक्रम का। आज के इस खास कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं शहीद भगत सिंह नाटक के संपादित अंश।

0: जिसका मंचन हुआ 23 मार्च यानी शहीद दिवस के मौके पर। इस नाटक का निर्देशन किया सुंदरलाल मालवीय ने। यह प्रस्तुति रही माच शैली में। इस कार्यक्रम का पहला भाग है।
1: तो देवियों और सज्जनों, शहीद भगत सिंह के बलिदान को हम लोक स्वर में कहने जा रहे हैं। पंजाब की मिट्टी के लाल को मालवा की मिट्टी की ओर से एक भावांजलि है ये। आप जानते ही हैं कि माच मालवा की लोक संस्कृति का परिचायक है, जिसका इतिहास लगभग 300 साल पुराना है। हम आपको बता दें कि माच में गायन और अभिनय साथ साथ होता है, कथानक के संवाद गायन के साथ आगे बढ़ते हैं। परंपरागत रूप से माच में स्त्री पात्र को भी पुरुष ही निभाया करते थे, लेकिन अब मुख्य स्त्री पात्र को स्त्रियां भी निभाती हैं। हारमोनियम, ढोल, नगाड़ा, सारंगी और बांसुरी के साथ कई लयकारियों और अलग अलग तालों में माच का खेल आकार लेता है। देवी और सज्जनों, माच का एक रोचक पूर्व रंग होता है, जिसमें जर्जर की स्थापना, जय जयकार, पात्रों की सलामी यानी परिचय और लोक देवता भैरवनाथ की वंदना का क्रम होता है, और फिर माच की गजल गाई जाती है। इसके बाद बेठप आता है, परिचय देता है, भिष्टी को बुलाता है, छिड़काव करवाता है, फिर भर्रासन को जाजम बिछाने के लिए बुलाता है, यूं ठाट बाट जमाता है और कहानी आगे बढ़ती है। तो इस तरह माच मालवा की एक समृद्ध लोक नाट्य परंपरा है, जिसके साक्षी आप बनेंगे मालवा की माटी की सुगंध के साथ। तो लीजिए, प्रस्तुत है माच शैली में नाटक शहीद भगत सिंह।

सबसे पहले अपने कहीं करना शरीर छिटकाव कर ही देना। तो इकल ये सबसे पहले भिष्टि जी के बोलो

0: मैडम साहब बोलो क्यों आवाज नहीं आता।
1: अरे ऐसा है कि आज यहाँ अमर शहीद सरदार भगत सिंह जी की सवारी आने वाली है।
0: भगत सिंह जी की सवारी आ रही
1: है? तुम्हारा भात खुली क्या भात?
0: अरे वाह,
1: तुम्हारे कई काम मिले मालूम? अरे यहाँ पे तरी में छिड़काव करना है।
0: ऐसा?
1: हाँ।

0: इतनी जल्दी भूली गया? आ तो जा सगली बच्चा घर में से चल लो रही, अरे बाहर आ, यहाँ तू बता वो सखी सहेली के लेता
1: लो जानी है मामा पे।
0: आ

0: हेलो मैं भी आई नहीं ना सबके बुलाई लाई बताओ कई काम पड़ी के जो हम सबके बुलाई
1: इसो भाभी साहब क्या यहाँ सरदार भगत सिंह जी की सवारी आने वाली
0: अरे वाह
1: हाँ मैं आपके यहाँ पे ज्यादा बिछाई
0: लो अभी बिछाई था
1: हाँ बिछाओ बिछाओ

0: बगीना चढ़िया।
1: हाँ
0: अच्छा ये बताओ क्या कौन सा देवी देवता को पूजित करो।
1: लो यो भी सुनावा
0: सुना।

गणपति को भगवान सरस्वती माता को पूजन करो। हाँ, मैं आत्मा से परमात्मा तक की बात करूँ। अरे वाह, तो अब हमारे योग बताओ।

0: निर्गुण को प्रकाश फैले है सात रंग को, वैसो प्रकाश आपके की जाजम में है, वो आपको काम हुई हो, अबे आप जय सको जा।
1: अरे हमारा काम हुई क्यों?
0: हाँ।

0: चलो अबे सगलो काम हो गया, अब तो बस एक इंतजार है कि सरदार भगत सिंह जी की सवारी आई जाए। वाह वाह वाह बस। अरे अरे लो भगत सिंह जी की सवारी आई आएगी तो बोलो इनकलाब
1: जिंदाबाद।

0: जिंदाबाद जिंदाबाद बेटा इनकलाब जिंदाबाद। कई बात है, तू भी क्रांतिकारी हुई क्यों?
1: अरे क्या, अरे क्रांतिकारी हुई जो इतनी मारी हैसियत का?
0: अरे
1: मैं तो बस आपका साथे रह रही के नारो लगाना सीखी जाऊँ। योज बोलते
0: हमारा साथ है, अच्छा अच्छा लोग नारो लगाना सीखी जाए।
1: अब आप आई गया तो मैं यूँ कहूँ कि ये माँ देखवा वाला भला भला मनक है, तो इनको थोड़ा अपना परिचय दे दो।
0: अरे तो बेटा ये सब हमारे पहचाने नहीं कहीं।
1: अरे आपके तो देश को बच्चों बच्चों जाने हैं, पर कही है कि सभा में आए तो एक कायदो
0: सही बात।
1: तो आप थोड़ा सा परिचय दे दोगे तो अच्छा रहेगा।
0: ठीक है, सुनो हमारी बात।

0: सुनियो कि आप आजादी का दीवाना हो, आपको नाम भगत सिंह है।
1: फिर
0: अब मारे यो बताओ कि आपका माता पिता कौन है, ने आपको जन्म कहाँ हो।
1: यो भी सुनो।
0: सुना

0: आपने क्योंकि आपको जन्म 1907 में हुआ, न आपके पिताजी का नाम किशन सिंह जी, न माता जी का नाम विद्यापति।
1: एकदम सही।
0: अब हमारे आप यो बताओ कि आपका गुरु जी कौन है?
1: पहला हमारा भाई बहन का बारे में।
0: अरे हाँ हाँ, पूरे परिवार को तो मालूम पड़ना चाहिए। तो आप हमें ये बताओ कि आपका भाई बहन कितना है, न आपका काका जी कहीं करें।
1: यो भी सुनो,

0: साहब कहीं सुनी।
1: अरे आपने, क्योंकि आपके दो भाई एक बहन, एक आपको कहो जो क्रांतिकारी
0: क्रांतिकारी,
1: अब तो बताइए तो मारे कि आपको गुरुजी कौन है,
0: उनको भी नाम सुनो ना।

0: आज के इस खास कार्यक्रम में आप सुन रहे थे नाटक शहीद भगत सिंह के संपादित अंश। ये इस कार्यक्रम का पहला भाग था। अगले कार्यक्रम तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: हमारे विशेष कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे सरदार शहीद भगत सिंह नाटक का पहला भाग। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए प्रस्तुत है किशोर कुमार म्यूजिकल नाइट पर रेडियो।

रेडियो रिपोर्ट में हम आपको लिए चल रहे हैं रविंद्र भवन में, जहां रविवार की शाम याद किया गया मशहूर पार्श्व गायक, अभिनेता और हर फनमौला कलाकार किशोर कुमार को।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद। लीजिए अब प्रस्तुत है रामकृष्ण विश्वास पर केंद्रित कार्यक्रम याद करो कुर्बानी।
0: याद करो कुर्बानी। पर इस वक्त आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। मैं हूं आपकी दोस्त सुनीता सिंह, लेकर उपस्थित हूं कार्यक्रम याद करो कुर्बानी। श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में हम यादें साझा करेंगे रामकृष्ण खत्री जी की। लखनऊ जेल की एक बैरक में काकोरी ट्रेन डकैती के आरोप में गिरफ्तार क्रांतिकारियों को बंद कर दिया गया था। एक दिन तय हुआ कि क्रांतिकारी लोग जेल की बैरक में अपनी अदालत अलग से स्थापित करें, उनकी सुनवाई हो और उस मुकदमे का फैसला सुनाया जाए। 2-3 दिनों तक उन्होंने न्याय का नाटक बड़ी ही सफलतापूर्वक खेला। बाकायदा अभियुक्त लोग कटघरे में खड़े होते थे, सरकारी वकील उन पर आरोप लगाता और सफाई का वकील उन तर्कों को काटता था। न्यायाधीश के स्थान पर बैठाया जाता था रामकृष्ण खत्री को। जिस दिन क्रांतिकारी अदालत ने अपना निर्णय सुनाया, उस दिन सभी के दिलों में ये जानने की उत्सुकता थी कि न्यायाधीश महोदय किसको क्या दंड सुनाते हैं। जज के रूप में रामकृष्ण खत्री ने अपना आसन ग्रहण किया। उन्होंने कागजों को उल्टा पलटा और फिर अपना निर्णय सुनाना प्रारंभ किया। श्रोताओं, हमने चर्चा की कि लखनऊ जेल की एक बैरक में काकोरी ट्रेन डकैती के आरोप में गिरफ्तार क्रांतिकारियों ने अदालत का एक नाटक खेला और अलग अलग क्रांतिकारियों को सजा सुनाने की बात सोची, और जज के रूप में रामकृष्ण खत्री ने अपना आसन ग्रहण किया और निर्णय सुनाना प्रारंभ किया। पहले उन्होंने उन लोगों के नाम पढ़े जिन्हें कम सजाएं दी गई थीं, यानी उन्होंने कुछ को 5 वर्ष, कुछ को 10 वर्ष और कुछ को आजन्म कारावास की सजाएं सुनाई। जब उन्होंने अभियुक्त ठाकुर रोशन सिंह को 5 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई, तो रोशन सिंह अपनी सजा सुनकर चीख पड़े। उन्होंने कहा कि इतनी कम सजा मेरा अपमान है, इतनी कम सजा मेरी ठकुरास के लिए कलंक है। जज महोदय ने धरती पर अपना मुक्का पटकते हुए कहा, ऑर्डर ऑर्डर। ये ऑर्डर ऑर्डर सुनकर और न्यायाधीश महोदय को धरती पर मुक्का पटकते हुए देखकर ठाकुर साहब ताव खा गए। वे भी अपना मुक्का तानकर न्यायाधीश की ओर लपके। न्यायाधीश महोदय ने सोचा कि ठाकुर का क्या ठिकाना, कहीं सचमुच न मार बैठे। वे अपने कागज पत्तर उठाकर भाग खड़े हुए। अन्य लोगों ने ठाकुर साहब को रोका और फिर उन्हें शांत किया। हालांकि ये न्याय का नाटक मात्र था, पर उन्हें सचमुच ही इस पर दुख हुआ था और क्रोध आ गया था। क्रोध शांत होने पर अगले ही क्षण उन्होंने रामकृष्ण खत्री जी के गले में हाथ डाल दिया और जो बातें कही वो हम आपको बताएंगे इस देशभक्ति रचना के बाद। इंतजार कीजिए बस कुछ पलों का।

श्रोताओं, 70 साल आजादी याद करो कुर्बानी, इस कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं रामकृष्ण खत्री जी की। जैसा कि हमने आपको बताया कि लखनऊ जेल की एक बैरक में काकोरी ट्रेन डकैती के आरोप में गिरफ्तार क्रांतिकारियों ने न्याय का मुकदमा किया और अलग अलग क्रांतिकारियों को छोटी बड़ी अपने अंदाजे से सजा सुनाई। और जब ठाकुर रोशन सिंह को सजा सुनाई गई तो वो नाराज हो गए कि उनकी सजा इतनी कम क्यों है। लेकिन जब शांत हुए तो अगले ही क्षण उन्होंने रामकृष्ण खत्री के गले में हाथ डाला और कहने लगे, तेरा क्या अनुमान है? क्या सचमुच मुझे 5 वर्ष के कारावास की सजा होगी? इतनी कम? हाँ ठाकुर साहब, भाई मेरा तो यही अनुमान है। और तेरे इस अनुमान का कारण क्या है? मेरे इस अनुमान का कारण ये है कि एक तो आप ट्रेन लूटने वालों में सम्मिलित नहीं थे और फिर आपके विरुद्ध कोई बहुत गंभीर आरोप भी तो नहीं है। इस पर ठाकुर साहब ने कहा, पर यार सचमुच ही अगर ऐसा हुआ तो बहुत बुरा होगा। मुझसे कम उम्र के लड़कों की लंबी सजाएं हों, उम्र कैद हो, फांसियां लगें और मुझे 5 साल की सजा, ये सचमुच मेरा अपमान होगा। ठाकुर साहब, सजाएं उम्र के आधार पर नहीं जुर्म के आधार पर दी जाती हैं। रामकृष्ण खत्री जी ने उन्हें समझाने का प्रयास किया। चलो खैर देखा जाएगा, पर तू आज मेरे हाथ आया नहीं, ये अच्छा ही हुआ। हाँ सचमुच अच्छा ही हुआ, मुझे तो आप बहुत ही गुस्से में नजर आ रहे थे और अगर सचमुच मैं पकड़ जाता तो कुछ तो मुश्किल में पड़ता। और दोनों हंस पड़े। ऐसे दीवाने थे वो क्रांतिकारी जो कम सजा की बात सोच कर भी दुखी हो जाते थे। दोस्तों, हमारी चर्चा आगे भी जारी रहेगी, लेकिन उसके पहले एक छोटा सा अंतराल, आइए सुनते हैं ये देशगान।

इस कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं रामकृष्ण खत्री जी की। हमने बात की कि न्यायालय का एक नाटक खेला गया और वहाँ क्रांतिकारियों ने एक दूसरे को सजा सुनाई, एक अंदाजा लगाया। क्रांतिकारियों के बीच इस तरह के मनोविनोद अक्सर हुआ करते थे। रामकृष्ण खत्री भी काकोरी केस के एक अभियुक्त थे। यदि भी वे भी काकोरी ट्रेन डकैती में सम्मिलित नहीं थे, पर वे अपने दल के साथ अन्य अभियानों में सम्मिलित हो चुके थे। वे क्रांतिकारी दल में किस प्रकार सम्मिलित हुए, ये कहानी भी बहुत रोचक है। रामकृष्ण खत्री महाराष्ट्र के चांदा जिले के अंतर्गत चिखली गांव के रहने वाले थे। अपने विद्यार्थी काल में वे उग्र विचारों के थे और डॉक्टर मुंजे और बाल गंगाधर तिलक से बहुत प्रभावित थे। परिस्थितियों के कारण उन्होंने अपनी युवावस्था में ही संन्यास ले लिया और उदासी साधु संप्रदाय के सचिव बन गए। अब वे स्वामी गोविंद प्रकाश के नाम से साधना कर रहे थे। संयोग ऐसा हुआ कि एक बार स्वामी गोविंद प्रकाश की भेंट चंद्रशेखर आजाद से हो गई। चंद्रशेखर आजाद भी उन दिनों एक साधु के वेश में रह रहे थे। एक आश्रम का महंत मरने वाला था। मरने के पहले वो किसी ब्राह्मण वंश के बालक को गोद ले लेना चाहता था, ताकि उसके बाद आश्रम और उसकी संपत्ति का वो उत्तराधिकारी बन सके। क्रांतिकारियों ने सोचा कि किसी क्रांतिकारी को उस साधु का शिष्य बना दिया जाए, जिससे साधु की मृत्यु के उपरांत उसकी जायदाद क्रांतिकारियों के हाथ लग जाए और क्रांति की गतिविधियां चलाने में सुविधा हो। सबने निश्चय करके चंद्रशेखर आजाद को उसका शिष्य बना दिया। आजाद ने सोचा कि गुरुजी तो मरने ही वाले हैं, इसलिए उनकी अच्छी सेवा कर ली जाए। आजाद की सेवा से वो साधु स्वस्थ होने लगा। आगे क्या हुआ ये हम आपको बताएंगे इस देशभक्ति गीत के बाद।

श्रोताओं, स्वामी गोविंद प्रकाश से आजाद का पूर्व परिचय था। दोनों एक दिन साधु वेश में मिले। उन्होंने एक दूसरे को अपने अनुभव सुनाए। आजाद ने बताया कि हमारे महंत जी तो मरने के बजाय अब और तगड़े हो गए हैं। जिस लालच में मैं उनका शिष्य बना था, वो उद्देश्य तो अब दूर होता जा रहा है, इसलिए मैं उसे छोड़कर भागने वाला हूँ। स्वामी गोविंद प्रकाश ने बताया कि अपनी स्थिति से संतुष्ट तो मैं भी नहीं हूँ, क्योंकि मैंने बहुत गहराई से उतरकर देख लिया है कि केवल कुछ पहुंचे हुए साधुओं को छोड़कर शेष स्वार्थी और चरित्रहीन ही हैं, तथा उनसे मेरी निभति नहीं है। आजाद ने गोविंद प्रकाश जी को फुसलाया, कहां इस उम्र में सन्यासी बनने चले हो? सारी जिंदगी ऐसे लोगों के बीच कैसे निकालोगे? अच्छा है कि इन लोगों द्वारा पतित किए जाने के पहले क्रांतिकारी दल में आ जाओ और बंदिनी भारत माता की कुछ सेवा कर लो। बात स्वामी गोविंद प्रकाश की समझ में आ गई। वे आजाद के कहने से क्रांतिकारी दल में सम्मिलित होने के लिए राजी हो गए। आजाद तो पहले से ही क्रांतिकारी थे। दोनों ने अपने अपने रंगे हुए कपड़े उतार फेंके और सुमरनी के स्थान पर रिवॉल्वर अपना लिया। अब वे स्वामी गोविंद प्रकाश नहीं, क्रांतिकारी दल के रामकृष्ण खत्री थे। श्रोताओं, याद करो कुर्बानी इस कार्यक्रम में आज हम आपसे यादें साझा कर रहे हैं रामकृष्ण खत्री जी की। हमारी चर्चा आगे भी जारी रहेगी, लेकिन उसके पहले आइए सुनते हैं राष्ट्र वंदना के ये स्वर।

0: रामकृष्ण खत्री के पास यौवन था, बलिष्ठ देह थी, सूझबूझ थी और दल के प्रति निष्ठा थी। वे क्रांतिकारी दल की सभी योजनाओं और अभियानों में सम्मिलित होने लगे। उन्हीं दिनों 9 अगस्त सन 1925 को राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने सहारनपुर लखनऊ डाउन पैसेंजर गाड़ी रोककर उसमें रखा अंग्रेजी खजाना लूट लिया। इस ट्रेन डकैती के फलस्वरूप जो व्यापक धर पकड़ हुई, उसके अंतर्गत बहुत से क्रांतिकारी गिरफ्तार कर लिए गए। बहुत से ऐसे क्रांतिकारी भी गिरफ्तार कर लिए गए जो ट्रेन डकैती में सम्मिलित नहीं थे। रामकृष्ण खत्री भी इसी प्रकार गिरफ्तार कर लिए गए थे। उन्हें सभी क्रांतिकारियों के साथ लखनऊ जेल भेज दिया गया। जेल अधिकारियों के साथ प्रारंभिक झगड़ों और अनशनों के परिणाम स्वरूप क्रांतिकारियों को जेल में कुछ सुविधाएं मिली। वे एक साथ मिल सकते थे, गपशप कर सकते थे और खेल कूद में भाग भी ले सकते थे। और इसी मनोविनोद के तहत उन्होंने मुकदमे का नाटक किया था और रामकृष्ण खत्री जी ने जज के रूप में कुछ फैसले सुनाए। विचित्र बात ये है कि रामकृष्ण खत्री द्वारा सुनाया गया फैसला हैमिल्टन द्वारा सुनाए गए फैसले से बहुत अधिक मिलता हुआ था। जो दंड उन्होंने स्वयं के लिए सुनाया था वो बिल्कुल ठीक निकला। 6 अप्रैल सन 1927 को लखनऊ की अदालत ने काकोरी केस का निर्णय दिया। इस निर्णय के अनुसार रामकृष्ण खत्री को 10 वर्ष के कठोर कारावास का दंड मिला। क्रांतिकारियों का न्यायाधीश सीखचों के अंदर बंद कर दिया गया। नमन ऐसे महान क्रांतिकारी को। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम याद करो कुर्बानी। इसमें आज हमने चर्चा की रामकृष्ण खत्री जी की। उम्मीद है आज का ये कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। किसी नए क्रांतिकारी की जीवनी के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दें अपनी रेडियो सखी सुनीता सिंह को। नमस्कार। आप बने रहिए रेडियो आजाद हिंद के साथ 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। सुनते रहिए देश का चैनल, देश के लिए।
1: याद करो कुर्बानी।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आइए आप सुनते हैं कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। इसके अंतर्गत सुनिए नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी विषय पर विषय विशेषज्ञ निहारिक पंसोरिया जी से रत्नेश सोनी की बातचीत।
2: आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया FM 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। कार्यक्रम है स्वास्थ्य चर्चा और इस कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे, वो विषय है नशीली दवाओं का दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय मुहिम। और इस विषय पर बात करने के लिए आज स्टूडियो में हमारे साथ हमारी मेहमान मौजूद हैं निहारिका जी, जो NIWCYD बचपन के साथ कार्य कर रही हैं इस फील्ड में। उनसे जानेंगे कि वो इस फील्ड में कैसे आई। निहारिका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में।
3: धन्यवाद, सभी को नमस्कार।
2: तो निहारिका जी, हम बात कर रहे हैं नशे का जो दुरुपयोग है देश में और इसकी रोकथाम है, तस्करी, इस फील्ड पर आप बहुत समय से काम कर रही हैं, तो आपकी यात्रा कब प्रारंभ हुई, आप इससे कैसे जुड़ी?
3: लगभग 12 वर्षों से मैं समाज सेवी के रूप में भोपाल शहर में काम कर रही हूँ और भोपाल शहर के ऐसे समुदाय में काम कर रही हूँ जिन्हें हम आमतौर पर बस्ती क्षेत्र या झुग्गी झोपड़ी के नाम से जाना जाता है। हालांकि शब्द का उपयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन आम भाषा में उनका उपयोग किया जाता है। तो खास तौर पर वहाँ के समुदाय में रहने वाले जो बच्चे हैं, युवा हैं और परिवार है, उनके साथ मैं लगातार काम कर रही हूँ, जहाँ पर मैंने देखा कई बार बहुत सारे जो बच्चे और महिलाएं स्कूल से बाहर होते हैं या डोमेस्टिक वायलेंस का जब वो सामना करते हैं, सबसे बड़ा जो कारण नज़र आता है वो है नशा। नशे के कारण बहुत सारे जो बच्चे हैं वो स्कूल से बाहर हैं या महिलाओं के साथ में जो हिंसा है इस वजह से होती है, और उसका कारण ये भी है क्योंकि वो आसानी से उस जगह पे उपलब्ध है। तो ये एक बड़ा कारण जो है मुझे समझ में आया। तो फिर हमने इस पे काम करने की शुरुआत की कि समस्याओं के पीछे की जो वजह है नशा, उस पे काम करना बहुत ज़रूरी है, उस पे लोगों को जागरूक करना बहुत ज़रूरी है और लोगों को समझाना ज़रूरी है कि नशा हमारे जीवन में किस तरीके से परेशानियाँ लेकर आती है।
2: आप इसमें काम कर रही, नशा इतने आसानी से बच्चों को या जो नशा करने वाले उनको बड़े आसानी से मिल रहा है बाजार
3: में? जी हाँ, बिल्कुल।
2: इसके पीछे आप क्या मानती, किसकी खामी है और इतने आसानी से कैसे उपलब्ध है जबकि सरकार इस पर रोक लगाती खासी?
3: सरकार तो बहुत काम कर रही है, लेकिन जो ज़मीनी स्तर पे जो काम होना चाहिए, खासतौर पे मॉनिटरिंग का जो काम होना चाहिए, मुझे लगता है वो व्यवस्था में अभी कमी है, हम उसे मजबूत करने की आवश्यकता है। क्योंकि आसानी से अवैध तरीके से जिन जगहों पर बिक रहा है, और स्लम की यदि हम बात करें तो बहुत ही घनी बस्ती क्षेत्र होता है जहाँ पर थोड़ा ढूंढना भी शायद मुश्किल है, तो वहाँ पर बच्चों के लिए जो उपलब्धता है हमें उस पर मॉनिटरिंग पे बहुत काम करने की आवश्यकता है, और उन तक जो पहुँच रहा है तो कहीं ना कहीं वो चैनल भी स्ट्रांग होगा। तो यदि हम जो हमारा तंत्र है उसको मजबूत करके ज़मीनी स्तर पर यदि काम करने की आवश्यकता है, जो मुझे लगता है, क्योंकि वहाँ तक लोगों की पहुँच नहीं है और बहुत ही आसानी से यदि बच्चों को मिल रहा है तो ये हमारे लिए भी

0: बच्चे उनके लिए एक बहुत आसान टारगेट है,
1: अच्छा
0: क्योंकि एक तो बच्चों को प्रभावित करना बहुत आसान होता है, और दूसरा क्योंकि आज जो बच्चे हैं उनकी बहुत ख्वाहिशें सपने हैं, तो कहीं उसका लालच देना और उनको अपने काबू में करना बहुत आसान है। और हम देखें कि बच्चे जो हैं, एक तो उनसे श्रम कराना बहुत आसान होता है, उसकी कीमत ज़्यादा नहीं देनी पड़ती है, और क्योंकि बच्चे का जो जुड़ाव है उनके समुदाय स्तर पर बहुत ज़्यादा होता है, एक विश्वसनीय भी होता है। तो जो मुझे समझ में है कि खासतौर पर युवा लड़के जो हैं इसमें बहुत शामिल हैं, और वो नशे के आदी भी हैं, तो शायद उन्हें लालच दे के अपने साथ में जोड़ना और उनसे काम करवाना, ये उनके लिए बहुत आसान मुझे लगता है जो है। क्योंकि अभी कुछ युवाओं के साथ जब मेरी बातचीत हुआ, तो जब मैंने उनको जिस हालत में देखा, तो बहुत ज़्यादा नशा करते हुए, फिर वॉयलेंस करते हुए, तो थोड़ा समय लिया उनसे बात करने का। जब गहरी उनसे बातचीत हुई, तो समझ में आया कि घर में क्योंकि बहुत सारी दिक्कतें परेशानी होती हैं, तो कई बार बच्चे बहुत परेशान होते हैं कि हम किससे जाके अपनी बात कहें। तो आजकल की जो युवा जनरेशन, उन्हें लगता है कि यदि हमको अपने स्ट्रेस को दूर करना है, तो नशा एक सुकून देने वाली जगह है, या नशा जो है बहुत हमको आराम देगा। तो वहाँ से बच्चे शुरुआत करते हैं, जुड़ते हैं अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए, और फिर धीरे धीरे वो एक ऐसे चैनल से जुड़ते हैं और उनका उपयोग हो रहा है ये वो समझ नहीं पाते हैं। हाल ही में एक बच्चे ने सुसाइड अटैम्प्ट किया, वो नशा मुक्ति केंद्र में ही उसने सुसाइड अटैम्प्ट किया, क्योंकि उसको नशे की बहुत लत थी।
1: जी
0: जब आपके हाथ में नशा आता है, तो आप सोचते हैं कि मैं इसे ट्राई करूँ, कोशिश कर लूँ, क्योंकि जिज्ञासु तो बहुत होते हैं युवा साथी। तो उसने शुरुआत जस्ट एक शौक के तौर पर टेस्ट करने के लिए किया, और धीरे धीरे उसकी आदत लगी। जब उसे नहीं मिल पाया, तो उसकी लत से फिर उसने सुसाइड अटैम्प्ट किया। तो युवा जो है, जिस तरीके से जुड़ रहे हैं, शौक के तौर पर जुड़ते हैं, फिर स्ट्रेस को रिलीज करना अपना, और फिर धीरे धीरे वो इस चैनल में शामिल हो जाते हैं।
1: दो तीन चीज़ें अभी आपसे जो बातचीत हुई अभी तक की, उसमें समझ में आई कि युवा इससे आसानी से जुड़ रहे हैं। एक कारण उनका लालच, तो हम आपसे जानना चाहेंगे वो किस तरह का लालच ये देते हैं बच्चों को, या सबसे पहली पे हमारा जानना उद्देश्य कि पहला क्या उद्देश्य होता होगा या क्या तरीका होता होगा जो लोग बच्चों को इसमें लाते हैं या नशे के लिए आगे लाते हैं, एक बात। दूसरी बात कि आपने कहा स्ट्रेस, तो ये स्ट्रेस होता है इसलिए नशे की तरफ बढ़ जाते हैं, या दो बातें कि नशे की तरफ जाते हैं इसलिए भी स्ट्रेस होता है, दोनों बातों को एक बार आप हमें बताएं।
0: तो पहली बात जो आपने कही, जो युवा जुड़ते हैं, उद्देश्य क्या होता है, मुझे लगता है कि हमारे यहाँ जो व्यवस्था है, खासतौर पर हम कानून व्यवस्था की करें, तो बच्चों के ऊपर कार्यवाही उस तरीके से नहीं होती है। तो शायद इसलिए वो बच्चे, उनका इजी टारगेट रहता होगा कि बच्चों के ऊपर हम कानूनी इस तरीके से कार्यवाही नहीं कर सकते, तो बच्चों को शामिल करना एक ये उद्देश्य उनका हो सकता है। दूसरा, मुझे लगता है कि अभी हम जब बात करें, खासतौर पर कोविड के वास्ते, जब हम लोगों को समझ में आया कि मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है, तो यदि हम देखें कि वैसे स्पेसेस नहीं है जहाँ पे आप अपने फीलिंग्स को, इमोशंस को व्यक्त कर पाएं खुलकर।
1: अच्छा।
0: तो कई बार व्यक्ति जो है व्यक्त नहीं कर पाता, तो वो खुद के लिए उस कमी को दूर करने के लिए कुछ चीज़ों को खोजता है, जिसमें एक जो चीज़ समझ कि नशे के ऊपर वो ज़्यादा होता है, क्योंकि कई बार लोगों को लगता है कि नशे में हम होश में नहीं रहेंगे, तो शायद हमें वो चीज़ें याद नहीं आएंगी। और कई बार जो है नशा नहीं मिलने के कारण भी व्यक्ति में स्ट्रेस होता है। तो दोनों कारण है, एक तो स्ट्रेस होने के कारण आप वहाँ जा रहे हैं, और दूसरा आपको नशा नहीं मिलने का जो स्ट्रेस है, क्योंकि जब एडिक्टेड हो जाते हो, तो ये भी एक मानसिक स्वास्थ्य की परेशानी ही है। तो इन दो तरीकों से लोग उसमें जुड़ते हैं।
1: एक चीज और हम अब पे निकल के आती है कि जब आप, चूंकि आप इसमें काम कर रहे हैं, तो ये आप जब निकलते हैं, ये खुद ब खुद वो इलाकों में आपको बच्चे बड़े आसानी से मिल जाते हैं। केवल बच्चे ही नहीं, मैं पूछना चाहूंगा कि बच्चे या लड़कियां या बड़ी उम्र के लोग या पुरुष बड़े या महिला, उम्र को अगर दरकिनार करके बात करें, तो हम बात करना चाह रहे हैं उस पर कि जो भी लोग नशे में लिप्त हैं, तो किस तरह से वो आप पहले प्रथम दृष्टि आप कैसे उन्हें पहचानते हैं, या आप क्या तरीके अपनाते हैं जिससे ये लोग आपकी पहचान में या आप उन तक पहुंच पाए?
0: हम लोग जब समुदाय में काम करते हैं, तो वहाँ पर हम लोग लोगों के साथ रैपो बिल्डिंग करते हैं।
1: अच्छा।
0: लोगों से मिलना, उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या चल रहा है, तो ऐसे बातचीत के साथ में शुरुआत होती है। तो एक परिवार के साथ में संपर्क होता है, फिर हमारे वहाँ पर बस्तियों में जाके हम जनसंवादों का आयोजन करते हैं, ताकि लोग हमसे जुड़ पाए और हमसे बातचीत कर पाए। तो कई बार जनसंवाद तरीका होता है जहाँ पे लोग इन मुद्दों को बताते हैं, कई बार व्यक्तिगत रूप से मिलकर भी वो हमें बताते हैं उनकी बातों के बारे में, समस्याओं के बारे में, तब वहाँ से ये चीज़ें जो है निकल के आती हैं। जैसे कई बार महिलाएं जब आती, क्योंकि मैं काउंसलिंग का भी काम करती हूँ, तो कई बार महिलाएं जब आती हैं कि हमारे घर में लड़ाई झगड़ा हुआ, तो जब उनसे वजह पूछे जाते हैं, तो वो एक नशा एक कारण बताते हैं कि इस वजह से जो है मेरे साथ में ही हुआ। और कई बार ये मैंने जो देखा है कि लाइव बोलते कि नशे में मुझे मारा गया, पीटा गया। कई बार नशे में व्यक्ति समझता है कि मैं बहुत पावरफुल हो गया, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो अधिकतर वायलेंस देखने को ज्यादा मिलता है नशे की वजह से। तो इस तरीके की बातें जो है, जब संवाद होता है व्यक्तिगत रूप से, जब उनसे मिलते हैं या वो हमसे संपर्क भी करते हैं, तब वो हमें ये जानकारी देते हैं।
1: पहले ये बात करें, फिर आपसे ये भी पूछेंगे कि ये जो नशा ये करते हैं, इसमें खासतौर कौन सा नशा ज्यादा कर, जो सबसे ज्यादा नशा आप जो आप देखते हैं, किस चीज का नशा करते हैं ज्यादातर लोग?
0: ज़्यादातर जो है शराब
1: ठीक है।
0: का नशा करते हैं, सिगरेट जो है वो
1: हाँ
0: यूज़ करते हैं, गांजा जो
1: हाँ
0: है
1: हाँ
0: वो
1: हाँ
0: यूज़
1: हाँ
0: करते हैं, कुछ मामलों में ड्रग्स जैसी चीज़ें समझ, लेकिन वो बहुत ज़्यादा उस पर नहीं निकल के आया कि यही, लेकिन कुछ लोगों ने जिक्र किया कि इस तरीके के नशे पर उपलब्ध सलोचन है खासतौर
1: हाँ
0: पे।
1: हाँ
0: कुछ युवा साथी की हम बात करें तो जो विक्स है या जो मेडिसिन मेडिकल पे मिलते हैं उनका भी वो उपयोग करते
1: उपयोग
0: हैं।
1: करते हैं। तो जब भी आपको कोई केस आप दिमाग में अगर आपके आए तो हम चाहेंगे कि आप उसको दिमाग में रखते हुए बिना किसी का नाम बताए हमें ये बताइएगा कि जब भी आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिले, पहली दफ़ा आपको पता चला कि ये मिस्टर एक्स हैं जो या जो भी व्यक्ति है वो नशे की आदत में है, तो सबसे पहला कदम आप क्या करते हैं?
0: एक युवा साथी हमको मिले थे जिन्हें बहुत ज़्यादा वो था, हमने पहले उनसे दोस्ती की, थोड़ा उनको जानने की कोशिश किया,
1: हाँ
0: तो वो हमसे मिले, हमारे साथ बैठे, हमने उनको जानने की कोशिश, तो एक दोस्ती जैसा माहौल वहाँ पे शुरू हुआ, बातचीत होनी शुरू हुई, फिर धीरे धीरे उनसे जानने की कोशिश किया कि वो उन्हें कब से इस चीज़ का आदत लगा। तो उस बच्चे ने बताया कि क्योंकि उनके परिवार में जो पिताजी हैं वो नशे का उपयोग करते हैं, तो धीरे धीरे उन्होंने मंगवाना शुरू किया बच्चे से। तो वो कई बार होता है, जैसे मैंने भी देखा है कि जब हमको सर्दी खांसी होती थी तो हमारे पिताजी एक ढक्कन सिरप हमको दे देते थे कि सर्दी ठीक हो जाए, तो ऐसे ही वो बच्चे ने अपने पिताजी के लिए लाना शुरू किया, धीरे धीरे फिर उसने टेस्ट करना शुरू किया, फिर वो जिस समुदाय में रहते हैं वहाँ के जो और उसके पीयर्स या हम दोस्त की बात करते हैं तो दोस्तों के साथ में जुड़ा, तो दोस्तों ने उसे इन्फ्लुएंस किया कि तू लड़का है यार, तू ये नहीं करेगा तो कौन करेगा, मर्द है, मर्द तो पीते हैं। तो इस तरीके से उसने धीरे धीरे उसने ट्राई करना शुरू किया, फिर वो पीना शुरू हो गया। तो उस व्यक्ति से जब मेरी बात हुई तो उसने बताया उसने बहुत ज़्यादा नशे का उपयोग किया और वो 10 साल का था तब वो जुड़ा, तो आज वो जो बच्चा है 18 साल का है, तो आप सोचिए कि 8 साल से 18 से 10 साल तक उसने कंटिन्यू वो चीज़ें करी। तो दो तीन जो परेशानियां मुझे निकल के आई कि एक तो जो हमारे दोस्त होते पीयर्स होते हैं उनका एक बड़ा असर हमारे ऊपर पड़ता है, यदि आप वो चीज़ नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर बहुत सवाल खड़े करते हैं, घर का माहौल है यदि आपकी उपलब्धता में, यदि घर में आप वो चीज़ें देख रहे हैं तो आप उसमें जुड़ जाते हैं, क्योंकि हम बोलते हैं कि प्रथम शिक्षा जो है बच्चे को अपने परिवार से मिलती है, तो परिवार का जो माहौल देखता है वो अडोप्ट करता है, तो वो चीज़ हमने उसमें देखी। फिर जब इस तरीके की चीज़ें निकल के आई तो हमने उनसे पूछा जब आप करते हो तो आपको क्या नुकसान होता है इससे, तो फिर उस व्यक्ति ने खुद बताया कि जब मैं पीता हूँ तो मैं कहीं भी पड़ा हुआ मिलता हूँ या मुझे होश नहीं रहता है, कई बार मैं ऐसी चीज़ें करता हूँ जो मुझे नहीं करनी चाहिए शायद, जैसे कई बार छेड़खानी करना हुआ, खुद को नुकसान पहुँचाना हुआ, लड़ाइयाँ करना, तो उन्होंने दोनों चीज़ें बताई। तो फायदे के रूप में भी पूछा उनसे क्या हुआ, तो फायदे के रूप में कुछ समय के लिए शायद मैं कुछ चीज़ें अपनी भूल जाता हूँ, लेकिन उसने नुकसान ज़्यादा उसके बताए। तो ऐसे दोस्ती में उनसे बातचीत किया, तो हमने एक हमारा ग्रुप चलता है उस ग्रुप में उस बच्चे को हमने जोड़ा, तो ग्रुप में हमने बातचीत करना कि हम और क्या चीज़ें कर सकते हैं, अल्टरनेटिव क्या है, मान लो हमें कोई परेशानी होती है तो हम और क्या कर सकते हैं, किसी से बात कर सकते हैं, किसी की मदद ले सकते हैं, तो जुड़ाव इस तरीके से होता है। फिर हम काउंसलिंग के प्रोसेस में जाते हैं, फिर हमें लगता है कि केस में शायद हम नहीं मदद, तो फिर हम रेफरल करते हैं, तो जो प्रोफेशनल काउंसलर हैं या जो नशा मुक्ति केंद्र हैं तो फिर हम उनकी सहायता लेते हैं, तो इस तरीके से हम उनमें मदद करते हैं। आज मुझे खुशी इस बात की जब उस व्यक्ति से बातचीत हुआ तो उसने वो काउंटिंग करके बता रहा है कि मैंने 3-3.5 लाख रुपए का नशा किया और पैसे ना होने के बाद कई बार चोरियां भी की, तो कई बार लोगों से पैसा भी मांगा और कई बार पिटे भी हैं, लेकिन एक चीज मुझे समझ में आया कि शायद उनको समझाने वाला एक स्पेस नहीं था या वो उनमें वो अवेयरनेस नहीं थी या उनके साथ में जो दिक्कत चल रही है वो वहीं कहीं शेयर नहीं कर पाए, तो वो एक स्पेस उनको हमसे मिला, उन्होंने शेयरिंग किया, काउंसलिंग हुआ, हमने और ऐसे लोगों से जोड़ा जो उनको सपोर्ट कर सकते हैं, तो अभी वो जो बच्चा है वो बिल्कुल नशा नहीं करता है, तो ये हमारे लिए बड़ा
1: मतलब इससे एक बात कह सकते हैं कि जितने भी लोग नशा कर रहे हैं और अभी तक मान लीजिए वो छोड़ नहीं पा रहे हैं और उसके आदी हैं, तो अगर वो काउंसलिंग तक पहुंचते हैं या आपसे या आप जैसी अन्य संस्थाओं के संपर्क में आते हैं तो बहुत बड़ा मतलब एक कारण बन सकता है कि वो नशे से दूर हो जाए।
0: बिल्कुल,
1: जितनी बात आपकी हुई अपनी, जब आप इस तरह के केसेस आपको मिलते हैं चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों या युवा हों, तो परिवार का क्या आपको उसमें सपोर्ट मिलता है या कई बार आपको लगता है कि परिवार भी आप लोगों के अगेंस्ट हो जाए, वो भरोसा कर पाते हैं आप पे जल्दी कि ये हमारे बच्चे को या इंसान का नशा छुड़ाने के लिए आए हैं या उसमें सहायता करेंगे या अगेंस्ट भी होता है, दोनों बातें बताइएगा।
0: विश्वास एकदम से तो वो नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें लगता है ये अचानक से कौन सा व्यक्ति आ गया जो हमारे परिवार की इतनी चिंता कर रहा है या हमारे परिवार के बारे में सोच रहा है, तो वो उस विश्वास को बना पाना शुरुआत में मुश्किल होता है, लेकिन जब लगातार उनसे मुलाकात होती है, कई बार जब हम जिस तरीके के संवाद करते हैं कार्यक्रम का आयोजन करते हैं तो हम उन्हें इन्वाइट भी करते हैं, तो कुछ चीज़ें वहाँ से ऑब्जर्व करते हैं, जैसे जिस बच्चे की मैंने आपको कहानी इससे पहले बताई, तो उन परिवार का पहले ये था कि वो नहीं भेजते थे, लेकिन उन्होंने जब अवसर दिया, हमने उन्हें जोड़ा, उन्होंने अपने बच्चे में बदलाव देखा, तो उनका विश्वास हमसे बढ़ा, तो फिर उन परिवार ने हमको सहयोग करना शुरू किया, क्योंकि परिवार भी कहीं ना कहीं इन चीज़ों से बहुत परेशान होता है, जब परिवार को जोड़ा, उन्होंने अपने घर में उस बच्चे के अंदर बदलाव देखा तो उनमें एक विश्वास बढ़ा और फिर उन्होंने हमें सहयोग किया। तो शुरुआत में तो बहुत दिक्कतें होती हैं क्योंकि आप जब किसी के पास जाते हैं तो उन्हें भी लगता है, क्योंकि कई बार ऐसे लोग भी जुड़ते हैं जो आपका सहयोग करने तो आते हैं लेकिन वो सहयोग ना करके आपका उपयोग कर लेते हैं कई बार, तो ये एक चुनौती रहती है। लेकिन आप लगातार काम करते हैं क्योंकि मुश्किलें नहीं आएंगी तो आप काम नहीं कर पाओगे और आप सीख नहीं पाओगे। तो ये जो परेशानी आई ये चुनौती थी लेकिन हमारे लिए सीख भी था कि हमें परिवार से कैसे जुड़ना है, क्योंकि हम सीधे उन्हें समाधान लेकर जाएंगे तो वो नहीं समझेंगे। तो उनकी समस्याओं को समझना, समस्याओं से उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, जब तक वो इस चीज़ को महसूस नहीं करेंगे तो शायद वो आपको मदद नहीं कर पाएंगे। तो एक परिवार के रूप में हमारा उनसे जुड़ाव होता है, ना कि एक संस्था या समाजसेवी के रूप में। तो एक परिवार का सदस्य बन के हम उनसे जुड़ते हैं फिर उनके साथ में काम करते हैं।
1: एक बात और पूछेंगे निहारिका जी, जो जैसे आप इसमें काम कर ही रही हैं और इतने लंबे समय से, अलग अलग आपने बताया लगभग 6 राज्यों में आप काम कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि अभी जितने लोग जैसे आप कर रहे हैं ये पर्याप्त है या अभी काफी और लोगों को या कुछ अन्य संस्थाओं को आने की जरूरत है, क्योंकि नशे की प्रवृत्ति तो काफी बड़ी हुई है?
0: मुझे लगता है कि बहुत कम है और बहुत काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि सुविधाएं हैं लेकिन उसकी अवेयरनेस या लोगों तक उसकी जानकारी नहीं है। तो लोगों को आगे आना पड़ेगा और लोगों की आवश्यकता है इसमें काम करने के लिए, और मुझे लगता है कि हमारी जो व्यवस्था है उसमें और बदलाव करने की भी ज़रूरत है। मैं जो देख पाती हूँ कि बच्चों के लिए उस तरीके की सुविधा नहीं है कि हम पुनर्वास उनका कर पाए, खासतौर पर नशे की उससे। एक दूसरा हमें ये थोड़ा बालश्रम में भी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि अभी तक यदि हम बालश्रम कानून की बात करें तो नशे में जो बच्चे लगे हुए हैं कहीं ना कहीं हम उसको एड्रेस नहीं कर पाते हैं। तो हमें इस और भी देखने की ज़रूरत है कि नशे में कितने जो बच्चे हैं वो काम कर रहे हैं, वो भी देखने की आवश्यकता है। दूसरा जो हमारी व्यवस्थाएँ चल रही हैं अलग अलग उन पर भी हमें मजबूत और वो कैसे काम कर पाएँ इसकी बहुत ज़रूरत है। तो एक तो बच्चों के लिए एक ऐसे केंद्र हो
1: जैसे काम, मतलब उनको रोकने के लिए और नशे से दूर करने के लिए।
0: बिल्कुल, ऐसे कुछ कुछ अभियान चल रहे हैं लेकिन उस अभियान को और मजबूती और सक्रिय होने की ज़रूरत है। और खासकर ज़मीनी स्तर पर जो सुविधाएं मिलना चाहिए, जैसे मैं ऐसे केंद्रों की बात कर रही हूँ जहाँ पर बच्चों को निःशुल्क एक पुनर्वास जो होना चाहिए, एक प्रॉपर काउंसलिंग मिलना चाहिए, एक जगह होनी चाहिए जहाँ से बच्चा निकल पाए, तो वो एक सुविधाओं का गैप नज़र आता है। दूसरा जो प्रचार प्रसार होना चाहिए योजनाओं का, जानकारियों का, वो एक मुझे कम नज़र में आता है। तो इस तरीके की चीज़ें और होना चाहिए और लोगों तक उसका उपलब्धता होनी चाहिए। तो यदि हम इस तरीके से आगे बढ़ेंगे, और मुझे लगता है कि परिवार में भी हमें ध्यान देना चाहिए कि कई बार परिवार का जो माहौल होता है वो बहुत असर करता है, और भी जागरूक होने की ज़रूरत है। और कई बार मैंने देखा है लोग जागरूक तो होते हैं लेकिन एक्शन नहीं लेते हैं। जैसे हम देखें कई बार जब नशे के पदार्थ मिलते तो उसमें लिखा होता है कि इसमें कैंसर ये है, हम उपयोग करते हम जानते हैं लेकिन हम उसमें एक्शन नहीं लेते। तो उस पर एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है, यदि आप जागरूक हैं अवेयर हैं तो, लेकिन उसके लिए कार्यवाही करना बहुत ज़रूरी है।
1: आप जब फील्ड में काम करती हैं, इस पर लंबे समय से काम कर भी रही हैं, तो आपको किस तरह की समस्याएं फेस करने में आती हैं? इतना आसान तो है नहीं कि भाई कोई आपको पता चला या मिले आप उस व्यक्ति से कि ये नशा करता है तो उसके बाद यूं ही तो हो नहीं जाता होगा उनसे नशा, आपको भी बहुत सारी समस्याओं को फेस करना होता होगा, तो वो किस तरह की होती है?
0: कई बार जब हम समुदाय में इंटर करते हैं तो बहुत सारे जो पब्लिक प्लेसेस होते हैं जो मैं देखती हूँ कि नशे कारण बहुत ज़्यादा अनसेफ हो जाते हैं, असुरक्षित हो जाते हैं, क्योंकि जहाँ खुला स्पेस या खेलने का मैदान है वहाँ पर लोग ग्रुप में बैठ के नशा करते हैं या उस तरीके की गतिविधियाँ करती हैं, तो एक जो असुरक्षित वाला माहौल है वो मुझे वहाँ नज़र में आता है। दूसरा जो चुनौती कई बार रहता है कि यदि व्यक्ति नशे में है तो हिंसक होता है, वो चीज़ों को उस समय समझ नहीं पाता है, तो वो हिंसक जैसा माहौल जो है वहाँ पे देखने को मिलता है। और दूसरा जो है, जो खासतौर पर जो महिलाओं के साथ में जो हिंसा है, लड़कियों के साथ में जो छेड़खानी वाले मसले हैं, वो बहुत समुदाय में नज़र आते हैं। जैसे घरेलू हिंसा का एक बड़ा कारण यही है, नशा है। और कई बार जो रिपोर्टिंग भी होना चाहिए वो कई बार नशे के कारण वो रिपोर्टिंग भी नहीं हो पाती है, कि व्यक्ति नशे में शायद गलती से हो गया होगा, तो एक जो रिपोर्टिंग है वो भी नहीं हो पाती है। और कई बार व्यक्ति क्योंकि वो नशे में है तो इस चीज को वो टाल देते हैं कि नशे में इसलिए शायद उनसे गलती हो गई होगी। तो इस तरीके की समस्याएं जो है हमें वहां पर नजर में आती है। मानसिक स्वास्थ्य एक स्ट्रेस वाला बहुत है, क्योंकि यदि आपके परिवार में कोई नशा कर रहा है, माहौल वैसा है, तो आप तनावित महसूस करेंगे और आपका मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य पर उसका असर पड़ेगा ही। तो ऐसे तमाम समस्याएं जो है वो नज़र में, कई बार मैं देखती हूँ कि बहुत सारे जो बच्चे वो स्कूल से बाहर ड्रॉप आउट भी इसलिए हो जाते हैं क्योंकि घर में यदि कोई बीमार है या नशे के लिप्त है तो वहाँ पे जिम्मेदारी फिर जो है बच्चों को निभानी पड़ती है।
1: सॉल्यूशन जो समस्याएं आपको लगती है, तो आपको क्या लगता है कि क्या इनके सॉल्यूशंस हैं ताकि ये समस्याएं लगभग कम और ख़त्म हों और इस पर काम और बेहतर करा जाए? जैसे आपने समस्याएं गिनाई, तो ये समस्याएं ना आए आप, इसके लिए कोई आपको लगता है क्या तरीके हैं?
0: मुझे लगता है एक तो हमें अवेयरनेस पे, जागरूकता पे काम करना चाहिए, जो मुझे लगता है, खासतौर पे जहाँ पर अवैध तरीके से जो नशे के पदार्थ उपलब्ध हैं उस पर कार्रवाई होना चाहिए और सख्त कार्रवाई होना चाहिए। तो ज़मीनी स्तर पे हमें उन जगहों को चयनित करना और उस पर सख्त कार्रवाई होना चाहिए, और ख़ासतौर पर जो लोग नशे में लिप्त हैं उनको बाहर निकालने के लिए हम जो प्रक्रियाएँ चला सकते हैं वो प्रक्रियाओं की सुविधाएँ हमें उपलब्ध करानी चाहिए, चाहे वो एक परामर्श देना हो, चाहे वो उनके पुनर्वास के लिए नशा मुक्ति केंद्रों की ज़रूरत हो। ऐसे कुछ अभियान जो मैंने देखा है, जैसे पुलिस विभाग का अभियान, तो उन्होंने बहुत से सामाजिक संस्थाओं के साथ में, युवाओं के साथ मिलकर, कॉलेजेस के साथ में मिलकर चलाया, जो बहुत प्रभावी रहा है। तो यदि हम सब मिलकर उसमें काम करेंगे तो एक बहुत बेहतर रिजल्ट हम उसमें देख पाएंगे। तो सब साथ में मिलकर काम करें, ये बहुत ज़रूरी है।
1: हमने शुरू में भी एक एग्जाम्पल दिया था, कोई बच्चा था 10 साल की उम्र से ही नशे में आ गया था, कोई और दूसरा भी हो सकता है 12 साल की, एक उनकी किसी उम्र हो सकती है। तो जो भी होते हैं जब ये नशे से मुक्त हो जाते हैं तो इनको दोबारा सामान्य जीवन में लाने के लिए आप क्या प्रयास करते हैं, क्या होता है कि कैसे क्या आ पाते हैं और आते हैं तो फिर वो किस तरह से काम कर रहे होते हैं? आपने ऐसे लोग एग्जाम्पल होंगे आपके सामने,
0: काफ़ी सारे युवा साथी हम जुड़े हैं। तो कई बार होता है कि जो प्रीवियस लाइफ है उनकी, तो कई बार लोग जज भी करना शुरू कर देते हैं, तो जब वो उस दूर लाइफ से बाहर आता है लेकिन लोग कमेंट्स उसको कई बार करते हैं, तो एक स्टिग्मा भी होता है कई बार, तो वो एक चुनौती होता है। तो वो माहौल को निर्माण करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन ये एक चुनौती है उन लोगों के लिए। तो इस पे हम लोग जो काम करते हैं, खासतौर पर हम लोग सिर्फ उस परिवार के साथ साथ उस समुदाय में भी काम करते हैं, ताकि ऐसा वातावरण मिल पाए ताकि व्यक्ति सहज महसूस करे वहाँ पर। तो लोगों को हम जागरूक करते हैं कि यदि व्यक्ति बाहर आया है उस चीज़ से, तो हम कैसे मिलकर उन्हें सहयोग कर सकते हैं। तो कम्युनिटी में हमारे जो संवाद होते हैं, परिवारों के साथ में संवाद होते हैं, कई बार हम लोग ऐसी गतिविधियों का भी, समावेशी गतिविधियों का भी आयोजन करते हैं कि हर व्यक्ति उसमें जुड़ पाए। तो इस तरीके के मुद्दों पर हम बात करते हैं, और ख़ासतौर पर लोगों की भूमिका उसमें करते हैं कि आपके समुदाय में रहने वाला कोई व्यक्ति है, वो आपका परिवार का हिस्सा है, वो आपका हिस्सा है, तो हम उस व्यक्ति को बेहतर रहने के लिए कैसे कर सकते हैं। तो समुदाय के साथ में हम लोग जब काम करते हैं तो ऐसा माहौल देने की प्रयास करते हैं, और कई बार देखा भी है जो हमारी गतिविधियां होती हैं, जो कार्यक्रम करते हैं, तो उस व्यक्ति को ऐसा महसूस कराते हैं कि वो व्यक्ति वहाँ सहज महसूस करे, और जो पूर्व में जो उसके साथ में घटनाएं हुई हैं, जो हुआ है, वो सामने।
1: एक चीज़ तो चलते चलते समय की भी एक सीमा होती है। एक प्रश्न आएगा, अभी आपने शुरुआत कही थी कि स्लम एरियाज में जाना पड़ता है आपको, हाँ ये सत्यता है और आप इस पे काम करती, तो ये मोहर इस बात की कि स्लम एरियाज में इस तरह के केसेस ज़्यादा मिलते हैं, लेकिन क्या लगता है आपको जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, संभ्रांत घरों के हैं, जिनके पास सारी सुविधाएं, वो भी नशे में लिप्त हो रहे हैं?
0: बिल्कुल है।
1: इस पर एक बार आप बताइए, उसमें कितने केसेस आपने देखे, या मतलब उसको ध्यान में रखते हुए बताइए।
0: बिल्कुल, कोविड के समय हम लोगों ने हमारा एक ब्रोशर तैयार किया था काउंसलिंग के लिए, तो वहाँ पर हमारे पास कई बार केसेस आए, और वो ऐसे हाई प्रोफाइली सोसाइटी के ही लोगों के आए थे। तो क्योंकि स्लम एरिया में हमारा एक्सेस है, वहाँ लोग दिखते हैं, जुड़ते हैं, तो वहाँ पता चल जाता है, लेकिन बहुत सारे बच्चे जो आइसोलेटेड हैं, जो रहते हैं, वहाँ पर भी समस्या है। कई बार जब मैं बाहर निकलती तो देखती हूँ जो बच्चे पीजीज में यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए आते हैं, या जो तमाम दुकानें हमें नजर आती है, वहाँ बहुत बड़ा स्टूडेंट क्राउड हमें नजर आता है। तो हर वर्ग का व्यक्ति इससे परेशान है और जुड़ा हुआ है।
1: इनका क्या प्रमुख कारण होता है? ये तो सब तरह से सुविधाएं इनके पास, टारगेटेड हैं, अच्छा खासा माहौल है, ये नशे की लत में क्यों पड़ जाते हैं?
0: माहौल का मतलब सिर्फ अच्छी शिक्षा देना नहीं होता है। माहौल जो है कि आपका बच्चा जो है वो किन गतिविधियों में जा रहा है, उसे क्या समस्या है, वो एक स्पेस वहाँ पर नहीं है। तो कई बार क्या होता है कि जो पेरेंट्स का भी जो डायलॉग है वो बच्चों के साथ निरंतर नहीं होता है, और कई बार बच्चा जो बाहर गतिविधि करता है उसका भी ऑब्जर्वेशन कई बार नहीं रहता है, क्योंकि वो वहाँ पर कई बार बच्चे बाहर रहते हैं तो उनकी मॉनिटरिंग उस तरीके से नहीं हो पाती है, या फिर वो दोस्तों के साथ में जुड़ के जो चीज़ें कर रहा है। और कई बार जो है, जो हाई प्रोफाइल सोसाइटी में लोगों को जो मुझे जो देखा है कई बार, उनके लिए एक पैटर्न है अपनी लाइफ को इन्जॉय करने का, तो वो इन्जॉयमेंट के जो साधन के रूप में वो इसको देखते हैं। तो मुझे लगता है कि उन पे भी और बात करने की जरूरत है, क्योंकि हम उन्हें बना देते कि आपको सुविधाएं, आपको जरूरत नहीं है परेशानी, तो वो उसी माहौल में डरते कि हमें शायद किसी से गाइडेंस की आवश्यकता नहीं, या फिर हम जो कर रहे हैं वो सब ओके है।
1: मतलब
0: तो,
1: इस बात से निकल के ये आता है कि एक जो केवल हम गरीबी या स्लम में रहने वाले बच्चों पे केवल आरोप नहीं बढ़ रहे हैं, हम तो वास्तविकता पे बात कर रहे हैं कि हमें वहां भी वो बच्चे मिलते हैं, और जो नशे का उपयोग है वो केवल गरीबी ही नहीं, वो तो एक टारगेटेड है ही, लेकिन एक समाज जो पूरी तरह से संभ्रांत है, उसके पास सारी सुविधाएं, वो भी नशा कर रही है, उसके नशा करने के अपने अलग कारण हैं, है ना, ये बात हम कह सकते हैं। निहारिका जी, आपका तो पहले बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए, और एक बहुत ही अच्छे कार्य में आप लगी हैं, इसके लिए हम आपका पुनः धन्यवाद करेंगे हमारी और हमारे रेडियो की टीम की ओर से। प्रयास बहुत ज़रूरी है कि इस नशे को ख़त्म करा जाए, ताकि देश एक अच्छी दिशा में बढ़े।
0: बिल्कुल।
1: तो आपका ही जो आप साधुवाद हम आपका देंगे जो आप कार्य कर रहे हैं। तो ये था कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा, जिसपे हमने आज बात करी नशीली दवाओं का दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ विषय पर। और ये जो कार्यक्रम था इसका मार्गदर्शन हमें दिया संतोष कुमार वर्मा ने, परिकल्पना है अदिति गौड़ जी की, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी का, और समन्वय सहयोग है सतीश बाथम का, और मैं था आपके साथ आपका ध्वनि मित्र रत्नेश सोनी। निहारिका जी आपका एक बार पुनः धन्यवाद।
0: धन्यवाद। नमस्कार।

गंदे हाथों से कभी खाना मत खाना, कीटाणु पेट में चले जाएंगे और तुम बीमार हो जाओगे। इसीलिए तो खाना बनाने के पहले और खाने से पहले हाथों को धोना जरूरी है। धुलकर

शौच के बाद हाथों को साबुन से ही धोना। नाखूनों को साफ रखो, तुम बीमार नहीं होगे। पीने का पानी और खाने का सामान अच्छी तरह से ढककर रखना बहुत जरूरी है। खुलकर

पानी अनमोल है, यह सबको जीवन देता है। पानी साफ ना हो तो यह बीमार कर देता है। इसीलिए परिवार को स्वस्थ रखने के लिए पीने का पानी साफ रखना बहुत जरूरी है।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।
2: स्वराज संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग प्रस्तुत करते हैं स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और उनके विचारों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।

0: अभी तक आपने जाना कि युवा विवेकानंद कई तरह से धार्मिक तथा आध्यात्मिक मतवादों से परिचित होकर विचलित हो गए। सत्य क्या है इसकी खोज में वे भटकते रहे। अंततः डॉक्टर रामचंद्र दत्त के कहने पर दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण ठाकुर से मिलने गए। वहां उन्होंने ठाकुर के कहने पर गाने भी गाए। इस ऐतिहासिक मुलाकात से नरेंद्रनाथ के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया। इस मुलाकात का वर्णन उन्होंने खुद इस तरह किया है।
1: गाना तो मैंने गाया, उसके बाद ही श्री राम कृष्ण देव एकाएक उठकर मेरा हाथ पकड़कर अपने कमरे में उत्तर की ओर बरामदे में मुझे खींच ले गए। उस समय शीतकाल था। उत्तरी हवा रोकने के लिए बरामदे के खंभों के बीचों बीच टट्टे घिरे हुए थे, इसलिए वहां भीतर जाकर कमरे का दरवाजा बंद कर देने से कमरे के भीतर या बाहर के किसी व्यक्ति को देखा नहीं जा सकता था। बरामदे में प्रविष्ट होकर श्री रामकृष्ण देव द्वारा दरवाजा बंद कर देने पर मैंने सोचा, संभवतः एकांत में मुझे उपदेश देंगे, परंतु उन्होंने जो कुछ कहा और किया वो कल्पनातीत है। एकाएक उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। उनके नेत्रों से आनंद अश्रु की धारा बहने लगी और पूर्व परिचित की तरह मुझे परम स्नेह से संबोधित करते हुए कहने लगे, तू इतने दिनों बाद आया, मैं तेरे लिए किस प्रकार प्रतीक्षा कर रहा था तू सोच भी नहीं सकता। विषयी मनुष्यों के व्यर्थ के प्रसंग सुनते सुनते मेरे कान जले जा रहे हैं। मन की बात किसी से न कह सकने के कारण मेरा पेट फूलता जा रहा है। आदि आदि वे कितनी ही बातें कहने लगे और रोने लगे। दूसरे ही क्षण मेरे सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए और देवता की तरह मेरे प्रति सम्मान दिखाकर कहने लगे, मैं जानता हूं प्रभु, आप वही पुरातन ऋषि नर रूपी नारायण हैं। जीवों की दुर्गति दूर करने के लिए आप पुनः संसार में अवतीर्ण हुए हैं। मैं तो उनके इस प्रकार के आचरण से एकदम अवाक और स्तंभित रह गया। मन में सोचने लगा, मैं किसे देखने आया हूं, ये तो एकदम उन्माद हैं। मैं तो विश्वनाथ दत्त का पुत्र हूं, मुझसे ऐसी बातचीत। जो भी हो, मैं चुप रह गया। अपूर्व पागल, जो मन में आया कहते चले गए। थोड़ी देर बाद मुझे वहीं ठहरने के लिए कहकर वे कमरे में चले गए और मक्खन मिश्री तथा कुछ मिठाई लाकर अपने हाथ से मुझे खिलाने लगे। मैं कहने लगा, मुझे मिठाइयां दे दीजिए, साथियों के साथ खाऊंगा, परंतु उन्होंने मुझे सब कुछ खिलाकर ही छोड़ा। इसके बाद मेरा हाथ पकड़कर उन्होंने कहा, बोल, तू जल्दी ही एक दिन मेरे पास अकेला आएगा तो? उनके इस आग्रहपूर्ण अनुरोध को टाल न सकने के कारण लाचार होकर आऊंगा कह दिया और उनके साथ साथ कमरे में आकर अपने साथियों के साथ बैठ गया।
2: कमरे में श्री रामकृष्ण के समीप कई लोग बैठे थे। उन्होंने कहा,
3: देखो, देवी सरस्वती के ज्ञान लोक से नरेंद्र कैसा चमक रहा है। अच्छा नरेंद्र, बता तो, क्या तुझे सोने से पहले ज्योतिपुंज दिखाई पड़ता है?
1: जी हां।
3: वाह, सब कुछ ठीक ठाक मिलान होता जा रहा है। अरे, ये तो ध्यान से धैर्य, जन्म से ही ध्यान से धैर्य।
0: नरेंद्र बैठे बैठे सब कुछ देखते रहे। उन्होंने देखा कि ठाकुर की चाल ढाल, बातचीत और दूसरों से व्यवहार में उन्माद जैसा कुछ भी नहीं है। वरन उनकी सत्कथा एवं भाव समाधि को देखकर नरेंद्र में ये विश्वास उत्पन्न हुआ कि ये सचमुच ही ईश्वर के लिए सर्वस्व त्यागी है तथा ये मुख से जो कुछ कहते हैं उसका स्वयं अनुष्ठान भी करते हैं। ये अत्यंत सहज सरल भाषा में उच्च आध्यात्मिक बातें करते हैं। इसी से नरेंद्र को लगा ये संभवतः सचमुच एक उच्च सत्य दृष्टा महापुरुष है। अतएव जो प्रश्न आज तक वे धर्माचार्यों से पूछते आए हैं वही प्रश्न लेकर उनकी ओर आगे बढ़े और जिज्ञासा प्रस्तुत की।
1: महाशय, क्या आपने ईश्वर को देखा है?
3: हाँ, मैंने ईश्वर को देखा है, ठीक जैसे तुम लोगों को देखता हूं, बल्कि इससे भी और अधिक स्पष्टता से। तुम लोगों को जैसे देख रहा हूं, तुम लोगों से जैसे बातचीत कर रहा हूं, वैसे ही ईश्वर को भी देखा जाता है और उनसे बात की जा सकती है। परंतु वैसा कौन चाहता है? लोग स्त्री पुत्र के शोक में घंटों आंसू बहाते हैं, विषय और धन के लिए तरसते रहते हैं, परंतु ईश्वर का दर्शन नहीं हुआ ये कहकर कौन रोता है? मैं उन्हें पा नहीं सका, ऐसा कहकर कौन व्याकुल होकर उन्हें पुकारता है? उन्हें मैं पा न सका तो वे अवश्य ही दर्शन देते हैं।
1: उनके श्रीमुख से ऐसी बात जानकर मुझे लगा कि अन्य धर्म प्रचारकों की तरह वे कल्पना या रूपक का सहारा लेकर व्याख्यान नहीं देते, यथार्थ में ही सब कुछ छोड़कर संपूर्ण मन से ईश्वर को पुकार कर जो कुछ प्रत्यक्ष अनुभव किया वही कर रहे हैं। पागल होने पर भी ईश्वर के लिए वैसा त्याग संसार में विरले मनुष्य ही कर सकते हैं। उन्माद होने पर भी ये महापुरुष पावन, पवित्र और त्यागी हैं। इसी कारण मानव हृदय की श्रद्धा, पूजा और सम्मान पाने के ये यथार्थ अधिकारी हैं।
0: इस प्रकार सोचते हुए उस दिन ठाकुर को प्रणाम कर उनसे विदा लेकर वे कलकत्ता लौट आए।
2: इस पहली मुलाकात के बाद लगभग महीने भर तक नरेंद्र दक्षिणेश्वर नहीं गए, पर बाद में उन्हें अपना फिर वहां जाने का वादा याद आया और इस बार वे अकेले कलकत्ते से दक्षिणेश्वर तक पैदल ही चले गए।
1: दक्षिणेश्वर कालीबाड़ी कलकत्ते से इतनी दूर होगी ये पहले एक बार गाड़ी से जाकर मैं समझ नहीं सका था। वराह नगर से दाशरथी, सान्याल, सातकड़ी, लाहड़ी आदि मित्रों के घर तो मैं कभी जाया करता था। मैंने सोचा था कि रानी रासमणि का बाग उन मित्रों के घर के समीप ही कहीं होगा, परंतु जितना ही चलने लगा रास्ता समाप्त ही नहीं होता था। अंत तो गत्वा पूछते पूछते किसी तरह दक्षिणेश्वर पहुंच गया और एकदम श्री रामकृष्ण के कमरे में उपस्थित हो गया और देखा वे पहले की तरह छोटी चौकी पर अकेले अपने ही भाव में विभोर बैठे हैं। पास में कोई नहीं था। मुझे देखते ही आनंद से बुलाकर अपने पास बिठाया। बैठने के बाद ही मैंने देखा न जाने किस प्रकार के भाव में वे तन्मय हो गए हैं और अस्पष्ट स्वर से कुछ कहते हुए स्थिर दृष्टि से मेरी ओर देखकर धीरे धीरे सरकते आ रहे हैं। मैंने सोचा संभवतः ये पागल पहले दिन की तरह फिर कोई पागलपन कर बैठेगा। ये सोच ही रहा था कि उन्होंने एकाएक मेरे पास आकर अपना दाहिना पैर मेरे अंग पर संस्थापित कर दिया और उसके स्पर्श से क्षण भर में मेरे भीतर एक अपूर्व उपलब्धि होने लगी। आंखें खोलकर मैं देखने लगा कि घर की दीवारों के साथ सारी चीजें घूमती हुई कहीं विलीन होती जा रही हैं, और सारे ब्रह्मांड के साथ मेरा शुद्र अहम भाव सर्वव्यापक महाशून्य में विलीन होता जा रहा है। उस समय भय से मैं घबरा उठा, सोचने लगा अहम भाव का नाश ही तो इस बात का संकेत है कि मृत्यु सामने बहुत समीप आ गई है। अपने को संभाल न सकने के कारण मैं चिल्ला उठा, अजी अजी, आपने मेरी ये कैसी अवस्था कर डाली, मेरे तो मां बाप हैं। मेरी बात सुनकर वो अद्भुत पागल खिलखिलाकर हंस पड़ा और मेरा हाथ पकड़कर छाती से स्पर्श करते हुए कहा,
3: अच्छा तो फिर अभी रहने दो, एकदम ही होने की कोई जरूरत नहीं, समय आने पर अवश्य होगा, समय आने पर होगा।
1: आश्चर्य की बात यह है कि उनके स्पर्श से और ये बात कहते ही मेरे अपूर्व दर्शन विलुप्त हो गए, मैं प्रकृतिस्थ हो गया और कमरे के भीतर तथा बाहर सभी पदार्थों को पहले की तरह अवस्थित देखने लगा। इस बात को कहने में तो इतना समय लगा, पर असल में तो वो घटना बहुत ही थोड़े समय में हो गई और उससे मेरे मन में एक युगांतर उपस्थित हुआ। स्तब्ध होकर मैं सोचने लगा, ये क्या हुआ, एक अद्भुत पुरुष के प्रभाव से भाव एकाएक उपस्थित हुआ और लुप्त भी हो गया। पुस्तक में मैस्मरिज्म यानी मोहिनी इच्छा शक्ति संचारण और हिप्नोटिज्म यानी सम्मोहन विद्या के संबंध में पढ़ा था, सोचने लगा कि ये भी कुछ वैसा ही होगा, किंतु ये सिद्धांत चित्त में ठहर न सका क्योंकि दुर्बल मन के ऊपर ही प्रभाव डालकर प्रबल इच्छा शक्ति संपन्न व्यक्ति वैसी अवस्था ला देते हैं, परंतु मैं तो वैसा नहीं हूं, बल्कि अब तक अपने को विशेष बुद्धिमान और मानसिक शक्ति संपन्न मानता आया हूं। विशेष गुणयुक्त पुरुष के संग से साधारण व्यक्ति जिस प्रकार मोहित हो जाते हैं और उनके हाथ के खिलौने बन जाते हैं, मैं तो उन्हें देखकर वैसा नहीं हुआ हूं, बल्कि आरंभ से ही मैंने इन्हें आधा पागल समझ रखा है। अतः मेरे भीतर एकाएक इस प्रकार का भाव आने के कारण क्या है, मैं यही सब सोचता विचारता रहा पर कुछ निश्चय नहीं कर सका। हृदय में कुछ हलचल सी मच गई, महाकवि शेक्सपियर की बात याद आई, पृथ्वी और स्वर्ग में ऐसे अनेक तत्व हैं जिनके रहस्य भेद की मनुष्य बुद्धि द्वारा रचित दर्शन शास्त्र कल्पना भी नहीं कर सकते। मैंने सोचा ये भी वैसा ही कुछ होगा। सोच विचार कर निर्णय किया कि इनकी बात अभी समझ में नहीं आएगी और दृढ़ संकल्प कर लिया कि ये अद्भुत पागल अपना प्रभाव डालकर भविष्य में कभी वशीभूत करके वैसा भावांतर उपस्थित न कर दे। फिर ये सोचने लगा कि इच्छा मात्र से ये पुरुष यदि मेरे जैसे प्रबल इच्छा शक्ति संपन्न चित्त के दृढ़ संस्कार युक्त गठन को इस तरह तोड़ फोड़ कर मिट्टी के लांदे की तरह अपने भाव में ढाल सकते हैं तो उन्हें पागल कैसे समझूं? किंतु प्रथम दर्शन के दिन मुझे एकांत में ले जाकर उन्होंने जिस तरह संबोधित करते हुए बातें की थी उससे इन्हें पागल के अतिरिक्त तो और मान सकता हूं। अतः अभी जो उपलब्धियां हुई उनका कोई कारण मैं नहीं पा सका और इस शिशु सदृश पवित्र तथा सरल पुरुष के संबंध में कुछ स्थिर निश्चय ही कर पाया। बुद्धि का उन्मेष होने के अनंतर खोज और तर्क युक्ति की सहायता से प्रत्येक वस्तु और व्यक्ति के संबंध में एक मतामत स्थिर किए बिना मैं कभी निश्चित नहीं हो सका। उसी स्वभाव में आज एक प्रचंड आघात प्राप्त हुआ है। इससे हृदय में वेदना उत्पन्न हुई। फलस्वरूप मन में पुनः प्रबल संकल्प का उदय हुआ, जैसे भी हो सके इस अद्भुत पुरुष के स्वभाव और शक्ति की बात अवश्य ही समझनी होगी। उस दिन उस प्रकार की विविध चिंताओं एवं संकल्पों से मेरा समय बीतने लगा, परंतु श्री रामकृष्ण देव उस घटना के बाद मानो एक दूसरे ही व्यक्ति बन गए और पहले दिन के समान अनेक प्रकार से मुझे प्रेम पूर्वक खिलाने तथा सभी विषयों में पूर्व परिचित की तरह आचरण करने लगे। अत्यंत प्रिय आत्मीय अथवा घनिष्ठ मित्र को बहुत दिनों के बाद सामने पाने पर लोगों में जिस प्रकार का भाव होता है, मेरे साथ भी उन्होंने वैसा ही व्यवहार किया था। खिलाकर, बातचीत कर, प्यार और हास परिहास करके भी उन्हें मानो तृप्ति नहीं हो रही थी। वैसे उनके प्यार तथा व्यवहार का कारण न ढूंढ पाने पर मैं और भी सोचने लगा। क्रमशः संध्या होते देखकर मैंने उस दिन उनसे विदा लेनी चाही, परंतु उससे वे बहुत ही अप्रसन्न होकर बोले फिर शीघ्र ही आएगा तो? लाचार होकर मुझे पहले दिन की तरह वचन देकर ही लौटना पड़ा।
0: इस घटना के हफ्ते भर बाद नरेंद्र एक बार फिर दक्षिणेश्वर गए। श्री रामकृष्ण के संबंध में संदेह आदि के निराकरण करने के लिए वे अधीर हो उठे थे। उस दिन भी ठाकुर ने नरेंद्र के साथ बगीचे में और गंगा तट पर कुछ समय टहल कर बातचीत की और लौटकर बैठक में बैठते ही समाधिस्थ हो गए। उसी समय अचानक रामकृष्ण देव ने समाधि से जागकर नरेंद्र के पास आकर उन्हें स्पर्श किया। तुरंत नरेंद्र जैसे बेसुध से हो गए। क्या घटित हुआ वे कुछ भी समझ नहीं पाए। चेतना लौटने के बाद उन्होंने देखा कि ठाकुर उनके वक्ष स्थल पर हाथ फेर रहे हैं और मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं।
2: कई दिनों के बाद पूछने पर रामकृष्ण ने बताया था कि वे पहले से ही नरेंद्र के बारे में जानते थे, प्रतीक्षा कर रहे थे कि वे कब आएंगे। उस दिन उन्होंने नरेंद्र की अचेतन अवस्था में उससे पूछा था कि वो कौन है, कहां से आया है, क्यों आया है, कितने दिनों तक पृथ्वी पर रहेगा, और उसने सब बातों का सही सही जवाब दिया था।
0: इधर इन तीन दिनों की जानकारी के फलस्वरूप श्री रामकृष्ण के संबंध में नरेंद्रनाथ की धारणा में आमूल परिवर्तन हुआ था, ये कहने की जरूरत नहीं है। उन्होंने समझ लिया था कि श्री रामकृष्ण देव उन्माद पूर्ण नहीं बल्कि दैवी शक्ति से परिपूर्ण और ईश्वरानुभूति संपन्न एक महापुरुष हैं। भगवत इच्छा के साथ उनकी इच्छा पूर्णतया एक होने से वे दूसरों का महाकल्याण करने में समर्थ हैं। इस प्रकार के त्याग, पवित्रता, सरलता और करुणा से विभूषित व्यक्ति के हाथों में अपने जीवन के नियमन और परिचालन का दायित्व सौंप देने पर ही मनुष्य कृतार्थ होता है।
2: वस्तुतः अपनी प्रखर बुद्धिमता और ब्रह्म समाज के प्रभाव से यद्यपि वे गुरु के रूप में किसी को ग्रहण करने में विश्वास नहीं रखते थे, तथापि इन कुछ दिनों की जानकारी के फलस्वरूप उनके विचार में परिवर्तन आ गया। निश्चय ही उस समय भी वे बिना विचारे श्री रामकृष्ण देव की सभी बातों को मान लेने को तैयार नहीं थे और बिना परीक्षा लिए तथा स्वानुभाव के किसी बात को मान लेने में कोई तर्कसंगति उन्हें दिखाई नहीं पड़ती थी।
0: अब से श्री रामकृष्ण देव के प्रति उनके मन में एक श्रद्धापूर्ण प्रीति के प्रतिष्ठित रहने पर भी नरेंद्रनाथ की विचार शक्ति पूर्णतः जागृत ही रही। इन दोनों भावों के सम्मिलन एवं संघर्ष के द्वारा ही इसके बाद से इन दोनों अलौकिक महापुरुषों के मानवीय संबंध विकसित होने लगे। अर्थात यद्यपि नरेंद्र अब से श्री रामकृष्ण के ही हो गए, तथापि श्री रामकृष्ण देव ने उनकी निजी स्वतंत्रता पर कोई हस्तक्षेप नहीं किया, नरेंद्र की स्वतंत्रता अक्षुण रही। श्री रामकृष्ण के उपदेश विषयक अन्य बातों के संबंध में हम लोग नरेंद्रनाथ के श्रीमुख से ही सुनते हैं।
1: ठाकुर के संग में किस प्रकार आनंद से दिन बीतते थे, दूसरों को समझाना कठिन है। खेल, हंसी, विनोद आदि साधारण विषयों पर उन्होंने किस तरह निरंतर उच्च शिक्षा देकर अनजाने में हमारे आध्यात्मिक जीवन के गठन में सहायता दी थी। उस संबंध में आज सोचने पर हमें बहुत आश्चर्य होता है। बालक को सिखाते समय शक्तिशाली पहलवान जिस प्रकार अपना संयम रखकर बालक के अनुरूप शक्ति प्रकाशित कर कभी उसे बहुत प्रयत्न के द्वारा हराकर और कभी उससे स्वयं हारकर उसके मन में आत्मविश्वास उत्पन्न कर देता है, हमारे साथ व्यवहार करते हुए भी प्रायः वैसे ही भाव का अवलंबन करते थे। वे बिंदु के भीतर सदा सिंधु का दर्शन करते थे। उसी प्रकार हम लोगों के अंतर्निहित आध्यात्मिक भाव का बीज फल फूलों के रूप में परिणित होगा, इस बात को उसी समय वे भावमुख सदा हमारी प्रशंसा किया करते थे, उत्साह देते थे और किसी खास सावधानी के साथ हमारे प्रत्येक व्यवहार के प्रति ध्यान रखकर अनेक उपदेश देते हुए हमें संयत रखते थे। परंतु वे इतना ध्यान देकर हमें सदा नियमित रखते थे, इस बात को हम उस समय बिल्कुल ही नहीं समझ सकते थे। वही उनके शिक्षा प्रदान और जीवन गठन करने का अपूर्व कौशल था।
2: श्री रामकृष्ण देव परीक्षा लेते और शिक्षा देते, फिर नरेंद्रनाथ भी श्री गुरुदेव के वचन सुनकर शिक्षा ग्रहण करते। कारण, भगवान ने उन्हें अपूर्व प्रतिभा प्रदान की थी। नरेंद्रनाथ की अनुपम मेधा शक्ति श्री रामकृष्ण देव के स्नेहाकर्षण का अन्यतम प्रधान कारण थी। अन्य भक्तगण श्री रामकृष्ण देव के जिन अमूल्य उपदेशों को साधारण भाव से ग्रहण किया करते अथवा उनके प्रति अधिक ध्यान नहीं दिया करते, उनमें नरेंद्रनाथ की प्रतिभा अत्यंत गूढ़ और फलदायी मर्म का उद्घाटन किया करती थी।
0: सन 1884 ईस्वी में किसी समय श्री रामकृष्ण कमरे में भक्तों से घिरे बैठे हैं। श्रीयुत नरेंद्रनाथ भी वहां उपस्थित हैं। विविध वार्तालाप तथा बीच बीच में सरल हास प्रयास भी हो रहा है। प्रसंगवश वैष्णव धर्म की बात उठी। उस मत का सार मर्म सब लोगों को संक्षेप में समझाकर श्री रामकृष्ण देव ने कहा,
3: तीन बातों का पालन करने के लिए सदा प्रयत्नशील रहने का उद्देश्य उस मत में है, नाम में रुचि, जीव के प्रति दया और वैष्णव पूजन। जो नाम है वही ईश्वर है। नाम नामी को अभिन्न जानकर निरंतर अनुराग के साथ नाम लेना चाहिए।
0: सब जीवों पर दया कहते ही श्री रामकृष्ण देव समाधिस्थ हो गए। कुछ क्षणों के अनंतर अर्धबाह्य दशा में अवस्थित होकर कहने लगे,
3: जीव पर दया, अरे कीटाणु, कीट होकर तू जीव पर दया करेगा? दया करने वाला तू कौन है? नहीं, जीव पर दया नहीं, शिव ज्ञान के साथ जीव की सेवा।
0: ये बातें सभी ने सुनी थी, किंतु उनकी भाव भंगिमा के पश्चात बाहर आकर नरेंद्रनाथ ने कहा, आज ठाकुर की बात से कैसा अद्भुत प्रकाश दिखाई पड़ा। जिस वेदांत ज्ञान को लोग शुष्क, कठोर और मतांतर रहित समझते हैं, उसे भक्ति के साथ सम्मिलित करके कैसे सहज, सरस और मधुर प्रकाश का उन्होंने प्रदर्शन करा दिया। आज ठाकुर ने भावावेश में जैसा बताया, उससे जाना गया कि वन के वेदांत को घर में लाया जा सकता है, संसार के सभी कार्यों में उसका प्रयोग किया जा सकता है। ठाकुर के इस उपदेश से भक्ति पथ में भी विशेष प्रकाश दिखाई पड़ता है। जब तक ईश्वर को सर्वभूतों में नहीं देखा जाता, तब तक यथार्थ भक्ति या पराभक्ति लाभ करना साधक के लिए संभव नहीं होता। विशेष प्रकाश दिखाई पड़ेगा। भगवान ने यदि अवसर दिया तो आज जो जो सुना इस अद्भुत सत्य का संसार में सर्वत्र प्रचार करूंगा। पंडित मूर्ख, धनी निर्धन, ब्राह्मण चांडाल, सभी को सुनाकर मुग्ध करूंगा।

अभी आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आइए अब आपको बता देते हैं हमारी कल की पहली सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। सुबह 7 बजे सुनिएगा कार्यक्रम जीवन सौरभ। अक्षय निधि कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा 7:13 से। भक्ति गीतों का कार्यक्रम भक्ति संगीत सुनिएगा 7:20 से। वतन का राग कार्यक्रम आप सुन सकेंगे प्रातः 8 बजे से। 8:30 पर आप सुनिएगा कार्यक्रम इतिहास के पन्नों से। दृष्टिहीन जनों के लिए कंप्यूटर तकनीकी के फायदे ये कार्यक्रम आपको सुनवाएंगे प्रातः 9 बजे से टेक गुरु कार्यक्रम के अंतर्गत। भारत विभूति कार्यक्रम केंद्रित होगा अमन के सिपाही पर, सुनिएगा 9:30 से। 10 बजे कार्यक्रम परिक्रमा आप सुन सकेंगे। 10:30 पर काव्य गुंजन कार्यक्रम के अंतर्गत सुनेगा रश्मि रथी का भाग 9। ग्यारह बजे सुनेगा कार्यक्रम हमारे वैज्ञानिक, और ये कार्यक्रम केंद्रित होगा डॉक्टर बानू जहांगीर कोया जी पर। युग प्रवर्तक विवेकानंदी कार्यक्रम आपको सुनवाएंगे 11:30 से। ये थी जानकारी कल की प्रातःकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। रात्रि के 10 बजे हैं। इसी के साथ हमारी आज की सभा अब यहीं संपन्न होती है। कल प्रातःकालीन सभा में हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आपसे अनुमति चाहते हैं। नमस्कार, शुभ रात्रि, जय हिंद।